मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026, प्रातः के 5:55 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सूरज की पहली किरण के साथ हो चुकी है प्रातःकालीन की शुरुआत। थोड़ी ही देर में सूर्य की किरणें संपूर्ण धरती को अपने आंचल में भरकर गतिमान और ऊर्जावान बना देंगी। धरती के हर कण में नई ऊर्जा का विशाल संचार हो जाएगा। सभी में नई उल्लास के साथ नई चेतना जागृत हो जाएगी और इसी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाने लेकर आ गए हैं हम कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी हमजोली, जी हां संजोली। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है दीन दुनिया की खबर रखने का, यानी समाचार का। तो आइए चलते हैं हमारे दिल्ली स्टूडियो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री

राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर कृषि के विषय में चर्चा भी उतनी ही जरूरी है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत एक भेंट वार्ता डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह से। विषय है खरीफ में भूमि शोधन, बीज शोधन और पौध जड़ उपचार। और आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ के मौसम में जहां फसल उत्पादन की तैयारी में है तो भूमि शोधन, बीज शोधन और पौध जड़ उपचार कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं क्षेत्रीय आईपीएम सेंटर से संयुक्त निदेशक डॉक्टर जीपी सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ फसलों की बुआई और रोपाई करने जा रहे हैं किसान भाई बहन, तो भूमि शोधन कैसे करें?
2: धन्यवाद। तो किसान भाई, जैसे धान की फसल में मान लीजिए भैया, खरीफ की जो भी फसल है किसान भाई, अगर बुआई के पहले जो उनकी फसल में, उनको ये देखना है कि उसमें कौन सी बीमारी लगती है।
1: जी,
2: जैसे समझ लीजिए किसान की खेत में मान लीजिए अगर उनके सड़न की बीमारी लग रही है या उकठा की बीमारी लग रही है, तो जो किसान भाई हैं, अगर जिनको ट्राइकोडर्मा जो है अगर मिल जाता है, तो उसमें 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा

0: 50 से 60 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में अच्छी तरीके से मिला लें, और जो भी आपकी खाद है वो सड़ी हुई होनी चाहिए। और जब खाद उसको निकालते हैं अपने जो है गड्ढे से, उसको थोड़ा फैला दें क्योंकि उसमें गर्मी होती है, तो जब वो थोड़ा जो उसका जो गर्मी ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को फैला करके उसके ऊपर अच्छे से मिला दें। और मिलाने के बाद में अगर आप चाहें तो अंतिम जो जुताई है उस समय, अगर अपनी जो आपका 1 एकड़ भूमि है अगर उसमें आप उसको बुरकाव करके फिर आप जुताई करके जो भी बुआई करते हैं रुपाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इससे अच्छा लाभ होगा।
1: ये तो रही सड़न की बात की, जहाँ रोक धोक लग रहा है, कई जगह भूमिगत कीट हैं, दीमक की समस्या आती है, तो उसके लिए भी कोई मित्र फफूंद है?
0: जी हाँ, अगर मान लीजिए आपके यहाँ जैसे दीमक की समस्या है तो उसके लिए किसान भाइयों एक हमारा आता है ब्यूवेरिया बैसियाना
1: जी,
0: तो इसकी ब्यूवेरिया बैसियाना की भी जो है इसकी 2.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से या 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से किसान भाई इसकी जैसे मान लीजिए 1 एकड़ में अगर करना है उनकी, तो 1 किलोग्राम जो है ब्यूवेरिया बैसियाना की मात्रा, और वो भी जो है 30-40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में उसमें मिलाएंगे, और अंतिम जो जुताई करेंगे उसी समय उसका उपयोग करेंगे, खेत में थोड़ा नमी होनी चाहिए, तो इससे उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा किसान भाइयों को। नहीं तो होता क्या है कि अगर गोबर खाद आप नहीं मिलाएंगे सड़ी हुई, तो आपके खेत में अगर ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी मात्रा में नहीं है तो आप डालेंगे लेकिन आपका जो असर होगा आपकी फसल पे, जो लाभ आपको होगा किसान भाइयों को, उतना अच्छा नहीं होगा।
1: डॉक्टर साहब, जो भी खरीफ की फसलें हैं या सब्जियां हैं जिनकी बुआई या रोपाई करने जा रहे हैं किसान भाई बहन, तो उनका बीज शोधन भी करना होगा?
0: जी हाँ, उसका बीज शोधन भी करते हैं।
1: कैसे करें?
0: मतलब किसान भाई धान की जो किसान भाई नर्सरी डाल रहे हैं या और किसान भाई सब्जियों की नर्सरी डाल रहे हैं
1: या धान की सीधी बुआई कर रहे हैं?
0: हाँ जी हाँ, जो भी अगर सीधी भी बुआई कर रहे हैं तो उसमें भी किसान भाई जो है 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको अच्छी तरीके से उपचारित करें। उपचारित करने के बाद में उसको थोड़ा फैला दें, जो है थोड़ी देर उसको छाए में कहना होता है 2 घंटे 3 घंटे के लिए रख देंगे जो है, ताकि जो बीज पर कोटिंग हो जाए।
1: हाँ,
0: उसके बाद में किसान भाई उपचार करने के बाद में उसको खेत में चाहे बुआई कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए रासायनिक बीज शोधन भी आवश्यक है?
0: हाँ, अगर किसान भाइयों को से अगर उनको नहीं मिल पा रहा है ट्राइकोडर्मा की, जैसे उनको उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो किसान भाई क्या काम कर सकते हैं कि जैसे उनका जो भी मार्केट में जैसे वेवेस्टीन आता है, किसान भाई उसका उपयोग थीरम का भी उपयोग कर सकते हैं, वेवेस्टीन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी क्या है 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से किसान भाई शोधन करके उपचार कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। लेकिन एक और किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि कभी कभी किसान भाइयों को जैसे मान लो दलहनी फसल में किसान भाई मान लो करना है, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए किसान भाइयों को जो है कीटनाशक से भी उपचार करना है, फफूंदी नाशक से भी उपचार करना है, राइजोबियम कल्चर से भी करना है, तो इसकी जानकारी किसान भाइयों को बहुत जरूरी होती है कि सबसे पहले किससे करेंगे उसके बाद किससे करेंगे। तो इसके लिए एक FIR करके होता है, FIR का मतलब F से करने में सबसे पहले फफूंदी नाशक से करेंगे, उसके बाद में I के मतलब जो है कीटनाशक से करेंगे, इंसेक्टिसाइड होता है, R का मतलब सबसे लास्ट में जो हमारा अगर दलहनी फसल है तो राइजोबियम कल्चर होता है, हम उससे करेंगे।
1: कल्चर भी
0: जी, किसान भाई इस चीज का विशेष ध्यान दें कि अगर जब भी किसान भाई मान लीजिए उनके खेत में उनको बीज उपचार करना है या पौध उपचार करना है, तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये कोशिश करना चाहिए कि अगर उनको जैविक रसायन मिलते हैं तो उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल रसायन होते हैं हमारे लाभकारी उसमें फफूंद होते हैं या हमारे कीड़े होते हैं उनके लिए नुकसानदायक होते हैं, इसलिए अगर जैविक रसायन का उपयोग करेंगे तो इससे उनको जो मित्र कीट होंगे या जो मित्र हमारे जो है फंजाई होंगे उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं पड़ेगा।
1: डॉक्टर GP सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में भूमि शोधन, बीज शोधन और पौध जड़ उपचार कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: वाकई में बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह जी से हमको मिली। कृषि में अगर छोटी छोटी जानकारियां अगर हमको मिलती हैं तो कृषि का उत्पादन लगातार बढ़ता जाता है। और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत ये जानकारी मीडियम वेव के मीटर पर या आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, इसलिए विचारों का अच्छा होना और सुंदर होना बेहद जरूरी है। इसलिए आइए सुनते हैं अब ये सुविचार डॉक्टर शिवा राकेश से। विषय है आत्म परीक्षण।
1: यदि गहराई में उतरकर इस पर विचार करें तो हम पाएंगे कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, स्थिर कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड बदल रहा है,

0: दुनिया एक जैसी कभी नहीं रहती, समाज गतिशील है। वृक्ष वनस्पतियां भी समय के साथ साथ पनपते बढ़ते, फलते फूलते और आयु पूरी करके सूख जाते हैं। जीवधारियों की भी ऐसी ही गति है। स्वयं मनुष्य शरीर भी बदलता रहता है। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था और मरण, ये अवस्थाएं यहाँ भी देखी जाती हैं। एक व्यक्तित्व की मूल सत्ता ही अपरिवर्तनशील भला क्यों है? जीवन से मृत्यु तक आखिर मनुष्य का स्वभाव क्यों नहीं बदलता? उसकी चिंतन शैली और क्रियाकलाप स्थिर क्यों बने रहते हैं? उसमें उदात्तता का समावेश क्यों नहीं हो पाता? प्रकृति के साथ ये विरोधाभास कैसा? आज से पूर्व कई क्रांतियां हुई। भगवान महावीर ने इसके लिए अहिंसा का दर्शन दिया। भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन जैसी महाक्रांति की। पर दोनों ही क्रांतियां समाज और संसार के कुछ हिस्से को प्रभावित कर सकी और साम्यक बनी रहीं। जब तक आदमी की मूल सत्ता में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता, तब तक बदलाव स्थायी नहीं होगा। मनुष्य के समग्र परिवर्तन के लिए मानवीय अंतराल का संपूर्ण बदलाव जरूरी है। चाहे जिस भी काल में ये पूर्ण बदलाव आए, वहां मानवीय अंतःकरण में क्रांति अवश्य घटित होगी। इससे कम में बदलाव एक खिलवाड़ बनकर रह जाएगा। अब प्रश्न ये है कि बदलाव आए कैसे? क्या ये स्वयमेव घटित होगा? कोई पराशक्ति इसे कर गुजरेगी या परमेश्वर की अनुकंपा से संपन्न हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवर्तन जहां कहीं जिस स्तर पर भी होता है, वहां उसके पीछे कोई ना कोई निमित्त कारण अवश्य होता है। इसलिए जब मानवीय अंतराल के परिवर्तन की बात आती है और उत्कर्ष की दिशा में कदम बढ़ाने का सवाल आता है, तो यहाँ भी प्रयास और पुरुषार्थ को सदैव स्मरण रखना होगा। निजी पराक्रम के बिना ये शक्य ना हो सकेगा। जो इसके लिए प्रकृति प्रभाव पर आश्रित रहना चाहते हैं और अपने पूर्णत्व की कल्पना करते हैं, उनकी बात और है। वे कितने जन्मों में और कितने लंबे काल में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इस संबंध में सही सही कुछ भी कह पाना मुश्किल है। विवेकवान लोग इतने लंबे काल तक इंतजार नहीं कर सकते और ना ही ये खतरा मोल ले सकते हैं। तो विकल्प यही है कि हम अपने को बदलने के लिए स्वयं संघर्ष करें। आत्म परिष्कार की साधना किसी महाभारत से कम नहीं। उसमें क्षण प्रतिक्षण में मनुभूमि में आने वाली बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों से लोहा लेना और उन्हें परास्त करना पड़ता है। इसके लिए स्वयं को एक सतर्क सैनिक की भूमिका निभानी पड़ती है और कुविचारों के दुर्भावनाओं के आते ही उन्हें धर दबोचना पड़ता है, ताकि उनकी मलिनता मानस पटल पर हावी ना होने पाए। रामकृष्ण परमहंस कहा करते कि लोटे की चमक को बनाए रखने के लिए उसे बार बार मांझना पड़ता है। इससे कम में चमक बनी नहीं रह सकती। हाँ, यदि वे सोने का हो तो बात दूसरी है। मनुष्यों के साथ विडंबना ये है कि स्वर्ण मनोभूमि वाले देव पुरुष करोड़ों में इक्के दुक्के होते हैं। शेष सभी को जागरूक रहकर अंतकरण की धुलाई सफाई करनी पड़ती है, तभी ईश्वरीय आलोक की वास्तविक झांकी व्यक्ति में प्रकट होती है। इससे पूर्व उसकी आभा कलमशों के कारण दृश्यमान नहीं हो पाती, क्योंकि मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के संस्कार उस पर छाए रहते हैं। मानवीय गरिमा इस दिव्यता को धारण करने में है। मानवीय चेतना का सहज स्वभाव अपनी मूल सत्ता से एकाकार होना है, पर इसके लिए प्रबल पराक्रम करना पड़ेगा और वे सारे उपाय उपचार बनाने पड़ेंगे जिससे हमारा उत्कर्ष की दिशा में कदम बढ़े। आदमी के लिए असंभव कुछ भी नहीं। वे जिस भी कार्य के लिए ठान ले, वहां सफलता अवश्यंभावी है। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी आप अपनी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए उत्कृष्टता की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। परमात्मा हमें अनेक कदम आगे बढ़ने में मदद करेंगे, यह सुनिश्चित है।
1: आत्म परीक्षण जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, अभी इस विषय पर अपने विचार दिए डॉक्टर शिवा राकेश ने। 747 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। करके मन के को डार कर मन के को फेरना ही साधना के साथ आराधना है। तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

संपूर्ण जीवन में भक्ति वो रस है जो जीवन को आनंदित और संतुलित कर देता है। भक्ति से ओतप्रोत जीवन भय बंधन से मुक्त हो जाता है और ये बंधन से मुक्ति ही जीवन में आनंद लेकर आती है। इसलिए भक्ति का साथ कभी ना छोड़ें और सदैव जीवन को आनंदित रखें। ईश्वरीय शक्ति की ओर जाना ही भक्ति है। कि जय हनुमान संकट हरण, तुम हो शक्ति के धान, राम नाम के सच्चे सेवक, जग में ऊंचा नाम, भक्तों की हर पीड़ा हरते, देते साहस अपार, चरणों में जो शीश झुकाएं, उनका करें उद्धार।

श्री हनुमान जी का जन्म दीपावली के एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन सायंकाल मेष लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य तुला राशि पर थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष लग्न अग्नि राशि है, इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस शुभ योग में जन्म लेने के कारण दुखों के समूह को जलाकर राख कर देने की अद्भुत शक्ति श्री हनुमान जी में है।

इस शुभ योग में जन्म लेने के कारण दुखों के समूह को जलाकर राख कर देने की अद्भुत शक्ति श्री हनुमान जी में है। मंगलवार को जन्मे मंगलमय श्री हनुमान जी मंगल भवन अमंगल हारी है। वे मंगल कामना करने वाले अपने किसी भी भक्त का कभी अमंगल नहीं होने देते, उसका सदा मंगल ही करते हैं। श्री हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी में एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं। एकांत में ले जाकर रामचरित्र का उपदेश देकर उन्हें संकट मुक्त करते हैं। संकट मोचन हनुमान के रूप में काशी में वे आज भी विराजमान हैं। श्री हनुमान जी

कि जिस रूप में पूजो ईश्वर आपके साथ हर वक्त खड़ा होता है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है कि शंख चक्र गदा पद धरे जग में तुम पालनहार, भक्तों पर बरसाओ सदा अपनी कृपा अपार, क्षीर सागर के नाथ प्रभु तुमसे जग का सम्मान, हे श्री हरि विष्णु देव चरणों में मेरा प्रणाम।

जीवन का हर आधार ही भक्ति के साथ संयमित और संतुलित होने का है और त्रिदेवों का होना हमें संतुलित होना सिखाता है कि जटा में गंगा, शीश पर चंद्र, कंठ में विराजे हैं काल, डमरू की पावन ध्वनि से गूंजे सारा भूमंडल विशाल।

कि हे ईश्वर, आपका नाम ही मेरे जीवन का आधार, मेरी शक्ति और मेरी शांति है। हर रूप में आप सदा मेरे साथ रहना। कि मर्यादा के दीप हो, धर्म के तुम हो प्राण, करुणा सत्य और प्रेम का तुमसे मिलता ज्ञान। जन जन के आराध्य प्रभु, रघुकुल के हो मान, जय श्री राम जपे, पावन हो हर प्राण।

भक्ति वो चेतना है कि जिस रूप में आप उसको पूजेंगे वो आपके साथ हर पल हमेशा हर मोड़ पर खड़ा होगा। बस आपकी भावना, आपका भाव सच्चा होना चाहिए। वो सिर्फ आपका भाव देखता है और आपके साथ खड़ा हो जाता है।

मोक्ष की ओर जा सकता है। सभी के जीवन में शांति बनी रहे और सभी पर ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना मीडियम वेव के मीटर पर या आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग भाग 231। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

अयोध्या लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में है। एक ओर हृदय में श्री राम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्री राम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूँ जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहाँ आया हूँ। आपने मेरी ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में संस्कृत समाचार होंगे।

0: मीडियम वेव 400.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए हमारा स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। श्रोताओं अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज का विषय है बरसात के मौसम में कैसा हो खान पान, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अभय वर्मा।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय वर्मा। आज में हम बात करेंगे बरसात का मौसम देखते हुए अपने खान पान से संबंधित किन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, बरसात में दो खास चीजें होती हैं, स्पेशली अब बारिश पहले की तरह तो नहीं होती, मगर हमने देखा है कि उमस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होता है। और ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा आर्द्रता, मॉइस्चर और या ह्यूमिडिटी, ये मिल करके एक बहुत ही आइडियल कंडीशन होती है बैक्टीरिया वायरस ग्रो करने की। तो इस मौसम में जो भी खाद्य पदार्थ है, यदि वह थोड़ा देर भी फ्रिज के बाहर है या ताजा पका हुआ नहीं है, तो उसमें चांसेस होती हैं कि कुछ ना कुछ बैक्टीरिया गंदगी उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, जो वेक्टर्स हैं जैसे मक्खियां हुए, मच्छर हुए, ये भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमें जो खाने की चीजें हैं वो फ्रेशली बनाई हुई हो वो खानी चाहिए, बहुत लंबे समय तक स्टोर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर स्टोर करना भी है उसको, तो प्रॉपर तरीके से उसको ढक के फ्रिज में रख के स्टोर किया जाए, और फ्रिज से निकालने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से बॉयल करके, गर्म करके, हीट करके तभी खाना चाहिए। तीसरी चीज हमें याद रखनी है कि इस मौसम में जो पानी है, जो हम पानी का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे इस समय जगह जगह पानी भरा रहता है, तो जो सप्लाई वाटर है, जो हमारे नल में पानी आ रहा है, इवन जो बोरिंग से भी डायरेक्ट आ रहा है, कई बार वो संक्रमित हो जाता है। तो अगर हो सके घर पे अगर आरओ की फैसिलिटी है तो साफ सुथरा पानी उसका इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो पानी को उबाल के पीना शुरू करें। कई सारी वाटर बॉर्न डिजीजेज होती है, जैसे हेपेटाइटिस हुआ, आम उल्टी दस्त हुआ, जिसको हम लोग गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, ये गंदे पानी से होता है। तो पानी जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, चाहे वो मशीन द्वारा आ रहा हो या हम नहीं है तो हम उसको सिंपली उबाल करके ले सकते हैं। तीसरी बात है कि जब भी हम बाहर निकल रहे हैं इस मौसम में, काफी सारा पसीना आता है, गर्मी काफी ज्यादा होती है और ह्यूमिडिटी के कारण वाटर लॉस जो है, जो पसीने के थ्रू पानी का लॉस है, वो काफी ज्यादा होता है। और सिर्फ पानी का ही नहीं, उसमें सोडियम, पोटेशियम, कई सारे मिनरल लॉस भी होता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम समय समय पर पानी का सेवन करते रहें। दूसरे तरल पदार्थ जैसे नारियल का पानी हुआ, शिकंजी हुआ या मट्ठा हुआ, इस प्रकार की चीजों का भी सेवन करते रहें, जिससे कि ना सिर्फ पानी बल्कि जो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका भी कोई कमी शरीर में हमारे ना होने पाए। तो इन तीन बातों का यदि हम ध्यान रखें, फ्रेश चीजें खाएं, अगर फ्रेश नहीं

0: है तो उसको गर्म करके उबाल के दोबारा सेवन करें। पानी साफ सुथरा होना चाहिए, चाहे उबला हुआ हो चाहे आरओ का हो। और तीसरा, पानी की मात्रा जो है वो एडिक्वेट रखनी चाहिए। इन तीनों बातों का अगर हम ध्यान रखें तो बरसात को हम पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं बिना बीमार हुए। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि आजकल आप देखेंगे कटे हुए फल और अंकुरित चना या मूंग या अन्य अंकुरित पदार्थ भी बाहर खुला हुआ कई बार मिलता है। अब इस बरसात में यदि यह चीज खुली हुई है तो कई बार उस पे मक्खियां भी लगती हैं, जिसमें तमाम प्रकार के कीटाणु आ सकते हैं। हमें नहीं पता वो कितनी देर से कटा हुआ है, तो बेहतर ये होगा कि हम ऑलरेडी कटे हुए खाद्य पदार्थ या जो ओपन खाद्य पदार्थ रखे उनका सेवन ना करें। बेहतर है कि आप पूरा पूरा फल घर ले आए और घर पर उसको साफ करके अच्छे से वॉश करके तब आप खुद छील के काट के घर पे खाएं, जिससे कि हम जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं उनसे हम लोग बच सके। धन्यवाद आप सभी लोगों को। उम्मीद है इन बातों का पालन करके हम इस बरसात के मौसम को पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभय वर्मा को। विषय था बरसात के मौसम में कैसा हो अपना खान पान। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, आज रात्रि 10 बजे सुनिएगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी बरेली की प्रस्तुति होगी। रात्रि 9:30 पर होगा फिल्म संगीत का फोन इन प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा उस्ताद हलीम जफर खां का सितार वादन, राग होगा छायाटनट। रात्रि 8:10 पर होगा सुगम संगीत के अंतर्गत शांभवी मिश्रा के स्वर में भजन। हिंदी कार्यक्रम यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे, जिसमें आज आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता डॉक्टर अमिता दुबे से। वार्ता का विषय होगा उत्तर प्रदेश संस्थान और हिंदी साहित्यकार, और आपसे बात करेंगे नागेंद्र सिंह रघुवंशी। हमारे किसान भाइयों का कार्यक्रम लोकायतन व खेती किसानी आप सुन सकेंगे रोजाना की तरह शाम 6:30 पर। नई उड़ाने कार्यक्रम होगा शाम 5:45 पर। और हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग होगा रोज की तरह शाम 5:10 पर। कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत लोक माधुरी में आप सुन सकेंगे सतीश चंद्र श्रीवास्तव के स्वर में भोजपुरी लोकगीत दोपहर 2:45 पर। विज्ञान और किसानी कार्यक्रम होगा दोपहर 2:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता सत्येंद्र कुमार सिंह से। वार्ता का विषय होगा कृषि रक्षा रसायनों का सुरक्षित प्रयोग, और आपसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। फौजी भाइयों का कार्यक्रम होगा जवानों के लिए दोपहर 1:50 पर। दोपहर 1:15 पर होगा हमारी शहरी बहनों का कार्यक्रम अपराजिता, जिसमें आज चर्चा की जाएगी डिग्री के साथ होना चाहिए हुनर भी।

फिल्म संगीत का फोन इन प्रोग्राम का आनंद आप ले सकेंगे। कार्यक्रम होगा कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आप आनंद लेके प्रातः 11 बजे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम लोक रंग के अंतर्गत सुनिएगा भोजपुरी लोकगीत प्रातः 9:50 पर। सुबह 9:30 पर पेश खिदमत होगा उर्दू कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे एक अफसाना। मौजू होगा कफन, अफसाना निगार होंगे डॉक्टर अतहर मसूद खान, और साथ ही आप सुनेंगे

मुन्नी बे की आवाज में गजलें। नौ बजकर 15 मिनट पर प्रताप सुनेंगे जौनपुर व हरदोई जिले की हलचल। श्रोताओं के पत्र व मेल पर आधारित इंटरैक्टिव प्रोग्राम होगा प्रातः 8:45 पर। प्रातः 7:31 पर होगा कार्यक्रम आज सुबह, जिसमें आज आप सुनेंगे एक वार्ता शुभम सिंह से। वार्ता का विषय होगा कैसे बनाएं ऑनलाइन पासपोर्ट, और आपसे बात करेंगी रिंकी शर्मा।

तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 4.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली, और आज का विषय है सरलता में निहित सौंदर्य। प्रकृति का प्रत्येक एक भी दृश्य, हर एक दृश्य हमें यह संदेश देता है कि वास्तविक सौंदर्य बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि सरलता में निहित होता है। चाहे आप उगते हुए सूरज की लालिमा को देखिए, चाहे चहचहाते पक्षियों का मधुर संगीत, चाहे खेतों की हरियाली देखिए, चाहे निर्मल नदी का प्रवाह, चाहे खुले आकाश की विशालता को देखिए, ये सभी अपनी सहजता और सादगी के कारण हमारे कोमल से मन को आकर्षित करते हैं। मनुष्य के जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। जी हाँ, भारत के आज के भौतिकवादी और प्रतिस्पर्धी इस युग में जहाँ दिखावा, विलासिता और कृत्रिमता यानी बनावटीपन को इतना महत्व दिया जा रहा है, वहीं सरलता का महत्व और बढ़ जाता है। क्योंकि सरलता केवल जीवन जीने की एक शैली नहीं बल्कि एक ऐसा गुण होता है हमारे अंदर का, जो कि व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और व्यक्तित्व को और सुंदर बनाता है। क्या है सरलता जो कि इंसान अपने आप में अपनाता है या अपनाने की कोशिश करता है? सरलता का अर्थ है सादा, सहज, निष्कटपन और स्वाभाविक जीवन जीना। जी हाँ, सरल व्यक्ति अपने विचारों, व्यवहार और कार्यों में स्पष्ट, ईमानदार और विनम्र होता है। वह अनावश्यक दिखावा, अहंकार और छल कपट से कोसों दूर रहता है। सरलता का संबंध केवल पहनावे या रहन सहन से नहीं बल्कि मन की पवित्रता और विचारों की सच्चाई से भी होता है। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है उसके व्यवहार में स्वतः ही सौम्यता और आकर्षण आ ही जाता है। और ये सच है कि सरलता में ही कहीं ना कहीं सौंदर्य छिपा होता है। सौंदर्य केवल बाहरी रूप, महंगे वस्त्रों से नहीं आता। वास्तविक सौंदर्य व्यक्ति के स्वभाव, उसके आचरण और उसके संस्कारों में होता है। एक मुस्कान, एक मधुर वाणी, विनम्र व्यवहार और सच्चा हृदय किसी भी व्यक्ति को आकर्षक बना देते हैं। यही सरलता का सौंदर्य है। सरल व्यक्ति सभी के साथ समान व्यवहार करता है, किसी से द्वेष नहीं रखता और दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व लोगों के मन में सम्मान और विश्वास उत्पन्न करता है। ये बात और है कि हाँ, आज के

इस दौर में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हमारी प्रकृति सरलता के साथ रह सकती है, तो क्या हम अपने जीवन में सरलता के साथ अपने इस व्यक्तित्व को नहीं अपना सकते? अपना सकते हैं। यदि हम प्रकृति का अवलोकन करें तो पाएंगे कि प्रकृति का प्रत्येक रचना सरल होने के कारण ही कहीं ना कहीं हमें सुंदर लगती है। जी हाँ, फूल अपनी सुगंध का प्रदर्शन कभी नहीं करते, फिर भी सभी को प्रिय लगते हैं। वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के फल, फूल, छाया और वायु देते हैं, हमें प्राण देते हैं, इसीलिए हमें वो और सुंदर लगते हैं। नदियां बिना किसी अहंकार के निरंतर बहती रहती हैं, इसीलिए वो हमें निर्मल लगती हैं। पर्वत अपनी विशालता का कभी घमंड नहीं करता, इसलिए वो हमें स्थिर लगता है। प्रकृति का यही सरल और निस्वार्थ स्वरूप हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देता है कि महानता और सौंदर्य का आधार सरलता ही है। अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में ऐसे अनेक महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया है कि सरलता ही सच्ची महानता का प्रतीक है। सरल व्यक्ति समाज में प्रेम, विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाता है। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी के सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है। ऐसे लोग समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। सरलता से संवाद आसान हो जाता है, रिश्तों में मधुरता आती है और विवाद कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। एक सरल समाज अधिक शांतिपूर्ण, समृद्ध और मानवीय होता है, क्योंकि जब दिखावे की छटा कम हो जाती है तो सरलता अपना रूप दिखा देती है। लेकिन हम आज के जीवन में अपने उस सरल स्वभाव पर दिखावे की ऐसी चादर ओढ़ लेते हैं कि हमारा सरल स्वभाव, हमारा सहज होना कहीं कहीं हमें अपने आप में खटकने लगता है। विद्यार्थी जीवन में भी सरलता एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। विद्यार्थियों के लिए सरलता अत्यंत आवश्यक है। सरल और अनुशासित विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। वे समय का सदुपयोग करते हैं, अनावश्यक दिखावे से दूर रहते हैं और अपने ज्ञान तथा चरित्र के निर्माण के ध्यान देते हैं, अपने विकास पर ध्यान देते हैं, अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं। सरलता उन्हें विनम्र बनाती है, जिससे वे अपने शिक्षकों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ सम्मान का व्यवहार करना सीखते हैं। यही गुणों ने आगे चलकर एक सरल और आदर्श नागरिक बनाता है। सरलता को जीवन में अपनाने के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए, सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए और विनम्रता और संतोष का भाव साथ में विकसित करना चाहिए। दूसरों की सहायता करना, प्रकृति से प्रेम करना, समय का सदुपयोग करना और दिखावे से दूर रहना भी सरल जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। जब हम अपने मन के लोभ को, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त रखते हैं, तब जीवन अपने आप सुंदर और सुखद हो जाता है। सरलता जीवन का एक ऐसा अमूल्य गुण है जो मनुष्य को भीतर और बाहर दोनों रूपों में सुंदर बनाता है। बस हम ये चाहें कि हमें सुंदर बनना है, बस हम ये चाहें कि हमें सरल रहना है। ये केवल व्यक्तित्व की विशेषता ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक श्रेष्ठ कला भी है। बाहरी चमक धमक तो क्षणिक है, जबकि सरलता का सौंदर्य सदैव बना रहता है। आज आवश्यकता है कि हम आधुनिकता के साथ साथ सरलता और विनम्रता के स्वभाव को भी अपनाएं और मानवीय मूल्यों को भी अपनाएं। तो श्रोताओं, आज की विविधा यहीं तक।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, अब समाचार होंगे।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का

0: धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।

0: APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। आज से की जा सकेगी यात्रा। रक्षा मंत्री ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी से मांगी जांच की स्टेटस। और बढ़ी और आज लखनऊ में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक करेगी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन बनाने के कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
1: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे SCR को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद है लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है।
0: इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
2: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
3: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा।
4: 63 किलोमीटर

0: बॉम्बे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाना भी है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि एसेसिबल, एफोर्डेबल, एफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने SIT की संरचना का विवरण भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ा दी है। अब आरोपियों की पेशी 27 जुलाई को होगी। वहीं SIT ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। समाचार कक्ष से अरुण।
1: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवादों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के निर्देश दिए हैं। यह विशेष अदालत 21 से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होगी। कार्यवाही से पहले इन मामलों से जुड़े पक्षों को लोक अदालत से पहले होने वाली सुलह वार्ता में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर योगी की पाती साझा करते हुए लोगों से वृक्षारोपण को अपने जीवन के संस्कारों और उत्सवों से जोड़ने की अपील की।
4: अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम अभियान में प्रदेश ने 40 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा कर नया इतिहास रचा है। यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नव सामर्थ्य का जय घोष है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व और जीवन संरक्षण का संदेश समेटे अभियान सनातन चेतना का महोत्सव है। श्री योगी ने लोगों से अपील की है कि परिवार के शुभ अवसरों, मांगलिक आयोजनों और विशेष दिनों को वृक्षारोपण से जोड़कर हमें प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहिए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC आज लखनऊ में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर उनके विचार जानेगी। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि कल समिति ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बैंकर्स और वकीलों से विचार विमर्श किया। राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश का क्रम जारी है। गोरखपुर और इसके आसपास के कई जिलों में कल दिन में उमस भरी गर्मी महसूस की गई, हालांकि रात में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस बीच

0: बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 19 जुलाई तक वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। आज से की जा सकेगी यात्रा। रक्षा मंत्री ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने SIT से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। और आज लखनऊ में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक करेगी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

मीडियम वेव 4.1 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी रेडियो हमजोली, और आज एक और साथी मेरे साथ है स्टूडियो में।
1: जी हाँ, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी श्रद्धा।
0: तो भाई स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।

0: तो भाई श्रद्धा यार, दिल के साथ साथ ढेर सारी जानकारी भी है, तो भाई बताइए ये गीत हमारी कौन सी फिल्म से है?
1: ये गीत हमारे श्रोता सुन रहे हैं फिल्म अंदाज अपना अपना से, और गीत के साथ साथ जानकारी, मनोरंजन और दिवस और इतिहास और खूब सारी बातें लेकर

0: तो क्या बात है श्रद्धा, मतलब ये लो जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके, दिल के साथ साथ ढेर सारी जानकारियों के साथ आज इस कार्यक्रम में हम दोनों ही आ चुके हैं, क्यों श्रद्धा?
1: बिल्कुल।
0: तो श्रद्धा कहते हैं ना कि हमारे विचार जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, हम कैसा सोचते हैं उस तरीके से हम अपने आप को बनाते चले जाते हैं, है ना?
1: बिल्कुल। और हमारा यही प्रयास रहता है कि आज सुबह की जो सुबह हो ना वो हल्की फुल्की हो, ज्ञान से भरी हो और दिल को सुकून देने वाली।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: दिन तभी अच्छा होता है ना जब सुविचार हमारे मन में जब अच्छे अच्छे आते हैं, तो क्यों ना संजोली जल्दी से हमारे श्रोता को बता दीजिए आज का सुविचार क्या कहता है।
0: बिल्कुल, देखिए श्रोता आज का सुविचार है कि भरोसा रखें कि जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब कहीं ना कहीं वो ईश्वर हमारे लिए अच्छा कर रहा होता है, यानी आपका किया हुआ हर कर्म आपके पास वापस लौटकर जरूर आता है, वो चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, है ना श्रद्धा?
1: क्या बात है संजुली, बड़ी अच्छी बात कही, हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। तो कहते ना हम सभी अपने लिए तो जीते हैं, तो क्यों ना दूसरों के लिए भी जिए, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बने ताकि हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट बनी रहे।
0: बिल्कुल, देखिए आप कहते ना जब आप दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर आपको देखता है और वो कर्मों का जो लेखा होता है ना वो वापस लौटकर जरूर आता है।

0: हाय, ऐसे में तेरी आवाज कहीं से आई जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नहगा आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे।
1: चोरी के शेर है आप तो कुछ यूं कहते।

0: पूरी होंगी उनकी सब फरमाइशें, एक भी हमसे न टाली जाएगी। आ पड़ा है आशिकी से वास्ता, अब तबीयत क्या संभाली जाएगी।
1: प्यार के कैदी जरा संभल जा।

0: चुप क्यों है?
1: ना जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, जबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है।
0: अगर मुझसे प्यार होता तो यूँ न कहते।
1: तो क्या कहता?

0: मैं संजुली, प्यारा से गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया फिल्म मेरा साया से, स्वर लता मंगेशकर और सुनील दत्त का था। और इस गीत की जो मधुर धुन थी उसे, उस धुन को बनाया था मदन मोहन जी ने। क्या बात है, इतनी प्यारी जानकारी श्रद्धा जी आपने दी है। और श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय आज सुबह, भाई देखें ये टेक्नोलॉजी का ही बात है भाई कि आज हम रेडियो के माध्यम से हर, कहते ना, हर घर में पहुंचे हुए हैं। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी जो है हर क्षेत्र में चल रही है, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। चाहे आप कोई भी सर्टिफिकेट बनवाओ, कोई भी कहीं भी आप फॉर्म भरने जाओ, हर चीज ऑनलाइन है। सबके पास आजकल मोबाइल में ही सब कुछ है भाई, लैपटॉप की भी जरूरत नहीं पड़ती श्रद्धा, है ना?
1: सच बात है।
0: तो भाई देखिए, आज आइए श्रोताओं, अब आज एक प्यारी सी जानकारी सुन लेते हैं। शुभम सिंह से इनसे वार्ता कर रही हैं रिंकी शर्मा जी, और विषय है कैसे बनाएं ऑनलाइन पासपोर्ट।
2: दोस्तों, आज के दौर में पासपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि सपनों की उड़ान का पहला कदम बन चुका है। लेकिन जब बात आती है ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाने की, तो जरा सी लापरवाही परेशानी का कारण बन जाती है। इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अधिकारी से जो इस पूरी प्रक्रिया को बेहद नजदीक से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्री शुभम सिंह जी, जो हमें बताएंगे ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए उसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर।
3: नमस्कार,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
3: नमस्कार
2: सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया क्या है और इसकी शुरुआत कैसे की जाए।
3: देखिए, ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए हमारी एक वेबसाइट है पासपोर्ट सेवा, उसमें आप जाएंगे, वहां पे आप अपना एक लॉगिन क्रिएट करेंगे और फिर जैसी आपकी जरूरत है रीइशू केस या फिर फ्रेश केस के लिए अप्लाई करेंगे। आपसे वहां पे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, आपका करंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस। साथ ही साथ इन्हीं के रिगार्डिंग कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स

0: मांगे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स हमें तीन प्रकार के बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो आपको ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। एक है आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एक है आपके निवास का प्रूफ और एक है आपके एजुकेशन का प्रूफ। साथ ही साथ डिजिटाइजेशन हो गया है तो आप डिजी लॉकर का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, जिसमें आप हमारे वेबसाइट को अपने डिजी लॉकर का एक्सेस प्रदान करेंगे तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपसे एक फीस मांगी जाएगी जिसका कि पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे, और फिर आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि जो भी हमारे ऑफिसेज हैं उनमें से जो भी अवेलेबल डेट्स हैं अपॉइंटमेंट की वो आप लें। अभी हमारे पास आरपी लखनऊ के अंदर 37 ऐसे ऑफिसेज हैं जहां पे कि आप पासपोर्ट एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। जिस दिन भी आपको डेट मिलेगी उस दिन आपको वहां पे जाना अनिवार्य है अपने बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ।
1: जी सर, पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करते समय किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जिनसे अक्सर आवेदन जो है वो गलत हो जाते हैं?
0: देखिए, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपकी डिटेल्स एकदम एकदम समान हो। समान मतलब कि जो आपने पता लिखा है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो आपने नाम डाला है जैसा आपका आईडी प्रूफ में नाम है वैसे ही आपको नाम डालना है, जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है वो आपके आईडी प्रूफ में पंजीकृत होनी चाहिए और वो सारे डॉक्यूमेंट्स में समान होने चाहिए। साथ ही साथ भरते समय कृपया ध्यान दें कि आप खुद ही अपनी एप्लीकेशन भरें, किसी और से ना भरवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई और अगर आपकी एप्लीकेशन भर रहा होता है तो वो गलत डिटेल्स भर देता है, कुछ दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से कि एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं हो पाती है।
1: असर नया पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य है जो होने ही चाहिए?
0: हमें केवल तीन डॉक्यूमेंट आपसे चाहिए। एक आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो कि सामान्यतः हाई स्कूल मार्कशीट होती है या फिर पैन कार्ड होता है या फिर जन्म प्रमाण पत्र। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि अगर आप 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा हुए हैं तो उनके केसेस में केवल जन्म प्रमाण पत्र ही अनिवार्य है डेट ऑफ बर्थ के लिए। 1 अक्टूबर 2023 से पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो आप जन्म प्रमाण के लिए कोई का भी एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें जन्म प्रमाण पत्र हो, पैन कार्ड हो, हाई स्कूल मार्कशीट हो या फिर इत्यादि। एक एक लंबी लिस्ट है जो कि हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा हमें आपका एक फोटो आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। सामान्यतः आधार कार्ड लोग लेके आते हैं जो कि हम एड्रेस प्रूफ की तरह पंजीकृत कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ले आप आ सकते हैं या आप बिजली का बिल लेके आ सकते हैं इत्यादि। इसके अलावा थर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाहूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन प्रूफ। एजुकेशन प्रूफ लाना जरूरी है, चाहे आप फ्रेश केस में अप्लाई करें चाहे आप री इशू केस अप्लाई करें। ये इसलिए अनिवार्य है क्योंकि दो टाइप के पासपोर्ट होते हैं, एक होता है ईसीआर पासपोर्ट और एक ईसीएनआर पास। अगर आपको ईसीएनआर पासपोर्ट चाहिए तो एजुकेशन प्रमाण पत्र प्रोवाइड करना जरूरी है।
1: सर, दोनों पासपोर्ट में अंतर क्या होता है? हमारे श्रोताओं को ये भी बता दें।
0: दोनों पासपोर्ट में ये अंतर है कि अगर आप वर्क वीजा पे, भारत सरकार ने एक 17 कंट्री की लिस्ट जारी करी है, उन 17 कंट्री में अगर आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं तो आपको एक एडिशनल क्लियरेंस चाहिए होता है अगर आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है तो। अदरवाइज दोनों पासपोर्ट एकदम सेम है, कोई भी अंतर नहीं है।
1: सर, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपने बताई, तो अगर आवेदन करते समय कोई गलती हो जाए, तो इसे कैसे सुधारा जा सकता है?
0: इसको सुधारने के लिए जब भी आप हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं, वहां पे काउंटर ए पे आप उनसे अनुरोध करें कि जो भी डिटेल्स आपको चेंज करवानी है वो जो है कर दें वहां पे काउंटर ए पे। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन काउंटर ए से काउंटर बी पे चली जाती है तो फिर करेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है।
1: तो पहले ही इस बात का ध्यान रखें, काउंटर वन पे ही संशोधन करवा लें। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि यदि पासपोर्ट आवेदन अस्वीकृत हो जाए तो आगे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए?
0: पासपोर्ट आवेदन कभी भी अस्वीकृत नहीं होगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपकी एप्लीकेशन जरूर सबमिट हो जाएगी, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन लगता है उसमें तो वो हमारे बैक ऑफिस जो कि गोमती नगर आरपीओ लखनऊ में लोकेटेड है वहां पे आपकी एप्लीकेशन आ जाती है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन होता है हम एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करते हैं, अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तो एप्लीकेंट से मंगाते हैं, वो डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस करने की आगे की कार्यवाही शुरू हो जाती है।
1: जी सर, एक पासपोर्ट बनने में औसतन कितना समय लगता है लगभग?
0: देखिए, यूजुअल टाइम तो दो टाइप की पासपोर्ट एप्लीकेशन होती है, एक होती है तत्काल जो कि एक प्रीमियम सर्विस है कुछ एडिशनल फीस के साथ, उसको हम प्रोसेस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डॉक्यूमेंट जो आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको प्रोसेस करने के

0: एक से 2 दिन में आपका पासपोर्ट हमारे यहाँ से जारी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो सामान्यतः 3 से 4 वीक में आपको पासपोर्ट मिल जाता है।
1: जी सर, सर अगर पासपोर्ट में कोई भी समस्या हो या पासपोर्ट डिलीवरी में देरी हो तो कहाँ शिकायत की जा सकती है और कैसे दर्ज कराई जा सकती है ये शिकायत?
0: आप ये शिकायत रेज कर सकते हैं हमें ईमेल के द्वारा, जो कि rpo.lucknow@mea.gov.in है, उस पे भी कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो कि हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अवेलेबल है, वहां पे जाके आप व्हाट्सएप पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी वर्किंग डे पे आप आरपीओ लखनऊ विजिट कर सकते हैं 10 से 2 के बीच में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बेहद सरल शब्दों में पासपोर्ट से जुड़ी अहम जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, हमारे साथ थे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्री शुभम सिंह जी। आज की बातचीत से हमें ये जानकारी मिलती है कि थोड़ी सी सतर्कता, सही जानकारी और आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग पासपोर्ट प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बना सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी।
3: भाई संजोली, इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली है तो वो जरूर इसका लाभ उठाएंगे।
4: बिल्कुल। तो भाई श्रद्धा, देख रही हो कभी मौसम कैसे करवट बदल रहा है, कभी पानी हो रहा है तो कभी धूप बरस रही है।
3: जी हाँ भाई, हम तो चाहते हैं कि पानी बरसे, मौसम ठंडा हो, लेकिन मतलब अपने मन का कहाँ होता है। तो अब ये तो हमें मौसम वैज्ञानिक ही बता पाएंगे ना कि आज का मौसम कैसा रहेगा।
4: तो आइए बात करते हैं हमारे मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी से।

0: हेलो
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आज सुबह में।
0: जी गुड मॉर्निंग।
1: जी गुड मॉर्निंग सर। सर हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज का मौसम कैसा रहेगा।
0: जी मौसम की बात करें तो जैसा कि मानसून तब तराई बेल्ट में है, तो जिसकी वजह से जो तराई बेल्ट है गोरखपुर वगैरह रीजन में, बहराइच गोरखपुर लखीमपुर खीरी में, वहां पर अच्छी वर्षा हो रही है। लेकिन जो लखनऊ अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बीच बीच में हल्का सा बादलों की आवाजाही रहेगा और उमस वाला गर्मी रहेगा। ये सिलसिला आज कल दो तीन दिन रहेगा।
2: हमारे श्रोताओं को मौसम की जानकारी तो मिल गई है कि बस थोड़ा सा इंतजार करना है, मौसम फिर सुहावना हो जाएगा।
3: हाँ पानी बरसने वाला है, कम से कम इस उमस से तो राहत मिलेगी।
2: बिल्कुल।
3: तो भाई श्रद्धा एक प्यारा सा गीत सुना दिया जाए।
2: हाँ मैं यही कहने जा रही थी कि मौसम जब होगा तब होगा, क्यों ना अपने श्रोताओं को प्यारा सा गीत सुनवा दे ताकि उनकी चाय का आनंद और भी बढ़ जाए।
3: बिल्कुल। तो भाई लीजिए श्रोताओं प्यारा सा गीत।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आई मिलन की बेला से ये प्यारा सा गीत। तो संजुली, गीत संगीत का तो प्रोग्राम चल ही रहा है, तो कुछ जानकारी भी दे दे।
1: बिल्कुल,
0: तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, किस वजह से आज का ये दिन खास हो जाता है। आज मनाया जाता है बेस्टिल दिवस, यानी फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस आज मनाया जाता है। ये दिन 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल जेल के पतन और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की याद में फ्रांस के एक प्रमुख सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। और श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 14 जुलाई की पूर्व संध्या से ही जुड़े कार्यक्रम भी बनाए जाते हैं। जुलाई 1969 में भारत में 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जुड़े विषय पर कई संस्थानों में चर्चा और जागरूक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
2: और पता है संजोली, आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व चिंपांजी दिवस, जो कि उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके महत्व को समझने के लिए दिन मनाया जाता है।
1: और श्रोताओं, आज ही के दिन यानी जुलाई में ही कृषि एवं खरीफ फसल जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। ये कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम इसको चलाने की कोशिश की जाती है और ये चलाए जाते हैं।
2: और पता है संजुली, आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है,
1: कौन सा?
2: आज है नमस्ते दिवस। भारत में 14 जुलाई को राष्ट्रीय नमस्ते दिवस मनाया जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सन 2023 में नमस्ते योजना की शुरुआत की गई थी। सफाई कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से हर साल ये दिवस मनाया जाता है।
1: क्या बात है, नमस्ते दिवस। तो भाई श्रद्धा, आपको नमस्ते।
2: जी हाँ भाई।
1: और श्रद्धा, आज ही के दिन सन 1965 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैरिन 4 ने पहली बार मंगल ग्रह के निकट से हमें तस्वीरें भेजी थी। आज ही का महत्वपूर्ण दिन था।
2: और आज ही के दिन इतिहास में सन 1850 में मशीन द्वारा जमाई गई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था।
1: क्या बात है। और आज ही के दिन सन 1789 में भारत में फलस्तीन किले पर जनता ने धावा बोला था और कई प्रतीकात्मक रूप भी इस कहते ना धावे ने ले लिया था बाद में।
0: तो भाई, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमने अपने श्रोताओं को दी है
1: भाई। और भी बहुत जानकारी है,
0: बिल्कुल बताइए।
1: आज ही के दिन महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन 14 जुलाई को इन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ स्वच्छता एवं जन जागरूकता अभियान भी जुलाई के इस माह में चलाए जाते हैं। नगर निकायों और ग्राम पंचायतों द्वारा स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विशेष अभियान भी आज ही के दिन से चलाए जाते हैं।

श्रोताओं, अभी आपको सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। और श्रोताओं, कार्यक्रम कैसे, इस कार्यक्रम के नंबर और श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार होंगे।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
4: Across 10 of the 11 active missions.
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR

0: मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है।

0: असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक

0: इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: .4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम नमस्ते बरेली का। तो चलिए सुनते हैं नमस्ते बरेली।

सुबह के 8:15 हो चुके हैं और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम नमस्ते बरेली। और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की तारीख है 14 जुलाई 2026 और बहुत ही अच्छे दिन हमारे करीब आ चुके हैं बारिश के। लेकिन अभी थोड़ा मौसम खुशनुमा हो चुका है, हालांकि धूप है और उम्मीद है कि बारिश भी जल्दी हो जाएगी। तो इसी की उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपना शहर बरेली लगातार तरक्की की एक और नई और ऐतिहासिक उड़ान को भर रहा है। तो चलिए बिना देरी करते हुए रुक करते हैं ये जानने के लिए कि हमारे शहर बरेली में क्या कुछ नया होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं ये खास गाना, क्योंकि गाने की शुरुआत से कहते हैं दिन अच्छा हो जाता है।

और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। बात कर रहे हैं अपने शहर बरेली की तरक्की की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीडीए की ओर से हमारे शहर बरेली के लोगों के लिए एक शानदार खबर है और इसी के चलते हमारा शहर स्मार्ट और हाईटेक होने जा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, शहर में मेट्रो दौड़ने की जो खबर है बिल्कुल ठीक है। आपको बता दें कि राइट्स संस्था और बीडीए ने मिलकर 22 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क की शुरुआती डीपीआर को तैयार कर लिया है और इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट पर करीब 3000 से 4000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान भी जताया जा रहा है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके सफर को और आसान बनाने के लिए दो कॉरिडोर भी तय किए गए हैं। पहला रूट सैटेलाइट बस स्टैंड से पीलीभीत बाईपास तक पूरी तरह से एलिवेटेड होगा, जिसके लिए सड़कों को 8 लेन किया जा रहा है। तो दूसरी ओर जो रूट होगा वो चौकी चौराहा कुतुबखाना कुहाड़ा पीर से आईवीआरआई होते हुए घने इलाकों के जमीन के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। तो है ना ये अच्छी खबर।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर और प्रोग्राम का नाम है नमस्ते बरेली। तो नमस्ते बरेली में हम लगातार आपको दे रहे हैं शहर की गतिविधियों से जुड़ी तमाम जानकारी। साथ ही आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अपने शहर बरेली में एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार बढ़ाने के लिए रामपुर दिल्ली रोड पर 126 हेक्टेयर की नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप का जो काम है ना, वो काफी तेज गति से चल रहा है और इससे जॉब्स में काफी इजाफा भी हो जाएगा फ्यूचर में। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पीलीभीत बड़ा बाईपास रोड पर 267 हेक्टेयर में फैली नई आवासीय योजना और महादेवपुरम फेज टू के लिए भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो आखिरी दौर में है। इसके साथ ही शहर को जल्द ही रामायण वाटिका की सौगात भी मिलने जा रही है।

फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। और ये खबर है रेलवे से जुड़ी हुई। तो रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बरेली होकर चलने वाले टनकपुर अचनेरा स्पेशल समेत चार ट्रेनों के संचालन की जो अवधि है उसको बढ़ा दी है। दरअसल टनकपुर अचनेरा की संचालन अवधि 55 फेरों के लिए बढ़ाई गई है। इसके अलावा पूर्णिया कोट आनंद विहार टर्मिनल पूर्णिया कोट और सहरसा आनंद विहार टर्मिनल सहरसा स्पेशल का भी विस्तार किया गया है।

दूसरी ओर बात करें तो शहर से दिल्ली जाने के लिए हवाई सफर की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ने से एयरपोर्ट के अधिकारियों ने दिल्ली की दूसरी फ्लाइट की जो तैयारी है उसे तेज कर दी है। तो पंतनगर से नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बंद फ्लाइट्स को बरेली से चलाने के लिए इंडिगो से संपर्क किया जाएगा और जल्द ही यात्रियों को ये दूसरी फ्लाइट मिल सकेगी। आपको बता दें कि बरेली से दिल्ली के लिए इंडिगो के ATR 72 में 78 यात्री सवार होते हैं और दिल्ली की फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को है। ऐसे में बरेली से 60 से 70 के बीच यात्री हो गए हैं। दिल्ली से यात्रियों को कई शहरों की कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिल रही है, तो ऐसे में लोगों को काफी सुविधा भी हो रही है। फिलहाल आपको बता दें कि एक और फ्लाइट चलाने की जो तैयारी है वो चल रही है और जल्द ही यात्रियों को ये सुविधा मिल जाएगी।

इस तरह हमारा शहर बरेली भी तरक्की की नई राह पर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक और ट्रेन की बात करें तो उनकी संचालन अवधि को बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी ओर तेजी से दिल्ली को दूसरी फ्लाइट की तैयारी भी की जा रही है यात्रियों के लिए। और आप कनेक्टिंग फ्लाइट से दुबई और गुआंगझू की हवाई यात्रा भी यात्री कर सकेंगे। दिल्ली और नोएडा की फ्लाइट के एक स्टॉप से चंडीगढ़, जम्मू, पटना, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई की यात्रा भी शुरू हो गई है, उसके लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बरेली एयरपोर्ट से 5 साल पहले 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की फ्लाइट शुरू हुई थी और 12 अगस्त 2021 से मुंबई और 14 अगस्त 2021 से बेंगलुरु की इंडिगो की फ्लाइट शुरू हुई थी। और काफी लंबे अरसे के बाद 1 जुलाई से नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 2 जुलाई से दिल्ली की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है। और आप नोएडा, दिल्ली, बेंगलुरु,

तो वहीं अगर हम बात करें बरेली की, अगर मौसम की, तो बरेली और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और इस मौसम में उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अधिकतम तापमान लगभग 38 से 40 डिग्री सेल्सियस

और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तो इस तरीके से आज का ये मौसम बना रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, और लेकिन हम फिर मिलेंगे आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली। ये आकाशवाणी बरेली है 100.4 FM पर और अब समय है लोकगीत का, तो सुनते हैं सबसे पहले ये लोकगीत मदन मोहन के स्वर में।

और राकेश देवेश के इस गाए लोकगीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं था।

रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजों में आप सुन रहे थे। बोल जयदीप साहनी ने लिखे थे, तर्ज सलीम सुलेमान ने बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें जसविंदर नरूला और सोनू निगम की थी, समीर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीत का रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

सन 1948 में रोशन मुंबई चले आए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक हो गए। खुर्शीद अनवर उन दिनों फिल्म सिंगार को संगीत से सजाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान रोशन की भेंट हुई फिल्मकार किदार शर्मा से, जिन्होंने सन 1949 में रोशन को अपनी फिल्म नेकी और बदी के संगीत निर्देशन की कमान सौंपी। हालांकि फिल्म नेकी और बदी असफल रही, रोशन को अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति का रास्ता मिल गया। इसी दौरान उन्होंने फिल्म बावरे नैन में संगीत दिया। बावरे नैन के निर्माता थे गायक मुकेश।

मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीतकार रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

104.4 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में। और आज के सफर में मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त नीतू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और सुनते हैं आपके पसंदीदा गाने। पहला गाना हम आपको सुनाएंगे कुमार शानू और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है दुश्मन।
1: प्यार को हो जाने दो।
0: और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं, ये है महाराष्ट्र जालना से विजय पाटिल जो इस गाने को सुनना चाहते हैं, और ये है राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश, साथ ही विष्णु मिस्कीन, रितिका वानी, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ संगीता मिस्कीन, आरोही प्रियांशी सोनी, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक अनिल जैवी डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। लाल कुर्ते रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू निशांत, कौशिकी दीपाली, युवान और आर के राजा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरेवाल, भानु प्रकाश और गीतिका, महाराष्ट्र के धूलिया अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड से मनोहर मगर, यामिनी और उद्यन अर्पिता, शाजीनगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से ही हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबिता सुभाष योगी और डब्बू और बब्बू भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया, राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जालना जिला मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाव तांदले, धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ये हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंग्या, नमन और अपार ढिंग्या, सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि अश्विन, मंगला बेन, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकेश नेपानगर मध्य प्रदेश से, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबई सिल्लौड जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, अनिल कुमार घोटके, वैशाली प्राजक्ता, वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश घोटके, ग्राम दुलापुर यूपी जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा नईम, नदीम और असद बाबू। मालवा रेडियो श्रोता संघ राम हिंगड़ी आलोर जिला रतलाम एमपी से जगदीश ठाकर, रंजुबाई युवराज और शिवांगी गांव फानासी जिला हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार, मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदारानी और हिना कौसर गांव गड़ी कोटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से, सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद, अक्सा, आयशा और उमर अंसारी, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसराम सोलंकी, श्यामलाल घनश्याम बाबू, बाबू गौरी और हसन सिक्का। नांगलोई दिल्ली से हैं मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा, दहीगांव नादुरा से ढोंडू भातुरकर, मंगला विवेक भारती, कोमल समाधान, संत नगरी शेगांव से शुभम राउत और रुद्र राउत, जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद और इनके परिवार के सदस्य, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और मयंक, ये हैं नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हमाद, रामपुर लिसनर क्लब नालापार छोटे साहब रामपुर से हैं, और चंदोसी रोड चमनपुरा यूपी से मुकेश गौतम, सुनील अमन, बुद्धनगर खंडवा से नदीम और राजू, चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय जयकिशन, इंद्राणी कुमारी साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुना राम और कृष्णा।

रामशंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता यादव, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरत। गंज डंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमसुल कमर राही भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना कुमार शानू, लता मंगेशकर की आवाज। इस फिल्म का नाम है दुश्मन।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो
1: ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में। और जो बारी अगले गाने की, और ये गाना है फिल्म क्या यही प्यार है फिल्म से। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। और ये है गांव लोहडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन मोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी। नागपुर महाराष्ट्र से कमल स्वानी, डॉक्टर हाजी अफजल मलिक, संदीप रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी स्वानी और डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डीके हिटलर, इनके परिवार के सदस्य, कस्बा उगहती बदायूं से, कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव ओमपुरी और कल्लू मिस्त्री, साधुश्वे राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत, आयुष, नंदिनी, धमदी ग्राम सुक्री कला से अमित, शकुनारुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार, नरगिस खातून, बहेड़ी से अंजुम भाई और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरभ, शाइना और मैंडी शर्मा। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़से, ललिता आशारानी, संजना परी, कार्तिक, देविका, लड्डू चौधरी और प्रयाग राज चौधरी और उनके परिवार के सदस्य। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से हैं हमारे ये श्रोता मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमांश भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। जिला नाभा पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योतिरानी, गुरमंत और मनु। ग्राम लसूडिया तहसीलगढ़ जिला राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन कोमल, परी कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। साथी मगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार कंबोज। रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहु और मनु भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बास और इनके परिवार के सभी सदस्य। गाट के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता। गांव नंगलखेड़ा पंजाब फगवाड़ा से हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान आशीष मुहरकर। नई दिल्ली टैगोर गार्डन से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, पापाजी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, साहिबा जफ्फार, फरीदा, शबनम, अशरफ खान, रईसा खातून और मंजू।

निम भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये है गांव धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव साहू, नवीन और युवराज। मंडा टोला डोडी लोहरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से डोबेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल कामेश और माहिर। ये है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका। हीरावाली गांव फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती और हिमांशु। सागरा सोमानी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन साहू, देवेंद्र प्रताप, नेहा, मिलन, प्रणय कुमार, रुद्रांश और इनके परिवार के सदस्य। जुनवानी स्मृति नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित, रमेश साहू, तारा, विद्या साहू, जितेंद्र, किशन, सुनीता, रसीवन, नीलकंठ, चंद्रहास, हिरेंद्र, संजीवन और त्रिलोक। पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुग, अश्विनी, गोविंद, टोनी, लव दीवान और राधे ढिंगरा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद, सूरज अख्तर, जैस्मीन, शकीला, शमा, हिना, राजिया सुल्ताना। ये हैं हमारे श्रोता। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी। रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके परिवार के सदस्य। और सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, बाबुल सुप्रियो, अलका याग्निक की आवाज, फिल्म का नाम क्या यही प्यार है। तो ये गाना आप

क्या यही प्यार है, इस फिल्म से ये गाना आपने सुना बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज में। इस समय आपने ट्यून इन किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम आपकी पसंद। अब आप सुनेंगे ये गाना जिसमें आवाज है सिंगर देव नेगी की, फिल्म का नाम केदारनाथ। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ये हैं हमारे श्रोता रावर करनाल से विनोद लखन पाल और इनके परिवार के सदस्य। सलार पहले गांव से कश्मीर से हैं पीरजादा मिराज और इनके परिवार के सदस्य। सनावत से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना, गांव चांदूर विश्वास, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा विशाल, ग्राम राजौर तहसील मुताला महाराष्ट्र से राज कवई, राजवीर कवई, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अल्फाल, अल्ताफ हुसैन, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य, कसाना कांट्रोड लदावली से, सदवीर सिंह बिजरानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू नव्या, जिला सिरसा हरियाणा, गांव खारिया ढांडी से, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, बड़ा बमचौक खंडवा एमपी से ममता मार्कंडे, संजय और किट्टू भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत रामानंद कुशवाहा और इनके परिवार के सभी सदस्य। रामनिवास अग्रवाल, धनंजय, जयश्री, अंजलि, बाला साहेब, नंदकिशोर घटे, संगीता और साक्षी, बीड शहर महाराष्ट्र से। शाहू नगर यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी। ये हैं बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, डुक्कू। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया। मेरठ से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। गांव खोखरावाली श्रीगंगानगर राजस्थान से विनोद बारासा, विशाल बारासा, रोशनी, विकास और शकुन। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित, हैप्पी। दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल। बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू मोटे, गजानन, संजय, ज्ञानेश्वर, देवेंद्र भटकर भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश प्रगेश, प्रतीश और इनका पूरा परिवार। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति, विमल ठाकुर, सरिता, शुभ लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीतू, नीलू, अमन, रिया, सेजल, सूर्य, सोना, रीना, नीरज ये गाना सुनना चाहते हैं। बक्सेरा दातकगंज बदायूं से सोनवर्षा, खानपुर मिर्जापुर से अनीश, राजभर, मनीष, आशीष और आकर्ष। ये हैं बेड़ी एमपी से हुकुम करमकर और सुनीता करमकर, रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, और कवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। साथी ये हमारे श्रोता हैं राहुल पाल, हरिमोहन, अंजना, ज्योति, लक्ष, बघेल, बल्लू, ग्राम गोपी, खीरिया तहसील भांडेर दतिया एमपी से, उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई भारती, रमेश, विनीत और मिथिल, अनार बाजार जगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गाव्या, सुच्चा सिंह, जयपाल यादव, विनोदपुरी, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, चकमाच एमडी पत्रुड़ा राजस्थान के गंगानगर से, मंगल जनागल, श्री रोशनी, अंकुर जनांगल, इंदु डॉक्टर, सुनील जनांगल। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से है राष्ट्रपाल गजबी, राधिका और तन्मय। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल ईशान, पूजा परिहार। और आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम केदारनाथ और इस गाने को गाया है देव नेगी ने।

देव नेगी की आवाज़ और फिल्म का नाम केदारनाथ। ये गाना आपने सुना आकाशवाणी बरेली से, प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद। और अब बारी अगले गाने की, वो है हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म से, कुमार शानू सारिका कपूर की आवाज। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका बलविंदर जयतेग और मीका विरक, संभाजी चौक सिटको न्यू नादेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास प्रीति आशा दीपांजलि दीक्षा शशांक बागमारे और इनके परिवार के सदस्य, गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ता कुमारी डॉक्टर प्रियंका डॉक्टर प्रशांत डॉक्टर प्रियम वामिका और वाणी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, विजय सुरलकर रतनमाला और मुताला महाराष्ट्र से हैं, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर पुराना शेर बरेली से, जमुना प्रसाद किरण मौर्य दृष्टि और मानवी राम उदयपुर बनुजान जिला बरेली उत्तर प्रदेश से, नाजिम अली वसीम अकरम अहमद मुनाजिर हुसैन गुड्डू अली मोहम्मद हुसैफ हासिम अली खालिद अली अदीफा फातिमा जेबनूर और आकिब अली। ढानकी रोड उमरखेट से हैं भाई रजाक खान शबाना बेगम जावेद खान और आसमा परवीन, गांव बांडीवाला फाजल का पंजाब से, ओम बगड़िया क्रियांश योगेश और रजत बेबी गरिमा बगड़िया इस गाने को सुनना चाहते हैं, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, सुनीता सिंह अंकिता ऋतु संकल्प

गुड़िया वेदा धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन दिवाकर और वंशिका शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से है। आफ्ताब अंसारी रियाज अंसारी मोहम्मद कैफ अनवर लुबना अंसारी आलिया और तामसा रोड हडगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़ आविष्कार प्रणीता और अन्यामिका गायकवाड़ भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। उमरी नादेर महाराष्ट्र से बालू आप्पा घटबोले और ज्योति अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर एमपी से चंद्रेश गोहर वंदना मयंक तन्वी जयपाल उद और ये है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार माया देवी राहुल विनीत और सोनम साथ ही मनकारे मंदिर बीडीए कॉलोनी करकैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर पन्नी लाल आशीष अमर सिंह हितेश राजेश रूबी एकता दिव्या रचना उमवती खनक शकुन सारांश आयांश अदिति शिवांश और प्रथिव सिंह ये है मुकेश गोस्वामी मधु आशीष शिवन्या अनुज भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साथ ही तहसील फ्रॉम पूर्णा महाराष्ट्र से विलेज दिगांव है सदाशिव कविता श्रेया और मंटी थुराट बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नागर अंजू मोहित और तानिया लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी जीवनलाल निम्मी शिवम सतीश मुकेश भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। मधुबनी बिहार से निवान सिंह और ज्योति सिंह मुल्ढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर शशिकला सुमेत साधना और पवन पाटिल और आप सभी की पसंद का जो गाना है वो है फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया से कुमार शानू सारिका कपूर की आवाज में।

समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और जो अगला गाना है वो आप सभी को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारे कौन से श्रोता कहां से इस गाने को सुनना चाहते हैं। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुपना और यश मंसूरी, गांव बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम, ये है दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखबीर लखवीर, रानू कृष्णा, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और उनके बेटे। साथ ही ये हैं गोठा खंडुआ से राम बाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, माधुरी, सविता और इनका पूरा परिवार। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजुरी और ज्योति भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मुसा, भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और जगताप, मुकेश जगताप।

और ये है राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत, संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव ज्योति और ओजस्वी, आकोट से विनायक बेंडे मंगला विजय पवन और संजीव, गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही शाहीन फातिमा अनु अदनान फैजान और आदाब, मारहटा दरवाजा एटा से नबी हसन सहनाज नवेद सुहेल अनम यसीद वारसी और यशप अब्बासी, ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम सबीर राही मेराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, वीरमगाम गुजरासी अजीत भावसार प्रमिला भावेर और सनी भावसार, सप्तरंग श्रोता परिवार कुमार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले सविता निकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका पुनावले।

पुणे से अजय, करिश्मा, विका और विशाखा, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, विजया ताइडे, जिगर जिगांव विदर्भ से वसंतराव भोजने और सुनंदा, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन गिले, नवदीप विश्वदीप और नीलेश, पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा, फौजिया, आहिल अरहान और इनके परिवार के सदस्य, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद फातिमा वकार, करीज हसीना दिलशाद और वसीम फातिमा, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा हादिया, आफिया और इनका पूरा परिवार, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये है जिला सुपौल, मस्जिद गली सिराजपुर बिहार से मोहम्मद वकील अहमद, नाजनी मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद काफिज और मोहम्मद आसिफ के अलावा कामरान, मोहम्मद शाहबाज, नाज प्रवीण, नाजेश प्रवीण, रूही खुशबू, मोहम्मद आकिब, शाकिब, मोहम्मद जैद भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। काजागिरी कॉलोनी कोपारा गांव से हैं सुरेश मालोडे, वर्षा श्रद्धा और मानसी मालोडे, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती, गांव भोजपुर तगा चलकाना अब सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत नाहिद, रानी आयत, मोहम्मद इंतजार, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन, नासमा बेगम, तौसीफ हाशमी, तैमूर और कलीम, सिहारा बिजनौर यूपी से आसिफ चौधरी, अरफात कादिर और अदीब। साथ ही ये हैं हमारे श्रोता बेगूसराय बिहार से नंदन कुमार सिंह और अंकित कुमार, शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदर, लाल योगेश, दीपक, पूजा गांव जाखोत से, और मुजफ्फरपुर बिहार से देवेंद्र रावत सर, राजू कुमार, बिट्टू, अर्चना, कल्पना, मुन्नी, चांदनी और नंदिनी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया और सरोज चौरसिया, भोला कॉलोनी घरुंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन साहिल वाणी और इस गाने को सुनना चाहते हैं। सोंगा मगलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार, सावित्री मोहित, देविका गजेंद्र हेयांश और इनके परिवार के सदस्य, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, और आप सभी की पसंद का ये गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम दावते इश्क, इसमें आवाज है शालमली खोल गढ़े की।

आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और अब हमारे सभी श्रोता जो कि हैं ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार, आदर्श और अलौकिक चंसौलिया, राजकोट से जैमिन कुमार, भवासार प्रमिला, हितल जैन और कृष्णा, यह नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, डावर खुश नसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, साथ ही ये है वर्ली मुंबई से नवाब खान, मास्टर अजहर खान और अजीम खान भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद, मोहाली पंजाब गांव तंगोरी से गुरप्रीत सिंह, तस्वीर महक प्रीत और शहजाद प्रीत भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। वैष्णो कॉलोनी सिलावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश, मोहम्मद शादाब, फुले नगर बीड़ महाराष्ट्र से बाला प्रसाद कारवा, गीतांजलि, आकाश और आकांक्षा कारवा, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह ज्योति, रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका, गली सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतन माला, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्र प्रकाश, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी सोनू मोनी, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि, बनी आरुष, शौर्य और दिनेश, दत्रिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा और पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा, एमएलबी ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या खुराना, आरव खुराना और एसके पप्पी इस गाने को सुनना चाहते हैं। गोवर्धन कॉलोनी बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना आशीष, चैतन्य मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और किशु, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती और जगदीश, प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा और प्रथम सलूजा इस गाने को सुनना चाहते हैं। जनकपुरी न्यू दिल्ली से कस्बा उघैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस प्रशांत, कार्तिक और निर्भय, ये है स्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो ग्रुप। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, आकाश, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश, मनीष, रिहान, वैदही, हंसिका, पायल, अंकिता, खडवा एमपी से अब्दुल गफ्फर डावर भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल और भारती लकान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से, गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे और मोता राव पंचाल, राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धनवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, चंद्रपाल, उल्फत, बबलू गंगवार, वेदपाल, संजीव, कस्बा क्यूलड़िया, नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से। और आप सुनते हैं ये गाना, फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में।

दिल ने फिर याद किया, इस फिल्म से आपने ये गाना सुना सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में। और इस समय आपने ट्यून इन किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद। जो अभी समय हुआ है 10:54 और 43 सेकेंड, यानी कि आपको हम एक गाना सुना सकते हैं और आपके नामों को भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आपके नाम बताते हैं। आप कहाँ से हैं? ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता सत्यम सुंदरम, राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम, मजनूगर टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग आकांक्षा और माही मलिक, दरबार कॉलोनी सनावद से हैं किशोर कुमार सांवले, रेखा हिमांशु सुलोचना चारवी और प्रणय, ये है होली चौक उत्तम नगर से जय राम खुरवाल, सचिन अमन, दीपांशु इनके परिवार के सदस्य, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी पर्ल और विलिस, साथ ही ये हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला खुशबू ज्योति, चौरादा बार नवापारा अभ्यारण बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, काजल मीनाक्षी कृष्णा रामलाल दिलीप आकली दीवान MP से, सहारनपुर से राधा नामदेव अपर्णा अभिषेक नामदेव और हर्षित, ग्राम टोडरपुर भूड़ बिसौली बदायूं UP से PS यादव, अजय पाल पवन प्रभात मयंक मुन्नी देवी प्रतिभा प्रतिज्ञा नीतू सिंह यादव, डाबकी रोड अकोला से सुशीला सदानंद मंदुरकर कुमार गौरव और उनके परिवार के सदस्य, बुलंदशहर से रानी गौड़ और उमेश बुलंदशहर से ही है इनके परिवार के सभी सदस्य, तहसील आलोट जिला रतलाम MP से विक्रम मालवीय रचना महेश्वरी और इनका पूरा परिवार वनदेवी विक्रम और कस्बा उघेती बताई।

से देवेंद्र गुप्ता, धीरज प्रिंस, प्रकाश, प्रशांत कार्तिक भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। फुले नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद कारवा, गीतांजलि आकाश और आकांक्षा, मोहम्मद हाफिजपुर रहमान, हबीब खालिल और अली रहमान जो कि हैं ईदगाह जिला बकार पंजाब से इस गाने को सुनना चाहते हैं। और ये हैं हमारे श्रोता राशिद हुसैन अंसारी आसना, मोहम्मद कैफ जैन मंदिर गली कुरावली से, 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से, रेखा नंदिनी, पूजा बबिता, रघुवंशी भूमिका, वंदना खड़ से, नारायण भाऊ इनके परिवार के सभी सदस्य, जावेद इनायत, यूसुफ इनायत जो कि इंग्लैंड से हैं, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से, ब्रजेंद्र, तारा, सोनाली, सोनम और आशीष भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है शादी में जरूर आना और इसे गाया है आरको और आकांक्षा ने।

और ये हैं शाजीनगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा नसीब रेडियो श्रोता संघ से अब्दुल गफ्फार, डावर खुश नसीब, अब्दुल हक, जियाउल भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी बरेली है 100.4 FM पर, और अब सुनते हैं सब रंग। सबसे पहले ये भजन।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

और अब रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 15 जुलाई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है महिलाओं में बच्चेदानी की रसौली, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार 14 जुलाई 2026 यानी कि आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में बरेली की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्या सिन्हा उपस्थित रहेंगी। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए। विषय है महिलाओं में बच्चेदानी की रसौली, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार 14 जुलाई 2026 यानी कि आज शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर है 0581251720।

अभी आप सुन रहे थे सब रंग, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। 11:15 हुए हैं और समय है प्रोग्राम झुमका गिरारे का। तो चलिए सुनते हैं झुमका गिरारे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम झुमका गिरारे में। दोस्तों, वक्त हमेशा चलता रहता है, लेकिन कुछ शहर ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ अपनी एक नई इबारत लिख देते हैं। हमारा बरेली भी आज एक ऐसे ही खूबसूरत मोड़ पर खड़ा है, जहां इतिहास की गूंज भी है और आधुनिकता की रफ्तार भी। जब भी हम बरेली कहते हैं तो कानों में बरबस ही झुमका गिरारे की धुन सुनाई देने लगती है। बरसों तक इस शहर ने उस झुमके के खोने और मिलने की कहानियों को जिया है।

तो इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना झुमका तिराहा सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन बदलते हुए वक्त के साथ हमारे स्मार्ट सिटी को नई पहचान मिली है। बरेली विकास प्राधिकरण यानी कि BDA द्वारा रामगंगा नगर के सेक्टर 7 में DMart के ठीक पास एक बेहद खूबसूरत और आलिशान क्लॉक टावर यानी कि घंटा घर का निर्माण किया गया है। आज के विशेष कार्यक्रम में हम सैर करने वाले हैं इसी नए क्लॉक टावर की।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है झुमका किरारे। तो हमने इस नए क्लॉक टावर को देखकर खुद बरेली की जनता से जाना कि लोग यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं। मौजूद है क्लॉक टावर के पास, चलिए जानते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है। जी आपका नाम?
1: मोहम्मद फुरकान अंसारी।
0: जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ?
1: बहुत बढ़िया
0: जी। अक्सर आते हैं या क्लॉक टावर बनने की बात ही आना शुरू?
1: नहीं, पहले आते थे लेकिन अभी ज्यादा आते हैं क्योंकि क्लॉक टावर के पास में वीडियो वगैरह बनती है ना, तो अच्छा लगता है यहाँ पर।
0: तो आप बरेली के दूसरे लोकेशंस पे अब कम जाते हैं?
1: जी बहुत कम जाते हैं, जब यहीं पे सब कुछ है बरेली में तो बाहर कौन जाएगा फिर।
0: जी तो लोगों से क्या गुजारिश करेंगे?
1: बढ़िया लोकेशन है, क्लॉक टावर है, बढ़िया है, यहीं पे आए वीडियो बनाए।
0: जी शुक्रिया। तो बरेली लगातार अपनी पहचान बनाता जा रहा है। अगर हम बात करें विकास के क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्रों में बरेली की पहचान बनी है, तो हम जानते हैं कि क्लॉक टावर को देखकर खुद बरेली की जनता, यहाँ के युवा क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर कैसा लगता है, क्या शाम को आप यहाँ पर आते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, हम भी आते हैं, हमारे दोस्त वगैरह भी आते हैं जब से बीडीए कॉलोनी बनी है। यहाँ की लोकेशन वगैरह भी अच्छी है, काफी घूमने की जगह भी है, पार्क वगैरह, तो यहाँ अच्छा फील होता है, बेटर लगता है मतलब हर जगह से।
0: तो अगर हम शाम की बात करें तो इसका व्यू कैसा लगता है?
1: शाम का भी व्यू बढ़िया लगता है, जैसे कि यहाँ पर आसपास में देख रहे हैं आप, पेड़ वगैरह भी हैं, घूमने की जगह भी है, रोड वगैरह भी अच्छे हैं। और
0: जी दोस्तों के साथ आना भी पसंद करते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, दोस्तों के साथ भी आते हैं, यार दोस्तों के साथ भी आते हैं और
0: तो बीडीए ने काफी तरक्की की है इस क्षेत्र में। अगर हम पुराने बरेली की बात करें तो क्या कुछ बदलाव दिखता है आपको?
1: पहले से बहुत बदलाव है, जैसे कि अभी ये बीडीए कॉलोनी है, यहाँ पहले सब खेत वगैरह हुआ करते थे लेकिन अभी कच्ची ये पक्की सड़कें बन गई हैं और यहाँ पेड़ वगैरह भी अच्छे हैं, तो लोग भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं साथ में घूमने के लिए, हमेशा आते रहते हैं।
0: जी तो

0: कहेंगे कि हमारा शहर सचमुच बदल रहा है।
1: हाँ, शहर बदल रहा है, बिल्कुल चमक रहा है पहले से।
2: जी, तो वक्त की कीमत बताने के लिए बहुत अच्छी पहल है बीजे की ओर से, तो चलिए मिलकर शुक्रिया करते हैं हम।
1: ठीक है, थैंक यू।

0: कि यहाँ पर बहुत सारे जो युवा है उन्हें कैसा लग रहा है जी? आपका नाम?
1: जी मेरा नाम हसन अंसारी।
0: हसन, आपको कैसा लग रहा है? मैं देख रही हूँ आप रील्स बनाने में काफी व्यस्त हैं।
1: जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। वीडियो बनाने के लिए आया हूँ मैं, और ये क्लॉक टावर की वजह से और अच्छा लग रहा है।
0: तो लोकेशन भी आपको अच्छी मिल जाती है?
1: जी हाँ, लोकेशन भी बहुत अच्छी मिल जाती है मुझे।
0: तो दूर रहते हैं या पास रहते हैं?
1: पास में ही रहता हूँ मैं।
0: जी, तो अक्सर आप आएंगे?
1: हाँ अक्सर आते हैं हम, और आते रहेंगे यहाँ, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है।
0: जी, ये घड़ी हम कुछ कह रही है, आपको क्या लग रहा है देख के कि कुछ कहना चाहती हो?
1: ये टाइम बदल रही है।
0: कुछ आपको कुछ गाना याद आ रहा है? हर घड़ी बदल रही है
1: गाना, यही वो याद आ रहा है, हर घड़ी बदल रही है
0: रूप जिंदगी हर पल यहाँ जीवन जियो जो है समा कल हो न हो। थैंक यू। बात कर रहे हैं क्लॉक टावर की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर लोग लगातार आते हैं, और यहाँ पर रामगंगा नगर की चौड़ी और साफ सुथरी सड़क से जब भी आप गुजरते हैं तो दूर से ही आसमान को छूता हुआ ये क्लॉक टावर आपका ध्यान खींच लेता है। इस टावर के ऊपरी हिस्से में चारों दिशाओं में विशाल और आधुनिक घड़ियाँ लगाई गई हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि चालू हालत में है। दिन के चटक धूप में जहाँ टावर अपनी वास्तुकला से लोगों को लुभा रहा है, वही ढलती शाम के साथ जब आप इस रोड पर गुजरेंगे तो रंग बिरंगी आधुनिक लाइट्स जगमगाती मिलेंगी। ऐसा लगता है कि मानो हम शहर में नहीं बल्कि किसी अलग ही दुनिया में खड़े हो। ये घंटा घर इस बात का प्रतीक है कि बरेली अब नए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है।

0: मेरी प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे। दोस्तों, ये क्लॉक टावर सिर्फ समय नहीं बताता बल्कि हमें याद दिलाता है कि हमारा शहर हर पल प्रगति कर रहा है। तो अगर आप भी अभी तक रामगंगा नगर के इस नए लैंडमार्क को देखने नहीं गए हैं तो अपनी शाम की चाय के बाद एक चक्कर यहाँ ज़रूर लगाइए। और इसी के साथ ही समय की सुइयाँ भी हमें इशारा कर रही हैं कि जब भी आप यहाँ आए हमें ज़रूर याद करें। तो इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे। दोस्तों, समय की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आप मुझे विदा लेने के लिए अनुमति दीजिए। उम्मीद है कि बरेली के इस नए रूप को सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर साझा करिए और यूँ ही सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 FM।
1: अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरारे, ये आकाशवाणी बरेली है। और अब लीजिए सुनिए FM रेनबो आकाशवाणी लखनऊ से।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: ग्यारह बज के 32 मिनट हो रहे हैं और हम सुन रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे, और हम देखते हैं हमारे साथ लाइन पर अब कौन जुड़ चुके हैं। हेलो।
4: चेहरे पे नूर ना होता तो ये दिल मजबूर ना होता, चेहरे पे नूर न होता तो ये दिल मजबूर न होता। मिलने आते हम आपसे रोज, मिलने आते हम आपसे रोज, आयुषी मैम अगर आपका घर दूर न होता। आयुषी मैम अगर आपका घर दूर न होता।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया सी ये शायरी पढ़ी, लेकिन पढ़ी किसने ये तो बता दे।
4: अस्सलाम वालेकुम
3: जी, किससे बात हो रही है?
4: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
3: भाई गुड मॉर्निंग है आपको भी, और इतनी जो आपने यहाँ पर खुशी फैला दी है, खुशी भरी आवाज से,
4: ये सब आपकी मोहब्बत में खुशी फैला दिया, ये सब आपका प्यार है।
3: चलिए आपका प्यार और हमारा।
4: बताइए मैम आप कैसी हैं?
3: मैं बस आप लोगों से बात करके बहुत खुश हो गई हूँ, आपके अच्छे अच्छे संदेश मिल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये हम सब के लिए इतने हेल्पफुल हैं कि आप भी बता दीजिए अपना संदेश क्या है।
4: हमारा संदेश आज का ये है, अभी बारिश हो नहीं रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत ज्यादा खिल रही है, तो बाहर कहीं भी निकले तो अपने कॉटन कपड़े पहन के निकले, पानी का बॉटल लेके निकले, खीरा और फ्रूट खाते रहे जिससे हाँ। कि जिस्म को पानी की कोई कमी ना लगे, कोई तकलीफ ना पहुंचे।
3: क्या बात है, बहुत ही अच्छा सा संदेश।
4: ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है।
3: आप ये करती हैं कि नहीं?
4: जी बिल्कुल करते हैं।
3: चलिए ठीक है, थैंक यू
4: मैम। हम अपने दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं।
3: जी बताइए।
4: गुलाब साप्ती, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम, वकील अहमद भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, बाबू अंसारी भाई, मोहम्मद सद्दाम भाई, मोहम्मद फैज भाई, और सिराजुद्दीन भाई, अकबर अंसारी, सत्यम कुमार, विनीत कुमार भाई, मोहम्मद अमीन भाई,
3: ओके,
4: मोहम्मद राशिद भाई, अल्तमस भाई।
3: चलिए बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया, थैंक यू।
4: मेरी एक छोटी सी मैम प्यारी सी बहन है रुस्दा अंसारी जो कचनार में रहती हैं।
3: चलिए ठीक है, ले लिया ना आप सबका। चलिए ठीक है,
4: ओके बाय
3: बाय। 11:24 हो रहे हैं, और जब लोग बहुत एंथुजियाज्म से आपको कॉल करते हैं तो अच्छा लगता है। आप सारे संदेश नोट करते रहिए क्योंकि जरूरी है, और इतनी गर्मी है तो गर्मी जब ज्यादा होती है तो ज्यादा ख्याल रखना भी बनता है। ऐसे ही हम सर्दियों में भी करते हैं, जब ज्यादा किसी चीज की एक्सट्रीमिटी होने लगे तो आपको थोड़े ज्यादा मेजर्स उठाने चाहिए। बस इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही मैथ्स है, ज्यादा नहीं। फिलहाल हमारे पास बहुत सारे भाई मेल्स आ रहे हैं और मैं उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही हूँ। सोशल मीडिया ज्ञान, मनोरंजन और रोजगार के अच्छे माध्यम है, लेकिन इनका अधिक उपयोग समय की बर्बादी, गलत जानकारी और ऑनलाइन ठगी का कारण भी बन सकता है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित, सुरक्षित और समझदारी से करें। ये किसका कहना है? ये ग्राम एवं पोस्ट उमरी जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से नागेश कुमार जी का, और कह रहे हैं सही तकनीक सही दिशा में उपयोग करें। तो बहुत अच्छी बात है, सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो मैंने अभी बात कही मौसम को लेकर वो कहीं ना कहीं हर चीज पे लागू होती है, और नागेश कुमार जी भी जो कह रहे हैं वो भी सोशल मीडिया के लिए बात कह रहे हैं, तो अति किसी चीज की भी बुरी है। आप थोड़ा थोड़ा थोड़ा हर चीज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ना करें। देखिए वारिस अली खान जी क्या कह रहे हैं, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, कह रहे हैं कि एक तो अर्ज किया है इन्होंने कि अपनी काबिलियत के बल पर आसमान की बुलंदी को छूना है, पैरों के नीचे मुझे सीढ़ियां अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, संदेश दिया है सड़क सुरक्षा पर, जीवन रक्षा पर। आप यातायात के नियमों का पालन करें, ओवर स्पीडिंग मत करें और ना ही ओवरटेक करें, दो पहिया वाहन पर 3 लोग सवारी ना करें, दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। याद रहे आपका घर पर कोई इंतजार कर रहा है, घर पर आप सुरक्षित पहुंचे। बहुत अच्छी बात है। एक संदेश तो मेरे दिमाग में भी हमेशा रहता है कि ये जो चलती फिरती बहुत रोड

होती हैं, इन पर अक्सर क्या होता है कि अगर हमें क्रॉस करना है तो हम सोचते हैं कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, समय बचेगा, क्रॉस कर लो। ऐसे में आप क्या करते हैं कि वो 2-3-4 मिनट वाला जो यू टर्न है वो अवॉइड करने के लिए आप अपनी जिंदगी हाथ पर लेकर निकल पड़ते हैं। अब आपको नहीं पता कि कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है, और आप एक अनजान गाड़ी के ऊपर इतना विश्वास कैसे कर लेते हैं कि आप बस अपनी जान हथेली पे लेकर निकल रहे थे। मान लीजिए उसने समय पर ब्रेक नहीं लगाया, तो बस 4 मिनट बचाने के लिए, बस थोड़ी दूर का खर्चा बचाने के लिए या थोड़ी दूर की मेहनत बचाने के लिए आप अपनी जान को कम मत समझे, उसे खिलवाड़ ना करें, उसकी हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें। क्योंकि ये भी सड़क नियम में ही आता है कि अगर आप एकदम से क्रॉस करते हैं तो हो सकता है सामने वाला भी समय पर ब्रेक ना लगाए, चाहते हुए भी ना लगा पाए। तो आप प्रॉमिस करिए कि आप अब ऐसा नहीं करेंगे। और मोहम्मद सहीर का मेल ले लेते हैं, कह रहे हैं, क्यूट सी प्यारी वाली, आपको प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, तो कहाँ से बात कर रहे हैं मोहम्मद? साहिरामपुर कटरा जिला बाराबंकी से ईमेल कर रहे हैं। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, सुपर हिट भी बहुत अच्छा लगा, और ये इसमें संदेश देना चाह रहे हैं कि सभी लोग अपना ख्याल रखें, खास करके छोटे बच्चे बाहर ना निकले धूप में, बारिश में, जहां पानी भरा हो उसको साफ कर दें। और नाम लिया अपने एक दोस्त का, मोहम्मद फैज। ओके, तो इसी के साथ एक और मेल मैं ले लेती हूँ, महेंद्र दीपन जी का। भाई कह रहे हैं कि गांवरूड़ जिला नागौर राजस्थान से कार्यक्रम सुन रहे हैं, और छोटा सा संदेश दिया कि बारिश के मौसम में घर के आसपास साफ सफाई रखें, खाली ड्रम, बाल्टी, टायर या किसी भी बर्तन में पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छर ना पनपे। साथ ही बारिश के समय बिजली के खंभों और टूटे हुए तारों से सुरक्षित दूरी बनाएं। छोटी सी सावधानी हमें बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। और इतना ही प्यारा प्यारा जब मेल आया, तो प्यारा प्यारा गाना भी तो बनता है भाई।

संदेश आपके गीत हमारे चल रहा है आयुषी के साथ। आप बने हुए हैं 100.7 FM पर। बातें हो रही हैं बहुत सारी, देखते हैं हमारे पास किसका मेल आया है। वकील अहमद जी कह रहे हैं आपकी आवाज अच्छी लगती है और संदेश है कि बच्चों को स्कूल जाने से पहले कैप लगाकर भेजें, धूप तेज हो रही है, कभी बारिश तेज हो रही है और इस समय खेत में पास की बुवाई करवा रहे हैं और पेड़ की छाया में बैठे हैं। वकील अहमद मंसूरी कट का हथौड़ी जिला सीतापुर से बात कर रहे हैं। गुलाब सासती की का भी मेल आया है संडीला से और संदेश है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ देवान शर्मा, पीयूष शर्मा, विभा शर्मा, किरण का विश्वास खंड से मेल आया है और कह रहे हैं कि आप अपना कोई भी OTP या पासवर्ड बिना जाने ना शेयर करें किसी से, और कहीं भी आपके पास कॉल आए तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो स्कैम की है या नहीं है तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल फोन पर आप कॉल कर ये पता कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा मेल लिखा। इसी के साथ नजीम रायन का मेल है, कहने मेरा संदेश है कि सड़क पैदल चलने वालों के भी साथ अच्छा उनके लिए ऐसी व्यवस्था करें कि वो भी सुरक्षित चल सके और आप गाड़ी और अपना वाहन भी ऐसे चलाएं कि जो सड़क पर चलना चाहते हैं वो भी अच्छे से चल सके। नजीम रायन जी, आपकी बात की भावना हम तक पहुंच गई। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं और कह रहे कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और अपने आसपास सफाई रखें, इधर उधर कूड़ा करकट ना डालें। आपको पता है अगर आपकी सिटी को कोई अवार्ड दे और कहे कि वाह क्या सुंदर तरीके से आप ये अपना शहर रखते हैं, तो वो अवार्ड किसको जाता है? वो अवार्ड वहां के हर एक नागरिक को जाता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से कितनी भी सफाई कर ले, अगर मान लीजिए किसी दो चार लोगों ने भी वो कूड़ा करकट फैला दिया तो आपकी पूरी कोशिश जो है वो बेकार हो जाती है। लेकिन जब हमें तारीफ मिलती है तो हमें अच्छा बहुत लगता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि अपने शहर को हर कोई अपनी जिम्मेदारी ले कि कल को ये अवार्ड घोषित हो तो हमारे पास आए। ऐसे करिए ना सफाई, मजा आएगा बहुत। फिलहाल हमारे पास चितईपुर से सोनम, शैंकी और आरुष और शताक्षी का मेल आया है और लिखते हैं कि आप अपने अपने घरों में पौधे लगाते हैं तो उनका ख्याल भी रखें, क्योंकि बहुत गर्मी, बहुत धूप से, बहुत बारिश से भी उनको नुकसान होता है। तो उसे मौसम के हवाले ना छोड़ें, उन्हें भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से खाद पानी ही दें, ज़्यादा ना दें, कम ना दें और समय पर दें। भाई बहुत सही बात है, क्योंकि हम कहते हैं कि पेड़ पौधे में भी तो जान होती है, हमारी तरह बढ़ रहे होते हैं, बस बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, हमारी तरह चल फिर के काम नहीं कर सकते, तो क्या हुआ। बिल्कुल। तो इसी के साथ भाई इतने सुंदर सुंदर संदेश हमने ले लिए, आप कहेंगे ब्यूटीफुल सा ट्रैक भी सुना दो आयुषी उसके पहले ही आपके लिए।

0: तो राणा मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
1: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
0: और भरोसा।
1: जानो फिर मानो।
2: 11:51 और आयुषी को सुन रहे हैं आप। संदेश आपके गीत हमारे पे प्रवीण का एक मेल आया है, कहां से लिखा है ये नहीं बताया है, पर कोई बात नहीं, लिखा है स्पैम कॉल्स की कंप्लेन के लिए भारत सरकार की ऐप पे जाएं, उनके वेबसाइट पे जाएं और वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं आप। TRAIDNT का भी नाम लिया है और आप देख सकते हैं, आप जानकारी हासिल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ हमारे पास मेल आया है प्रेरणा का, कासगंज से। कह रही है कि आप अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कई चीजें मंगाते हैं, कई चीजें रिटर्न करते हैं, लेकिन अक्सर आप अपना ये ट्रैकिंग रखना भूल जाते हैं कि वो रिफंड आया भी कि नहीं। याद रखें, वो पैसा आपकी कमाई का है और कंपनी को उससे ज्यादा मतलब नहीं, तो आप अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इसमें भी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे पास वरुण का मेल आया है महाराष्ट्र से। अच्छा, तो वहां से सुन रहे हैं वरुण। कह रहे हैं कि मौसम का मजा ले रहा हूं, मौसम के साथ मैं बहुत चाय पकौड़ी वगैरह पसंद करता हूं। अच्छा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको हेल्दी चॉइसेस में बदलूं और मैं सिर्फ पकौड़ी चाय और मीठी चीजों के बजाय स्प्राउट्स पे ध्यान दे रहा हूँ, थोड़े हेल्थ कॉन्शियस चीजों पे ध्यान दे रहा हूँ। अक्सर हम मौसम का मजा लेते लेते अपनी हेल्थ का मजा नहीं ले पाते, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सारे हमें मेल्स किए, इतने सारे संदेश भेजे हैं। आप सोचते हैं, समझते हैं, फिर कुछ नया निकालते हैं और भेजते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बस चलते चलते यही कहूंगी कि आप हमारे साथ जब बने रहते हैं, आप खुश रहते हैं, आप चीज़ें इंजॉय करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन बस उसमें थोड़ी सी सावधानी आपको बरत लेनी है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि गलती या भूल या चूक बस महज कुछ सेकंड्स का काम होता है, लेकिन उसका जो भुगतान होता है वो बहुत लंबा होता है। तो आप अपना ध्यान रखें, अपने साथ वालों का ध्यान रखें, उनके जज्बातों का ध्यान रखें। कोई ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का दिल दुख जाए, और किसी का दिल दुख जाए तो मना भी लीजिए ना फटाफट। चलिए, फिलहाल इसी के साथ मैं आयुषी लेती हूँ संदेश आपके गीत हमारे से इजाजत, और इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। आपके साथ जुड़ेगी एक प्यारी सी आवाज उस पार, इस गाने के पार, इस न्यूज ब्रेक के उस पार। ख्याल रखिए अपना।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत टैक्स 2026 के इस तीसरे संस्करण में लगभग 7,000 खरीदार और 20,000 से अधिक कपड़ा उत्पादों की भागीदारी देखी जा रही है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। इस आयोजन में 20 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, राष्ट्रीय उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और विचारक सहित 350 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रस्तावित कार्य योजना पर चर्चा के लिए कल लखनऊ पहुंची संयुक्त संसदीय समिति JPC ने विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया। अपने दौरे के दूसरे और अंतिम दिन आज समिति राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व अन्य लोगों से चर्चा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल लखनऊ में प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक सड़क अवसंरचना विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला है। इसके माध्यम से निवेश, उद्योग, कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा रोजगार को नई गति मिलेगी। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय संयुक्त अरब अमीरात UAE के 2 टैंकरों पर ईरान की क्रूज मिसाइलों के हमले में एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। UAE के रक्षा मंत्रालय ने आज सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि मोम्बासा और अल बहिया नाम के इन टैंकरों को जलडमरू मध्य के दक्षिणी लेन में ओमान की समुद्री सीमा के भीतर निशाना बनाया गया। मारे गए क्रू सदस्य मोम्बासा टैंकर पर सवार थे।

घायलों में से 4 की हालत गंभीर है। सरकार ने कहा है कि वित्तीय सेवा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा जोखिम अब केवल डेटा चोरी और छिटपिट उल्लंघनों तक सीमित नहीं रह गया है। ये जोखिम अब लेन देन, ग्राहक विश्वास, परिचालन निरंतरता, निर्णय लेने की प्रणालियों और अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करने वाले डिजिटल बुनियादी ढांचे में विश्वास तक फैल गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा और भुगतान इकोसिस्टम के लिए डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट 2025-26 के दूसरे संस्करण में ये जानकारी दी। मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि साइबर खतरों के लगातार बढ़ते जटिल स्वरूप को देखते हुए सार्वजनिक संस्थानों और उद्योग जगत के बीच विश्वसनीय साझेदारी डिजिटल भरोसे को मजबूत करने के लिए आवश्यक हो गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार आदाब। 100.7 FM रेनबो पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है आपकी होस्ट फातिमा। वक्त हो गया है फटाफट आपको वक्त बताने का। वक्त हो गया है 12:04 और कुछ सेकंड्स हमारी स्टूडियो की कुकु क्लॉक में, और ये टाइम है प्रोग्राम शत्रुपा का। प्रोग्राम शत्रुपा में आज हम फैशन के कौन से आस्पेक्ट को आपके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, कहीं अगर ज़रूरी हुआ तो आपकी भी इनपुट्स लेंगे, क्योंकि हमारी महिलाएं और फैशन, इसके बीच का जो कनेक्शन है ना, बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो सब कुछ, सारे डिस्कशन, सारे मौजू पर बात आज हम करेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन उसके लिए रहना पड़ेगा कनेक्टेड आपको हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक मैंने क्यों कर लिया है, लेकिन उस ट्रैक को आप तक पहुँचाने से पहले एक छोटी सी बात, और वो बात ये है कि कई बार हमें जहाँ पहुँचना होता है या किसी काम को अगर अंजाम देना होता है तो उसे हम टाइमली नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में हम झूठ का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। जैसे छोटी छोटी मतलब बात को टाल दिया, घुमा दिया, सो एग्जैक्टली आप झूठ कहें या जो भी कहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी ईमानदारी से जैसी भी बात है वैसे बता दीजिए, जो भी कंडीशन थी आपके लेट अराइवल की, या फिर आपने अगर किसी काम को अंजाम देना था उसमें कुछ डिले हुआ, तो उसका जो भी एग्जैक्ट रीज़न था उसे प्लीज़ बता दीजिए, जिसको जिस तक ये बात पहुंचनी अनिवार्य है, क्योंकि उस कंडीशन में फिर आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, याद है ना ये कहावत सबको। तो बस इसी नोट पर ऐसे ही स्टूडियो आते वक्त ये ख्याल आया जहन में, तो सोचा कि अपने लिसनर्स से इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगी, ताकि कहीं ना कहीं हम रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसको लाइट कर पाए, अपनी जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं उनको मेंटेन कर पाए। तो बस इसी नोट पर आगाज़ करेंगे इस प्रोग्राम का एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो
7: फिर मानो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टॉल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

13 मिनट का वक्त और गर्मियों का मौसम चल रहा है। हालांकि बारिश के मौसम ने दस्तक दे दी है और अच्छा खासा मानसून हम एंजॉय भी कर रहे हैं। अब ऐसे ये जो मौसम होता है ना, जिसमें गर्मी और बारिश इकट्ठा में एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में हमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा फील होती है। अब ह्यूमिडिटी जब होती है तो चिपचिपापन और पसीना, मतलब पसीने का जो टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है। गर्मियों में एक अलग डिफरेंट सेपरेट होता है, लेकिन जब मानसून सीज़न आ जाता है ना, तो उसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट हो जाता है, जो काफ़ी इरिटेट भी करता है। ऐसे में कपड़े पहनना सूझबूझ से, समझदारी से बहुत फ़ायदा पहुंचाता है आपको। क्योंकि देखिए, आप ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे मानसून सीज़न आप घर में बैठे रहें और बस कूलर पंखे की हवा खाते रहें और कहीं जाने की ज़रूरत ना महसूस हो। ऐसा तो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गर्मी के दिनों में आपको कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मानसून, जब बारिश का सीज़न चल रहा हो और गर्मी साथ में हो, तो कैसे कपड़े आप पहने जो आपके फैशन सेंस को भी कहीं से, मतलब कहीं से आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और आप स्टाइलिश भी लगें और कंफर्टेबल भी महसूस करें। गर्मी के दिनों में भाई, अगर आप हल्के ढीले कपड़े पहनते हैं ना, तो आपको पसीना आता नहीं है। और जब पसीना नहीं आता, मतलब पसीना आता है ऑल एंड ऑल, ये कपड़े जो होते हैं ना, ये केपेबल होते हैं उस पसीने को सोख लेने में। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिल्कुल सूखे सूखे से रहते हैं ना, आपके कहीं पे चिपचिपाहट नहीं होती, तो आप चिड़चिड़ापन जो होता है ना नेचर में, वो भी दूर रहता है। गर्मी में इन हल्के कपड़ों को पहनने से आपको राहत मिल सकती है। कौन से हैं वो कपड़े जिनको पहनने से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बिल्कुल ड्राई महसूस भी करेंगे और ड्राई दिखेंगे भी, जिससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। गर्मी का मौसम आते ही लोग आरामदायक और हल्के कपड़ों की तलाश में रहते हैं। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए ढीले कपड़े पहनना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जी हाँ, ढीले कपड़े पहनिए। ढीले कपड़े पहनने के लिए आप सबसे पहले सूती कपड़ों का चयन करें। सूती कपड़ा सबसे हल्का और आरामदायक होता है। ये पसीने को सोखता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, नॉर्मल रखता है, उसको ठंडा रखने में मदद करता है। आपको आप सूती कपड़े कभी भी पहन के बाहर निकलिए, नो मैटर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन आपको चाहे कितना भी पसीना आया हो, चाहे वो बारिश का टाइम हो, अगर आपके थोड़े से कपड़े वेट भी हो जाए, तो कुछ देर बाद हवा लगते ही वो सूख जाते हैं और आपको ठंडक का एहसास देते हैं। अब सूती कपड़ों के अलावा कौन से वो फैब्रिक हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, या कौन से वो पैटर्न हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपका स्टाइल स्टेटमेंट कहीं से भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, इसके बारे में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हाँ, बाकी सब तो ठीक है, मतलब आप प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, बेहतरीन गाने एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी, अगर घर के बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज़ अपना वाटर बॉटल अपने साथ लेके चल रही है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब अगर आप बाहर का पानी पियेंगे और आप की बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेटर है हाइड्रेटेड रहने के लिए आप अपना पानी अपने साथ में लेकर के चलें। और बस इसी नोट

हाँ बिल्कुल, फ्लोरल प्रिंट आउटफिट्स न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, बल्कि ये मॉनसून के फ्रेश और वाइब्रेंट माहौल से भी पूरी तरह मेल खाते हैं। चाहे ऑफिस जाना हो, कॉलेज, दोस्तों के साथ आउटिंग या फिर कोई फैमिली फंक्शन हो, हर मौके के लिए फ्लोरल प्रिंट में कई शानदार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हल्के फैब्रिक, ब्राइट कलर्स और छोटे बड़े फूलों वाले डिजाइन आपको बारिश के मौसम में स्टाइलिश लुक देने के साथ साथ आरामदायक एहसास भी देते हैं। जी हाँ, देखिए जो मैं बात कर रही हूँ ना फ्लोरल आउटफिट्स की, जैसी मैंने बात की होगी, हमारी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स होंगी जिनका जहन अपनी उस साड़ी, अपने उस कुर्ते या फिर टॉप या फिर स्कर्ट की तरफ जरूर गया होगा, जिसमें फ्लोरल डिज़ाइन और जो काफ़ी हल्के फैब्रिक पर होते हैं। और काफ़ी हम लोग क्या करते हैं, कई सारे कपड़े तो ऐसे होते हैं जो यूज़ नहीं हो रहे होते, तो बस हम लपेट करके तह बना करके उसको अलमारी के किसी कोने में फिट कर देते हैं और उसे निकालने की कभी जहमत भी नहीं करते। तो जब हम इस तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका अटेंशन उन चीज़ों की तरफ भी जाता है जो चीज़ें हम कहीं एकदम ताक पे रख के भूल चुके होते हैं, राइट? तो मानसून में फ्लोरल प्रिंट आउटफिट पहनना बहुत ज़्यादा, देखिए एक कंफर्ट जोन, कंफर्ट लेवल तो डेवलप होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको फ्रेश, कलरफुल और स्टाइलिश लुक देते हैं। अब आपसे अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करें, तो हम कहना चाहेंगे जैसे ही बरसात शुरू होती है तो ठंड भी लगती है ना, हाँ थोड़ा सा मौसम में तब्दीली हो जाती है। ऐसे में अगर आपके इस तरीके के जो आउटफिट्स हैं आप पहनते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक अच्छी सी ठंड का एहसास होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे, और वो ये है कि फ्लोरल आउटफिट्स, देखिए अगर आपके सूती कपड़ों पर हैं तब तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जॉर्जेट और शिफॉन पे भी काफ़ी बेहतरीन प्रिंट्स आते हैं, फ्लोरल प्रिंट्स के जो बहुत बेहतरीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन बस इसके साथ ये होता है कि अगर आपके कपड़े वेट हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस सी फील होती है। तो आप कुछ सूती चुन्नी या सूती स्टोल का ऑप्शन अपने साथ अवेलेबल ज़रूर रखिएगा। तो इस फ्लोरल आउटफिट के अलावा और कौन से वो फैब्रिक हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं इस मानसून सीजन, इसके बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक बेहतरीन सा, बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक भी क्यों किया है, और साथ ही साथ वक्त हो गया एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।

देखिए भाई, मॉनसून के मौसम का जिक्र कर रहे हैं, उसको हम फैशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो मॉनसून का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, हल्की बारिश और ताजगी लेकर आता है। इस मौसम में जहां चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वहीं फैशन में भी रंग बिरंगे और फ्लोरल प्रिंट आउटफिट्स की मांग बढ़ जाती है। जी हाँ, अगर आप बारिश के मौसम में स्टाइल और कम्फर्ट दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन चाहती हैं, तो फ्लोरल प्रिंट आपके वार्डरोब का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन सकता है। जी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

बारह बजकर 39 मिनट का वक्त प्रोग्राम शत्रुपा एंजॉय कर रहे हैं आप अपनी होस्ट फातिमा के साथ, और बेशक आपको नजर नहीं लगेगी, लग भी सकती लेकिन ना लगने के लिए आप काला टीका लगा लीजिए, ऐसा सब कहते हैं। हमें नहीं पता भी काला टीका लगाने से नज़र लगती है कि नहीं लगती, लेकिन हाँ आप अगर बेहतरीन फैशन स्टेटमेंट फॉलो करते हैं ना मानसून के सीज़न में, तो नज़र लगने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ नज़र ना लगने की घबराहट से अपना जो फैशन सेंस है ना उसको बिल्कुल भी उसमें कोई रद्दोबदल मत करिएगा। हम आज आपसे गुफ्तगू कर रहे थे इस बारे में कि मॉनसून के सीज़न में कौन सा वो कपड़ा है, कौन सा वो फैब्रिक है जो आपको कंफर्टेबल रखेगा, आपका पसीना जल्दी सूख जाएगा और आपको चिपचिपाहट नहीं महसूस होगी, जिससे आपको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। जी हाँ, जब बॉडी पर चिपचिपाहट होती है ना तो बड़ा चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। अच्छा, अभी मैंने आपसे बात की फ्लोरल आउटफिट्स की म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले, अब मैं कहना चाहूंगी आपसे कि खादी से बने कपड़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये एक हल्का कपड़ा है जो आपको गर्मी के दिनों में ठंडा रखेगा। रियॉन एक सिंथेटिक कपड़ा है जो हल्का और नरम होता है, इसकी मदद से आप गर्मी में ठंडा महसूस कर सकती हैं। और जॉर्जेट के कपड़े क्या मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ कि भाई हालांकि ये आपको काफी कूल रखने में मदद करता है, लेकिन थोड़ा सा अगर बारिश हो जाती है ना तो फिर थोड़ा सा अनअवॉइडेबल सिचुएशन में आप फंस सकती हैं। उसके लिए आप अपने लिए कॉटन का स्टोल वगैरह अपने पास रखिए। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि गर्मी के दिनों में आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी चाहिए, जैसे हल्के रंग के कपड़े पहनने से पसीना कम आता है। जी हाँ, जो डार्क कलर्स होते हैं ना वो बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट, तो लाइट कलर के कपड़े पहनिए, काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले तो टोपी या फिर कोई कैप और अपना सनस्क्रीन का जो उपयोग है वो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब त्वचा को प्रोटेक्टेड करने रखने में मदद करेगा ये सनस्क्रीन, और साथ ही साथ एक और ट्रिक है जो बहुत ही कारगर साबित होती है, और वो ट्रिक ये है कि आप ख़ुद को हाइड्रेटेड रखिए। असल बात होता ही है, गर्मियों में तो हमें शिद्दत की प्यास लगती है लेकिन मानसून और सर्दी का जो सीज़न होता है ना उसमें हमें महसूस नहीं होती है प्यास। हालाँकि हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है लेकिन फिर भी हम कभी फील बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाते, तो हम अवॉइड कर देते हैं या फिर 2-2.5 घंटा पी और हमने एक सिप पानी भी नहीं पिया। लेकिन खुद को मॉनसून के सीजन में भी इक्वली हाइड्रेटेड रखिए, बहुत इत्मीनान रहेगा आपको, बड़ा सुकून मिलता है और आप रिलैक्स्ड माइंड से अपने कामों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कुछ हमारे फैशन सेंस की। अब आज क्योंकि प्रोग्राम है शत्रुपा, तो भाई इसमें

और भी कुछ ना कुछ डिस्कशन इस टॉपिक से जुड़ा होगा और किसी और एस्पेक्ट से भी हम इसे कनेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले सोच रही हूँ एक और बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुँचा दो। इतनी सारी बारिश की बातें हो गई हैं तो एक दो गाने तो बारिश के बनते हैं ना। बिल्कुल, आप इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर पाऊंगी आपको। सो हियर कम्स दिस ब्यूटिफुल ट्रैक, एंजॉय एंड स्टे ट्यून विद अस।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

बारह बजकर 50 मिनट का वक्त हो गया है और मॉनसून के सीज़न में आपको क्या पहनना है, किस तरीके के फैब्रिक आप ऑप्ट कर सकती हैं, इसके बारे में हमने गुफ्तगू कर ली। और मॉनसून का सीज़न जब आता है ना, तो सब लोग चाय पकौड़ा और पता नहीं क्या क्या बात करने लगते हैं, और कभी कभी मुंह में पानी भी आ जाता है। लेकिन अगर एक हेल्दी स्नैकिंग की हम बात करें, तो मखाना भेल बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। बड़ी जल्दी बन जाता है और बड़ा चटपटा होता है, हेल्दी भी होता है। थोड़े से घी में थोड़े मखाने कुरकुरे होने तक भून लें, उसके बाद उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया डालें, स्वाद अनुसार अंत में नमक डालें, चाट मसाला, नींबू का रस छिड़क करके उसके बाद सब कुछ टॉस कर दें, फिर खाइए। देखिए कितना मज़ा आता है खाने में, हेल्दी भी है, चटपटा भी है। देखिए मानसून के सीज़न में होता ये है कि हमारी जो ज़ुबान है ना, वो कुछ चटपटा ढूंढती है, तो चटपटा होता ही और बड़े मज़े का लगता है। बनाना भी बड़ा इजी है, कोई भी बना सकता है, बहुत इजीली बन जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन है मसाला कॉर्न चाट का। जी, स्वीट कॉर्न यानी मकई के दानों को उबाल लें या फिर स्टीम कर लें। अब इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, काली मिर्च, चाट मसाला और नींबू का रस निचोड़िए, गर्मा गर्म सर्व करिए, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। अब इसमें जो चीज़ें आपको स्किप करनी, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चों के लिए बना रही हैं और काली मिर्च है, या फिर आपका जो हरा मिर्च है, अगर वो आप स्किप करना चाहती हैं तो बेशक स्किप कर सकती हैं, उसके बगैर भी बहुत टेस्टी लगता है, यकीन मानिए। ऑल राइट, तो ये तो वो बातें हो गई जो हमने आपसे की रिलेटेड टू कि भाई मॉनसून के सीज़न में हम कैसे कपड़ों का चयन करें, और ताकि हमारा जो स्टाइल है उसके साथ हमें कतई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अल्टीमेटली मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि देखिए भाई, आप कपड़े चाहे किसी भी तरीके के पहनिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको उसमें रिलैक्स्ड महसूस करना बहुत ज़रूरी है। एक तो कंफर्ट, कपड़े कंफर्टेबल है, फॉर एग्जांपल ढीले ढीले आपने कपड़े पहन लिए, लेकिन अगर आप उसमें रिलैक्स महसूस

नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्पस है वो मीट नहीं कर पाएगा। तो कॉन्फिडेंटली आप कपड़ों का चयन करिए, कलर्स का चयन करिए, प्रिंट्स का चयन करिए, डिज़ाइंस का चयन करिए, और उसके बाद देखिए आप कितनी खूबसूरत लगती हैं।

ऑलराइट, 12:56 का वक्त हो गया, इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करने का टाइम आ गया। एक छोटे से म्यूजिकल और न्यूज ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो।

104.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम अनुरोध गीत का। तो चलिए सुनते हैं अनुरोध गीत।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। कार्यक्रम का जो पहला गाना है वो है क्या सुपर कूल है हम फिल्म से सोनू निगम की आवाज में। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। लक्ष्मणपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखी लाल मौर्य, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा रानी, अमित कुमार राय हैप्पी राय और दुबिहा निवादक गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है क्या सुपर कूल है हम।

FM पर, और अब आप सुनेंगे वांटेड फिल्म का ये गाना शान और श्रेया घोषाल की आवाज में। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं, ये है लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम साहू, मुकेश कुमार साहू। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, संदीप, जगमोहन, किरण, सुनीता शर्मा, सरोजो कमरावती महाराष्ट्र से हैं, कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगा मायशा और शुएब खान, मुस्तबा खान, राउत भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग का कोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, विवल वर्मा मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बिसलपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। और अब सुनेंगे आप सभी की पसंद का ये गाना श्रेया घोषाल, शान की आवाज, फिल्म का नाम वांटेड।

समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। और अब आप सुनेंगे ये गाना, फिल्म का नाम जोधा अकबर, जावेद अली की आवाज। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत कौशिक की, दीपाली युवान और आर के राजा। साथ ही ये हैं महाराष्ट्र जालना से विजय पाटिल, राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार। सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल जैवी, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। कृष्ण पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना। साथ ही ये हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह। तो आप सभी की पसंद का आपके अनुरोध पर ये गाना जावेद अली की आवाज में, फिल्म का नाम जोधा अकबर से।

अब जो अगला गाना है वो है लता मंगेशकर सोनू निगम की आवाज वीर जारा फिल्म से, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ये है हमारे श्रोता जो कि राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नववाडे, ज्योति आकांक्षा और आकाश, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से ही है, पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धनधरा, फरसराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भागर, बाबू गौरी और हसन सिक्का, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूना राम और कृष्णा देवांगन भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहोजा, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश, जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार और नरगिस खातून, ग्राम लसूडिया जिला तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, लता मंगेशकर सोनू निगम की आवाज, फिल्म का नाम वीर जारा।

और अब आप सुनेंगे फिल्म यस बॉस से गाना, जिसमें आवाज है अभिजीत की। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। राम शंकरपुर पोस्ट उसामा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र आनंद, सनोज अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, सुनीता, अनीता और सूरज श्री यादव इस गाने को सुनना चाहते हैं। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिला नादेड़ गीताला, महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश, शुभम, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी, तृप्ति जायसवाल भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव, उमेंद्रपुरी, कल्लू मिस्त्री, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, सादुल श्वेर राजस्थान से राम कुमार रिवार और चंद्रकला, ये हमारे श्रोता जो कि मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। और अब आप सभी की पसंद का ये गाना जो कि है फिल्म यस बॉस से अभिजीत की आवाज में।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। और बारी अगले गाने की, जो कि है फिल्म ये वादा रहा से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। शाजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता, और ये है गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार। ज्योतिनगर नुखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसाराम, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भागर, बाबू गौरी और हसन सिक्का। बीचना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनुस और सोफिया खान भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। रामपुर लिसनर्स क्लब नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमाल, उद्दीन सादिया अक्सा और हम्माद। और आप सभी के अनुरोध का नाम ये वादा रहा किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और कार्यक्रम का नाम है अनुरोध गीत और बारी है अगले गाने की। तो वो गाना हम आपको सुनाएंगे, फिल्म का नाम आराधना, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में।

इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं, उमरी नादेड़ महाराष्ट्र से बालू आपा घटबोले और ज्योति घटबोले, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित और तानिया, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू जीवनलाल निम्मी शिवम सतीश मुकेश और इनके परिवार के सदस्य, मुल्ढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर शशिकला सुमेध कुमार दामोदर और साधना भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी और ज्योति, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत और इनके परिवार के सभी सदस्य, संबल पुर कांकेर से फगुराम यादव ज्योति और ओजस्वी, साथ ही मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी सहनबाज अब्बासी नवेद सुहेल अनम रसीद वारसी यशप अब्बासी ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम सबीर राही और मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश और जीविका पुनावले पुणे से अजय सोनवने करिश्मा अविका और विशाखा मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपान ताइडे विजया जयगांव विदर्भ से वसंतरा भोजने सुनंदा भोजने सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले नवदीप विश्वदीप और नीलेश इस गाने को सुनना चाहते हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश चंदन और अंकुश और ये हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम आराधना, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में।

और इसी के साथ आराधना का इस गाने के साथ जो आवाज़ है किशोर कुमार की, के कार्यक्रम यहीं तक और आगे के कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे सहयोगी देवेंद्र रावत के साथ। और मुझे दीजिए इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत, हमारी साथी नीतू त्रिपाठी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर इसको आप सुन सकते हैं वेव OTT पे भी। लीजिए प्रस्तुत है रसरंग। रसरंग में पहली प्रस्तुति है कैसर आजाद बदायूनी के स्वर में, ये कव्वाली।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पे होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 15 जुलाई 2026 को सायंक 7:31 पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, महिलाओं में बच्चेदानी की रसौली, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 14 जुलाई 2026 को सायंक 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581-2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्या सिन्हा उपस्थित रहेंगी। विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है महिलाओं में बच्चे दानी की रसौली, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 14 जुलाई 2026 को सायं 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581-2517200। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 0581-2517200। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है अंशुना सक्सेना के स्वर में ये लोकगीत।

0: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
1: रसरंग में अगली प्रस्तुति है चंदन दास के

रस रंग। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म से है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, रजिंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं जेलर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: ये है नौनिहाल फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना दस्तक फिल्म से मदन मोहन की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: ಹೇಳಿ.
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: नम्रा
2: नमस्कार।
1: कैसी हो चंचल?
2: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: तो उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
1: हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल जो डिजिटल का समय है उसमें यही हो गया है कि हमें इंतजार रहता है अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों के मैसेजेस का, और हम इंतजार करते रहते हैं।
2: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
1: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
2: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की सुध भी नहीं लेते हैं, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं, और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है।
1: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें हम अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल।
2: हाँ।
1: और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इतने हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हम

0: हमारे ही कुछ लोग उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं
1: बिल्कुल
0: कोने
1: सही
0: में।
1: बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हजार की, जिन्हें हम जानते भी नहीं, शायद हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते,
0: हाँ
1: उनको लेके अगर हम इतरा रहे हैं, और घर के जब हम चार सदस्य बैठे हैं, पता लगा चारों लोग अपने ही मोबाइल में
0: गुम
1: किसी ना
0: है
1: किसी से संपर्क में लगे
0: बातों
1: हैं,
0: में लगे हुए
1: और
0: हैं।
1: वहां आप ही संपर्क नहीं है,
0: हाँ
1: जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल कटा हुआ है।
0: बिल्कुल, वो हमारे अपने ही हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या अन्य कोई रिश्तेदार जिन्हें हमसे बात करने की इच्छा होती हो और चाहते हो कि हम उनसे घुल मिलकर बात करें, लेकिन वो अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं।
1: तो हमारे साथी इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो जरूर हमें भेजें, क्योंकि ये चीज रिश्तों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है।
0: बिल्कुल
1: और बात सेहत की हुई है, तो हमारे शरीर की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा खान पान।
0: हाँ, और सेहतमंद, वो भी सेहतमंद खाना होना। खाने को तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं,
1: जी
0: कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना चरना, जिसे हम कहते हैं
1: हाँ।
0: चरते रहते हैं ना, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन हम क्या सेहतमंद खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को वो लग रहा है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है वो भोजन, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें में आज सेहतमंद भोजन को लेकर हम कुछ बात करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है, एक उद्यमी महिला यानी कि बिजनेस में जिसने अपना नाम कमाया है, कुछ करके दिखाया है, एक ऐसी महिला की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे उपासना टाकू के बारे में।
0: बिल्कुल, और एक और सेगमेंट है हमारा बहुत ही प्यारा
1: जी
0: जहां हम
1: यानी,
0: अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं और यूं
1: और
0: कहें कि उनका इंतजार होता है हमें।
1: एक छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा।
0: मुंह में राम बगल में छुरी
1: तो बिल्कुल हमारे श्रोता समझ गए कि ये है आज का मुहावरा, लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें और पहला गीत सुन ले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो।
1: तो
0: मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हम हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
1: और ये मोबाइल जो है, ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। तो उस दुनिया के संपर्क में तो है, लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, बस उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
1: तो टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं, उतना ही अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कटते भी जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं, और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना, उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसा आपने पहले ही बताया। तो डिजिटल होती है जो दुनिया है, इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। जब पहले जब हमें, अगर हम दूर दराज की बातें करें, अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना होता था, तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे या फिर फोन पर बात किया करते थे, या एसटीडी पर जाकर हम जो है वहाँ पर बात किया करते
1: घंटों लंबी लाइन में लगा करते
0: है ना, लगे रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अब ये काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है, और मिलकर बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तो परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
1: और मंदाकिनी जी, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नजरें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं, जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहां भी नजरें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
0: अपना मोबाइल चेक करते हैं, किसी का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल इतना चुप चुप क्यों है ना, ऐसा लगता है।
1: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए, ऐसा लगने लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते हैं ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते तो लगता अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए।
1: बिल्कुल,
0: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई, है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कांटेक्ट, जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के, लेकिन हमारी सबकी नजरें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
1: बिल्कुल, शारीरिक रूप से हम वहाँ मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं।
0: और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में, लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो, बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
1: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर एक गीत सुन ले।
0: चलिए

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
6: हाँ, लेकिन चंचल हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
5: अच्छा?
6: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
5: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट किए हैं, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
6: जी, ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं। हाँ। जो उन्होंने एक काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
5: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे जेवो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है। इसका मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आधुनिक जीवन

0: का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी हैं, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का दुख भी है कि घर में पास बैठे हुए आमने सामने बातचीत का चरण कम होता जा रहा है, जिससे वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ गई है।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में तकनीक ने दूरियों को मिटाकर हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने रिश्तों की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक जहाँ ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहाँ ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है। जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहाँ। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज, और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है।
1: और सही लिखी है ना, वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट है।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
0: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा भी आपने कहा, हम सब बैठ कर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है, इस पर हमें बाकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है,
0: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
1: हाँ बिल्कुल, वो ध्यान तो चला गया है, सुन भी लिया जाए गीत।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था, और इस गीत में सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की सह संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक, तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है, और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल ऐप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे ऐप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज ऐप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल। और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी, और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी, फिर 2011 में उनकी शादी हो

0: गई 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया, जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियां अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी, कीलाक्षर यानी कील से

0: लिखे हुए अक्षर
1: जी।
0: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है, लेकिन विमलेश जी एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी?
1: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
0: श्रोताओं जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
1: जी,
0: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पटिया हो, तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी,
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियाँ, कहानियाँ और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोताओं आपको बता दें कि किलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने किलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये किलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: आह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी,

0: आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: जी मैम।
0: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम,
1: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम। यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?

0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनो
1: दादी माँ, सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ, सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई, एक हिरन, एक हिरन भाई, एक हिरन, एक हिरन भाई, एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई, एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ, एक हिरन।
2: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन। लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन।
1: दादी माँ, दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
2: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी

0: साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
0: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
2: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
2: नमस्कार। उमंग।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।

0: आइए सुनते हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज का विषय है अधजल गगरी छलकत जाए। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आपने ट्यून किया है 100.4 FM पर आकाशवाणी का बरेली केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज का विषय है अधजल गगरी छलकत जाए। तो देखते हैं इस विषय पे हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ पहली कॉल पे जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें जमाने की, तू खुद को बना इस कदर कि तमन्ना रखे तुझे पाने की।
0: क्या कह दिया साहब, बहुत बेहतरीन। और हम चाहेंगे कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना रखे, है ना?
1: बिल्कुल सर। मैं ग्राम पोस्ट वक्तीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ। देवेंद्र जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी प्यार भरा नमस्कार। बड़े दिनों बाद विमल भाई आपके साथ बातचीत हो रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो
1: जी सर, काफी अंतराल के बाद आज आपसे बात करने का ये सुनहरा सा मौका मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तमाम कार्यक्रम आपकी आवाज में सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी आवाज में वो जादू है जो कि दूर दूर के श्रोता खींचे चले आती है।
0: अरे प्रभु, कैसी बात कर दी। हमारे यहाँ सभी की आवाजों में जादू है, और सभी अपनी ओर से अच्छी प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं ताकि वो आप लोगों तक कार्यक्रम पहुंचे और आपको पसंद आए, है ना?
1: जी सर।
0: तो विमल भाई, आज हमारा विषय है वो है अधजल गगरी छल कर जाए। इस विषय पे आपके क्या विचार हैं?
1: जी सर, अधूरा ज्ञान है जो अगर हम कभी भी लेंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई नुकसान होता है। तो हमें जब भी कोई अगर ज्ञान कहीं से प्राप्त होता है या कोई और अन्य बात हमें सुनने को मिलती है, कोई भी काम करें, हमें पूरा लेना चाहिए, जो कि हम किसी को अन्य को अगर वो समझा सके तो उसके बारे में पूरा कंटिन्यू समझा सके।
0: बिल्कुल सही बात। ज्ञान वैसे तो हम 7 जन्म भी ले लेंगे तब भी इतना ज्ञान है संसार में कि उसको पूरा नहीं पा सकते, लेकिन जिस विषय पे भी हम बोलने जाएं या बोलें तो उस विषय का प्रॉपर वे में आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना? क्योंकि आजकल है क्या कि लोगों को नॉलेज भी नहीं होती है और बहस करने बैठ जाते हैं, है ना? तो ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो विमल जी, आपने अपने विचार दिए और हम चाहेंगे कि आप कौन सा गीत सुनेंगे।
1: जी सर बिल्कुल, आपकी आवाज में और आपके जितने भी सुनने वाले श्रोता सभी के लिए गाना सुनना चाहते हैं, घटा छा रही है, ये सॉन्ग सुनवा दीजिए, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है सर।
0: तो सुनते हैं विमल भाई ये गीत फिल्म वारिस से, आप और हम और सारे श्रोता।

0: हेलो।
1: हाँ सर,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं साहब?
1: वंदे मातरम। प्रिय भाई देवेंद्र रावत साहब का हमारा वंदे मातरम। यस
0: वंदे मातरम। रामचंद्र मखीजा जी शायद आप बोल रहे हैं।
1: सर, आप तो पहचान गए सर। शुक्रिया, धन्यवाद।
0: आपके वंदे मातरम कहने के लहजे से ही पता लग जाता है कि ये मखीजा साहब
1: यस
0: बोल
1: सर
0: रहे हैं। तो मखीजा साहब, कैसा मौसम हो रहा है छत्तीसगढ़ में आपका?
1: छत्तीसगढ़ में मौसम सर ऐसा है कि बीच में बरसात पानी था तो ठंडक का थी, एसी कूलर बंद हो गए थे।
0: जी।
1: और फिर कल परसों से ऐसा है कि धूप निकलता है, फिर गर्मी टाइप का हो गया माहौल। रात को पंखा वगैरह चलाना पड़ता है।
0: हाँ, सेम बरेली का भी ऐसे ही मौसम हो रखा है। अभी 2-4 दिन पहले तो ठंड लगने लगी थी, इस प्रकार का मौसम हो रखा था। चलिए, ये तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है मौसम का, है ना?
1: जी
0: तो
1: सर।
0: रामचंद्र मखीजा साहब, आज जो विषय हमारा वो है अधजल गगरी छल कच्चाए।
1: हाँ,
0: तो इस
1: तो
0: विषय
1: ये
0: पे
1: विषय सर बहुत प्राचीन और आज के तारीख में जीवित है,
0: जी
1: क्योंकि आधे जल गगरी छलका जाए का मतलब है अधूरा ज्ञान।
0: जी
1: कोई भी चीज हो, चाहे संगीत हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो,
0: जी
1: अधूरे ज्ञान में क्या है, थोड़ा प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप को डींग मारते हैं कि भाई मैं बहुत सीख गया हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ।
0: हाँ, लोग
1: ये एक
0: इतराने लगते
1: प्रकार
0: हैं।
1: दिखावा दिखावा है एक प्रकार का,
0: जी
1: और अधूरा ज्ञान कह सकते हैं। और डींग मारना यानी कम ज्ञान ज्यादा बताना, और कई लोगों के पास ज्यादा ज्ञान रहता है तो और ज्यादा और स्मार्टगिरी दिखा देते हैं, तो ऐसा लगता है यार इससे क्या बात करें।
0: वैसे हमेशा क्या होता है ना मखीजा साहब, एक कहावत है, मैं अक्सर यूज भी करता हूँ उसे, कि जो फल

0: दार पेड़ होगा
1: जी
0: वो ही झुका होगा, है ना,
1: झुका होगा, विनम्र रहेगा
0: और
1: जी सर।
0: विनम्र होगा, सादगी पसंद होगा, और जिसमें फल ही नहीं होंगे या वो
1: हाँ
0: हमेशा तनाव मिलेगा आपको।
1: तना रहेगा, हाँ बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा आपने।
0: झुक के जो सीखा जाता है और एक दूसरे का आदर सम्मान करने की भावना होनी चाहिए, है ना, तो
1: जी
0: कभी
1: जी
0: अपने ज्ञान पे इतराना नहीं चाहिए, है ना, समय
1: जी
0: कब
1: जी
0: किस करवट बदल जाए। बहुत अच्छी बात आपने कही। और आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: और आजकल तो सब इतराने पर ही चले हैं, घमंड में, हर चीज में, हर क्षेत्र में, यानी दिखावा ज्यादा हो गया है सभी, चाहे शादियां पार्टियां हो, चाहे किसी भी चीज में। भाई
0: मत
1: हम उसका भलाई का सदुपयोग कैसे करें, पैसे का नहीं जानते ऐसे टाइप
0: मखीजा
1: का होता है।
0: साहब,
1: हाँ
0: घमंड
1: सर,
0: आदमी को ले डूबता है। रावण से बड़ा उदाहरण क्या है हमारे सामने,
1: यस सर।
0: है ना।
1: हाँ रावण के पास भी तो बहुत ज्ञान था और प्रकांड ज्ञानी था, लेकिन वही अहंकार है, किसी न किसी दिखावे में आकर उसने
0: अपना ही
1: ऐसा
0: नुकसान
1: उसका
0: कर लिया, है ना।
1: घमंड टूट गया।
0: जी,
1: बहुत जरूरी है, और चतुराई नहीं दिखाना चाहिए भाई, सीख गए हैं तो उसमें घमंड भी नहीं आना चाहिए, चतुराई भी नहीं होनी चाहिए,
0: तो
1: ठीक
0: गीत कौन सा
1: रहता
0: सुनेंगे आप, ये बताइए।
1: है। आप सुनाइएगा राव साहब, एक चतुर नार बड़ी होशियार करके, इसको सुना दीजिएगा, पड़ोसन फिल्म
0: पड़ोसन
1: का
0: फिल्म
1: है
0: का है,
1: जी
0: मन्ना
1: बड़ी।
0: डे और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत है, और बड़ी ही अपने समय की चर्चित फिल्म थी। सारे गीत भी अच्छे थे और कॉमेडी बहुत अच्छी थी, है
1: यस
0: ना।
1: सर,
0: तो
1: यस
0: साफ
1: सर,
0: सुथरी कॉमेडी की फिल्म है, और जब भी देखिए हंसी पेट के बल से आती है ना।
1: यस
0: तो
1: सर,
0: सुनते हैं ये गीत, आप और हम और सारे श्रोता।
2: अयो धम, अरे धम धम धम रोक।

0: ಚತುರ ಏಕ ಪೇರ ಯಾ ಗೋಡಾ ಬೋಲ ಯಾ ಚತುರ ಬೋಲ
1: ಎಕ ಚತುರ ನಾರ ಕರ್ಕೆ ಸಿಂಗಾರ
2: ಎಕ ಚತುರ ನಾರ ಬಡಿ ಹೋಶಿಯಾರ
1: ಮೇರೆ ಮನ ಕೆ ದ್ವಾರ ಯೇ ಭುತತ ಜಾತ
2: ಅಪನೇ ಹಿ ಜಾಲ ಮೇ ಫಸತ ಜಾತ
1: ಹಮ ಮರತ ಜಾತ ಅರೆ ಅಯ ಅಯ ಅಯ ಅಯ ಅಯ
2: ಚತುರ ನಾರ ಬಡಿ ಹೋಶಿಯಾರ
1: ಕರ್ಕೆ ಸಿಂಗಾರ
2: ಅಪನೇ ಹಿ ಜಾಲ
1: ಮೇರೆ ಮನ ಕೆ ದ್ವಾರ
2: ಫಸತ ಜಾತ
1: ಯೇ ಭುತತ ಜಾತ
2: ಹಮ ಹಸತ ಜಾತ.
3: हेलो
4: हेलो सर नमस्कार.
3: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
4: सर? मैं ग्राम एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से लईक अहमद मंसूरी बात कर रहा हूं सर.
3: लईक अहमद मंसूरी जी मिलक रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शायद आपके साथ मेरी पहली बार बात हो रही है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.
4: पहली बार बहुत सर, बहुत खुशी हो रही है सर मुझे आज.
3: चलिए कोई नहीं, आपने प्रयास करा, आपके प्रयास सफल हुए, आपको अच्छा महसूस हो गई है ना?
4: जी सर.
3: तो मंसूरी साहब कब से सुन रहे हैं हमारा बरेली?
4: सर प्रोग्राम तो आपका सर बहुत काफी टाइम सुन रहे हैं, सर हमारा नंबर नहीं लगता सर. हमारे भाई लगाते रहते हैं सर, बड़े भाई, मगर हमारा नंबर कम लगता है.
3: कोई बात नहीं, आप रोजाना 2:30 बजे रिकॉर्डिंग होती है ना, आप समय से अपना फोन लगाना चालू कर दें तो क्यों नहीं लगेगा, है ना?
4: जी सर, आज बहुत खुशी हो रही है सर, आज आपका नंबर लगा सर.
3: चलिए, हमें भी खुशी हो रही है. मंसूरी साहब क्या करते हैं साहब आप?
4: सर मैं सिलाई काम करता हूँ सर.
3: अच्छा, कपड़े सिलते हैं? लेडीज जेंट्स?
4: जी, लेडीज जेंट्स सारे कपड़े सिलते हैं सर.
3: चलिए, बहुत अच्छा हुनर है आपके पास.
4: आप आइए सर घूमने कभी.
3: चलिए, कभी मौका लगे.
4: आपने
3: इतना कह दिया, यही काफी है ना? तो लाइक भाई, आज जो विषय है हमारा वो है अजल गगरी छलकत जाए.
4: जी सर.
3: इस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे?
4: सर इस विषय पे यही बोलना चाहता हूँ सर, मैं ऐसे जैसे कुछ लोग होते हैं मतलब बिगर ज्ञान की बात करते हैं, तो आदमी के लिए जो है ज्ञान से ही बात करना चाहिए और उतनी बात करना चाहिए आदमी के लिए कि जितना आदमी अच्छी लगा.
3: बिल्कुल
4: सही बात. तुम इधर उधर की बात करो, आदमी से लड़ाई झगड़े वाली बात करो, बोलोगे तो आदमी अच्छा ही बोलेगा आपसे.
3: बिल्कुल सही बात. जैसा आप दूसरे को व्यवहार करेंगे वैसे ही आपके साथ होगा.
4: जो हाँ, जो किसी से सही व्यवहार नहीं करोगे तो वो भी आपसे गलत व्यवहार करेगा.
3: हमेशा किसी के साथ जो व्यवहार करो वो वैसे ही करो कि जो अपने ऊपर गुजार सको, है ना?
4: जो ऐसे बोल बोलो सर जो किसी को कड़वा नहीं लगे, अच्छे बोल बोलो.
3: बिल्कुल सही बात. और इस कहावत का भी अर्थ यही है कि जो कम ज्ञानी लोग होते हैं ना, आजकल आपने देखा होगा वो लोग ज्यादा शेखी बघेरते हैं.
4: हाँ, हाँ,
3: कि भाई मेरे को ये आता, मेरे को वो आता, और जब करने बैठते हैं तो कुछ नहीं आता.
4: हाँ, जिससे कुछ आता नहीं सर, तो कोई ऐसी बातें करते हैं सर कि हमसे ये आता, हमसे वो आता है.
3: हाँ, और जो ज्ञानी लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है वो शांत धीर गंभीर होते हैं, वक्त आने पर अपना हुनर दिखाते हैं, है ना?
4: जी सर, जी सर. वो सर अपनी शांत से बात करते हैं, जो भी बात होगी सर वो शांति के साथ बात करेंगे और अपना मतलब कोई भी अल्फाज गलत नहीं निकालेंगे.
3: जी जी जी. तो मंसूरी साहब, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
4: सर हातिम ताई का कोई भी गीत सुना दीजिए सर आप.
3: तो सुनते हैं हातिम ताई फिल्म से ये गीत, आप और हम सारे श्रोता.

0: हेलो।
1: हेलो, आपकी बात आशा शौरी के साथ?
0: हाँ जी साहब, बोल रहे हैं आप, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार, मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद करेली से बोल रहा हूँ।
0: लाल मोहम्मद जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है सर, आप बताएं आप कैसे हैं?
0: बस आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। तो लाल मोहम्मद जी, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आजकल आपको?
1: कार्यक्रम सर आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं, और बहुत खास तौर पर ये कार्यक्रम जो उस समय चल रहा है ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तरह से ये कार्यक्रम आकाशवाणी की शान और आकाशवाणी की जान बन गया है। क्योंकि इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि एक विषय के जरिए से हमें जानकारी भी मिल जाती है और गीत भी सुनने को मिलता है।
0: हाँ, और तरह तरह के लोगों के विचार भी सुनने को मिल जाते हैं इस विषय पे, है ना?
1: दूर दूर से लोग फोन करते हैं, तो उधर का मौसम, उधर के हालचाल और तमाम चीजें इस कार्यक्रम में एक ही साथ मिल जाती है। तो ये अच्छा कार्यक्रम है और मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: हमें भी अच्छा लगा कि आपको पसंद आ रहा कार्यक्रम। लाल मोहम्मद जी, आज जो विषय है वो ये है कि अधजल गगरी छल कच्चा है, क्या कहेंगे?
1: जी, इस विषय में बस यही कहना चाहिए।

मैं कहना चाहिए अभियान गदरी जी होती है, गदरी साहब घड़े के लिए बोलते हैं, अगर आधे घड़े में पानी है और उसको कहीं ले जाए यहाँ तो वो ज्यादा छलकता है, और अगर पूरा भरा हुआ होता है तो वो उसके छलकने के कम चांस रहते हैं। यूं ही कहा जाता है जिस तरीके से समुंदर है, समुंदर जितनी गहराई है उतना शांत है, और जहाँ जहाँ छोटे छोटे तालाब तलिए हैं उनमें ज्यादा इसको ले लिए जाते हैं। इसी तरीके से मनुष्य का भी हिसाब है सर, क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर कोई ज्ञान या

0: हर मनुष्य के अंदर कोई ज्ञान या कोई काबिलियत होती है, जिसके अंदर ज्यादा काबिलियत होगी वो उतना ही शांत होगा और उतना ही अपने आप को साइलेंट रखेगा, और जितना कम ज्ञान होगा कम अनुभव होगा वो ज्यादा लोग छलकते हैं और ज्यादा अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इसका यही तात्पर्य होता है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। और आजकल के जमाने में ये अधजल गगरी वाले लोग ज्यादा है
0: क्योंकि मतलब जैसे किसी को अगर छोटा सा पद मिल गया तो वो ये समझता है कि मैं बहुत बड़े पद का मालिक हूँ और उसकी पूरी मदद कहना चाहिए राहत जताना या उसका मतलब दुरुपयोग करना, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। और जो वास्तव में इस लायक होता है तो बहुत शांत होता है, बहुत किसी के अगर बड़े अधिकारी के पास जाएंगे हम लोग तो बहुत प्यार से बहुत शांति से बहुत मोहब्बत से बात करेंगे और आपकी पूरी बात को सुनी भी जाती है। लेकिन वहीं पे अगर छोटे अधिकारी होते हैं तो वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम ही बड़े अधिकारी हैं और सब कुछ हम ही बताइए क्या बात है क्या काम है, तो ये सारी चीजें होती है इस विषय में।
1: तो देखिए अपना मनुष्य का स्वभाव है और आपने सही कहा कि अल्प ज्ञान जो होता है और घमंड नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई चीज भी स्थायी नहीं है, है ना, परिवर्तन सृष्टि का नियम है।
0: उतने अधिकार हमें जताना चाहिए सर।
1: आज आप इस कुर्सी पे हैं, कल दूसरा होगा फिर तीसरा होगा, है ना, तो परिवर्तन होता रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जहाँ भी रहें जहाँ भी काम करें अपनी अच्छी छाप छोड़ के जाएं, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कहना कहा जाता है कि अपने किरदार में हो रंग बहारों की तरह, लोग चाहेंगे तुम्हें चाहने वालों की तरह, अपना किरदार अपना अखलाक अपना रवैया ठीक है तो आपको बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत से पढ़ा जाएगा, हर तरीके का आपको सम्मान मिलेगा।
1: बिल्कुल सही बात, आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करेंगे आपके कर्मों की वजह से, है ना।
0: जी सर।
1: तो लाल मोहम्मद जी बहुत अच्छी बात आपने करी और बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगा कि आप कौन सा गीत सुनेंगे वो भी बता दीजिए।
0: गाना सुना दीजिए हीरो फिल्म का।
1: तो ठीक है, सुनते हैं हीरो फिल्म से ये गीत। जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सेठाद्री की फिल्म थी और सुभाष घई जी ने इसका निर्माण किया था और गीत एक से बेहतरीन थे। तो सुनते हैं ये गीत, हम और आप।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं
1: हम घर पप्पू बोल रहे हैं लीनिया से। ये
0: जी? कहाँ पड़ता है साहब?
1: फरीदपुर के पास पड़ता
0: अच्छा, फरीदपुर के पास से पप्पू जी बोल रहे हैं। पप्पू भाई, आज जो विषय है वो ये है कि अधजल गगरी छलकत जाए, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: है। हम यही कहना चाहेंगे कि दूसरों को मिलो तो उन्हें अच्छी तरीके से बैठाएं और अपना ज्यादा ज्ञान नहीं दिखाएं किसी को।
0: होता क्या है ना, देखिए, जो कम ज्ञानी लोग होते हैं, जिनको नॉलेज कम होती है, वो लोगों को जताते बहुत हैं कि मतलब कि
1: वो जताते
0: मैं ही
1: बहुत
0: जानता हूं, मैं
1: कम
0: जानता
1: ज्ञानी
0: हूं।
1: लोग होते हैं,
0: हाँ, और जो ज्ञानी होगा वो बिल्कुल शांत होगा।
1: वो नहीं जताएगा।
0: हाँ, तो अच्छी बात कही आपने पप्पू भाई। तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: वो हिसाब जी सुना लेना
0: ठीक है पप्पू भाई, सुनते हैं ये गीत, आप और हम और
1: जी।
0: सारे श्रोता।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई बात कर रहा हूँ आपसे। बस
0: गरीब भाई, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है साहब।
0: तो बढ़िया ही रहना चाहिए। हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारे सारे श्रोता बढ़िया रहें, है ना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और रेडियो सुनते रहें। तो गरीब भाई, आज जो विषय है, अधजल गगरी छल कच्चाए, इस विषय पे आप अपने विचार दीजिए।
1: विषय पे यही कहना चाहूंगा, जो अज्ञानी लोग होते हैं वो सोचते नहीं, समझते नहीं और बोल देते हैं कुछ भी। उनको
0: जी जी
1: ये ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तोलो फिर बोलो। जो समझदार व्यक्ति होगा वो पहले तोलेगा बात को फिर बोलेगा।
0: हाँ, जिसको नॉलेज होगी वो शांत और गंभीर होगा और बेमतलब में अपना ज्ञान नहीं प्रदर्शित करेगा, और जिसको नॉलेज ही नहीं होगी वो अपना हर जगह अपना ज्ञान दिखाते रहेगा, अपने आप को जताते रहेगा। तो गरीब भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज मुझे आज अपनी पसंद का गाना सुनवा दो, क्योंकि आप तो गीत बहुत चुनिंदा गाने बजाते हैं भैया। आपकी चॉइस हमारी चॉइस बन जाएगी।
0: चलिए, अच्छी बात है। तो सुनते हैं ये गीत, आप और हम और सारे श्रोता।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ देवेंद्र रावत के साथ। ये हमें एपी पे कमेंट भेजा है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विश्व मिस्किन गीतिका मिस्किन अनि आरव चंद कला गणेश काशीनाथ संगीता मिस्किन आरोही और प्रियांशी सोनी ने। आप कहते हैं कि अजल गगरी चलकर जाए, एक प्रसिद्ध कहावत है। इसका अर्थ है जिस व्यक्ति के पास कम ज्ञान होता है वही उसका सबसे अधिक दिखावा करता है। इसके विपरीत जो वास्तव में ज्ञानवान और अनुभवी होता है वो विनम्र और शांत रहता है। अधूरा ज्ञान

अक्सर भ्रम और अनावश्यक आत्मविश्वास पैदा करता है। कम जानकारी वाला व्यक्ति स्वयं को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। सच्चा ज्ञानी अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि अपने व्यवहार और कार्यों से उसे सिद्ध करता है। सफलता और सम्मान पाने के लिए विनम्रता, निरंतर सीखने की इच्छा और अच्छे आचरण को अपनाना चाहिए। ज्ञान का वास्तविक आभूषण विनम्रता है। जितनी गहराई होगी, उतना ही व्यक्तित्व शांत, संतुलित और प्रभावशाली होगा। साधु शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ लिखते हैं, कहावत बिल्कुल सत्य है, लेकिन आज के दौर में परफेक्ट कोई नहीं है, सभी अधूरे हैं। हाँ, मेरे जैसे लोग अपने आप को परफेक्ट मानते होंगे, लेकिन है नहीं। जिन श्रोताओं ने ऊपर प्रतिक्रिया लिखी है, वही विचार हमारे लिए हैं, इसलिए विचारों को रिपीट नहीं करूंगा। कटाचांद खां मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल जी लिखते हैं, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और जिसको आधा ज्ञान होता है वो हमेशा अपने आप को दिमाग वाला समझता है। ग्राम डहरपुर, तहसील दातागंज, जिला बदायूं से मुजम्मिल हुसैन कहते हैं, ये कहावत आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठती है। अधूरा ज्ञान दिखावे और अहंकार को जन्म देता है, जबकि गहरा ज्ञान इंसान को विनम्र बनाता है। हमारे पुराने श्रोता खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा जी कहते हैं कि आधा ज्ञान है या पूरा ज्ञान, इस विषय पर तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, आज के जमाने में तो पैसे वाला ही ज्ञानी है, सभी लोग उसी की बातें सुनते हैं, उसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। जिस विषय पर बोल रहा हूं, सभी लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं। वो जो बोल रहा है उस विषय पर उसको जानकारी है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो बाबा लोग भी पैसे वाले हो गए हैं, महंगी महंगी गाड़ी में बैठकर उपदेश देने कथा करने जाते हैं, कई कई लाख कथा करने के लेते हैं। यही बाबा भी पूरे ज्ञानी लोग हैं, और लोग इनकी कथा बड़े प्यार से सुनते हैं।

रसिया खानपुर जिला पीलीभीत से अफजल खान लिखते हैं, जिस व्यक्ति के पास कम ज्ञान या कम योग्यता होती है वो अक्सर अपनी थोड़ी सी जानकारी का बहुत दिखावा करता है, जबकि वास्तव में ज्ञानी और योग्य व्यक्ति विनम्र रहता और अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं करता। यदि किसी छात्र को किसी विषय में थोड़ा सा ज्ञान है तो वह हर समय अपनी तारीफ करता रहता है, तो उसके लिए कहा जा सकता है अध जल गगरी छल कर जाए। ग्राम गोपी खिरिया तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, हरिओम पाल, हरिमोहन पाल, अंजना पाल, ज्योति बघेल, लक्ष्य बघेल और बबलू दाऊ लिखते हैं, हमेशा की तरह आज का विषय भी बहुत अच्छा चुना गया है। इसके बारे में हमारे विचार कुछ इस तरह हैं। अजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है कम ज्ञान गुण या योग्यता रखने वाला व्यक्ति हमेशा अधिक दिखावा करता है तथा बढ़ चढ़ कर बोलता है और अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। इसके विपरीत ज्ञानी और समझदार व्यक्ति हमेशा शांत और गंभीर रहते हैं। जिस प्रकार आधे भरे हुए घड़े में पानी के छलकने की आवाज आती है, इसी प्रकार अधूरा ज्ञान रखने वाले लोग दूसरों के सामने अपने को ज्ञानी होने का ढोंग रचते हैं। तिलकपट्टी दुधी कुशीनगर से पारसनाथ कुशवाहा लिखते हैं कि आधी अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो पूरी जानकारी लेकर काम करना चाहिए। प्रवीण चौहान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं वे समझदार और शांत स्वभाव के होते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं उन्हें अपने थोड़े से ज्ञान पर बहुत अधिक अभिमान होता है। अधूरी जानकारी होने से वे अपना और दूसरों का नुकसान करते हैं। रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, माधुरी मिश्रा, सविता देवी, शीतल मिश्रा, सत्यम मिश्रा, राधा मिश्रा, सलोनी मिश्रा कहते हैं कि आप हैं ग्राम व पोस्ट खंडुआ से। जी ये बिल्कुल सत्य है, जिसको ज्ञान कम है वो दिखावा ज्यादा करता है। वही आदमी दूसरे आदमी को ज्ञान दे वो क्या ज्ञान दे सकता है। जो वास्तव में ज्ञानी पुरुष हैं वो हमेशा धैर्य रखते हैं, किसी से कोई तर्क नहीं करते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वही आजकल ज्यादा ज्ञानवान बनते हैं।

इसी गीत के साथ आज का आपकी बात आकाशवाणी के साथ संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त देवेंद्र रावत को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय था अधजल गगरी छलकत जाए। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। संध्या के 5 बजे हैं। अब समय हो चला है हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। रात 9 बजे आप सुनेगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 8 बजे और 10 बजे आप सुनेंगे विभिन्न कार्यक्रमों को लखनऊ केंद्र से। अब से थोड़ी देर में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या में कुछ भजन। नारी संसार सुनेंगे आप शिप्रा श्रीवास्तव के साथ। इसमें चर्चा सुनेंगे, विषय रहेगा रिश्तों में भरोसा कायम रखें। वर्धा सुनेगा अमिता के साथ, विषय रहेगा डिजिटल युग में महिलाओं की उच्च शिक्षा, चुनौतियां और अवसर। साथ ही होंगे किचन टिप्स और इनसे मिलिए। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की। समय रहेगा 5:30। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम सुनेंगे युवाड़ी नेहा सिंह के साथ शाम 6 बजे। इसमें आप सुनेंगे करियर संबंधी बातें होंगी जूनियर इंजीनियर रति कुमारी के साथ, और साथ ही होगा गीत संगीत। प्रस्तुति रहेगी गौरव सक्सेना जी की। किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम किसानवाड़ी सुनेगा भैया धारा सिंह और भैया डॉक्टर रविंद्र कुमार के साथ। इसमें आज की बात का विषय रहेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हेलो किसान में विषय रहेगा धान की फसल प्रबंधन। आपके उत्तर देंगे डॉक्टर विवेक पांडे। साथ में होंगे लोकगीत, बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, सवाल और नसीहत। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की। समय रहेगा 6:30। ग्राम जगत में चर्चा सुनेंगे स्वच्छ पानी पिए विषय पे। वार्ता सुनेगा रेणु के साथ वृक्ष धरा के आभूषण विषय पे। साथ ही होंगे लोकगीत। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की और समय रहेगा संध्या 7 बजे। रेडियो हेल्पलाइन में सुनेंगे 7:31 पर। इसमें आज का विषय रहेगा प्री टर्म अथवा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर और अन्य मशीनों की भूमिका। विशेषज्ञ रहेंगे वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार। हमारी कल की सभा प्रारंभ होगी प्रातः 5:50 पे। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम सुनेंगे 5:50 पे, 11:30 पे, रात्रि 8 बजे और 10 बजे। समाचार प्रभात सुनेंगे दिल्ली केंद्र से सुबह 8 बजे और प्रादेशिक समाचार सुनेगा लखनऊ केंद्र से 7:18 पे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से सुबह 9 बजे, दोपहर 2:30 पे और रात 9 बजे। यंग बरेली साप्ताहिक कार्यक्रम लेकर होंगे आपके साथ हरीश कुमार सुबह 8:15 पे। लोकगीत का समय रहेगा 8:45। आपकी पसंद 10 बजे, सब रंग 11 बजे और अनुरोध गीत सुनेंगे दोपहर 1 बजे। दोपहर 2 बजे आप रसरंग सुनेंगे अमृता सिंह के साथ। आपकी बात आकाशवाणी के साथ का समय रहेगा 4 बजे। भजन संध्या 5:05 पे। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा दोपहर 3:30। नारी संसार सुनेंगे 5:30 पे भावना कंचन राजादा के साथ। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश।

श्रीवास्तव जी की। युवाणी सुनेगा 6 बजे प्रज्ञा पाठक के साथ, प्रस्तुति रहेगी गौरव सक्सेना जी की। शाम 6:30 पे ग्राम जगत सुनेंगे भैया धारा सिंह और भैया कृष्णवीर के साथ। रेडियो हेल्पलाइन सुनेंगे 7:31 पे।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या। भजन संध्या में पहली प्रस्तुति है हरिओम शरण के स्वर में ये भजन।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम में अगला भजन है अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं महिला श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम नारी संसार। शिप्रा मिश्रक श्रीवास्तव के साथ प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव जी की।

रिश्ते शब्दों से नहीं, विश्वास से जीते जाते हैं। और सच भी यही है कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव अगर कोई है तो वो है भरोसा। तो क्या है आखिर इस भरोसे को हमेशा बनाए रखने का सीक्रेट मंत्र? नमस्कार सखियों श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM पर आकाशवाणी का बरेली केंद्र और सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार आपकी रेडियो सखी शिप्रा श्रीवास्तव के साथ। और सखियों, आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं वही सीक्रेट मंत्र जो हमारे रिश्तों में भरोसे को बनाए रखे। सखियों, साथ ही हमारे इनसे मिले सेक्शन में हम बात करेंगे सखी नीमा नागरथ जी से और विषय रहेगा संस्कारों के साथ बच्चों को कैसे बनाए जेंडर सेंसिटिव। वार्ता सुनेंगे डिजिटल युग में महिलाओं की उच्च शिक्षा, चुनौतियों और अवसर, और हमारी वार्ताकार रहेंगी अमिता जी। साथ ही हम लेकर आए हैं आपकी सेहत को बरकरार और संवारने के लिए हेल्थ टिप्स, थाली को बदले सेहत संवारे। तो सखियों, समझ गई है ना कि फिर हम आज आपको कहीं जाने नहीं देने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के बरेली केंद्र पर 100.4 FM पर। सखियों, अगर हम आजकल की बात करें तो सुविधाएं बढ़ी हैं और साथ ही बढ़ गए हैं संवाद यानी कि बातचीत करने के साधन, लेकिन क्या बात है कि इसके बावजूद आज रिश्तों में वो गर्माहट, वो अपनापन कहीं खो सा गया है। दिलों में दूरियां बढ़ने लगी हैं। परिवार साथ तो रहता है पर साथ समय बिताने का समय नहीं मिलता। मोबाइल पर घंटों बीत जाते हैं लेकिन अपनों के साथ दो घड़ी बैठकर बोल बात करने का समय निकालना मुश्किल लगता है। तो ऐसे में रिश्तों में भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। कोई अपना अपने मन की बात बेझिझक आपसे कह सके और आप किसी के सामने बगैर सोचे अपनी सारी उलझने और खुशियाँ बांट सकें, यही तो है वो भरोसे का एहसास जो हमें रिश्तों से जोड़े रखता है। लेकिन सखियों, इसके साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि भरोसा एक पौधे की तरह होता है जिसे सिर्फ एक बार जीतना नहीं बल्कि रोज़ प्यार, समय और देखभाल की ज़रूरत होती है। भरोसा बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है संवाद। कई बार बगैर पूछे या कारण जाने बगैर किसी के लिए कुछ भी सोच लेना या धारणा बना लेना रिश्तों में गलतफहमी की गांठ डाल देता है। तो अगर कोई बात समझ ना आए या किसी का व्यवहार बदल लगे या फिर कोई बात जो आपके दिल को थोड़ा दुखा जाए तो चुप मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर चुप्पी बहुत घातक साबित होती है। बस आप उससे जाकर पूछ लीजिए कि क्या बात है, क्या कोई नाराज़गी है, और देखिएगा बात कुछ भी नहीं होती और बात इतनी बन जाती है। तो बातचीत नहीं रुकनी चाहिए, नहीं तो बीच के मतभेद कब दरार बन जाए पता भी नहीं चलता। और बात रिश्तों की हो रही है तो सखियों, कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं ना जब सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन फिर बात वहीं आती है कि हमारा एक झूठ भले ही रिश्तों को कुछ समय के लिए बचा रहे लेकिन धीरे धीरे उसकी नींव को खोखला कर देता है। तो अगर एक असहज ही कहेंगे क्योंकि बोलना आसान नहीं था, बोलकर अगर आप विश्वास बनाए रखते हैं, ईमानदार बने रहते हैं, तो सच मानिए रिश्तों में भरोसा बना रहेगा। और जब बात आ रही है कि थोड़े बहुत कहीं हमारे वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, देखिए हम साथ रहें तो ये ज़रूरी तो नहीं कि हमारा जो भी विचारधारा हो, हमारे जो भी ख्यालात हों वो भी समान हो। हर व्यक्ति का अपना एक नज़रिया, अपनी राय और अपने अनुभव होते हैं। तो ना तो अपनी राय किसी पर थोपें, ना ही दूसरे की राय का अपमान करें, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, भरोसा खुद ब खुद बन जाता है। और हम जब बात कर रहे हैं आजकल के समय की, तो आजकल के समय की बात हो और सोशल मीडिया की जिक्र ना आए तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आज इस दौर में सोशल मीडिया के कारण दो चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, पहली तुलना और दूसरा शक। सखियों, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी तस्वीर पूरी कहानी नहीं बताती। तो किसी की भी सोशल मीडिया पोस्ट देखकर अपने रिश्तों की तुलना करना अच्छी बात नहीं, और कुछ भी अनुमान लगाने से पहले बात को सही तरीके से जानना ज़रूरी होता है। इससे गलतफहमियों को जगह नहीं मिलती, मिलता है तो बस एक दूसरे का भरोसा। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, उन वादों को ना करिए जिन्हें आप निभा ना सकें। अपनी बात का सम्मान रखें, तभी तो हम दूसरों का विश्वास जीत पाएंगे।

क्योंकि हम आज सामने वाले को खुश करने के लिए एक झूठा ही सही वादा कर देते हैं, लेकिन हम उसे जानते हैं कि पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब यही चीज़ बार बार होने लगती है तो हम खुद अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं, और जब विश्वसनीयता नहीं तो जाहिर सी बात है भरोसे की कोई जगह ही नहीं। और अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है, अगर ऐसी गलती आप कर बैठे हैं जाने अनजाने, तो सखियों इसको भी सुधारा जा सकता है। और बहुत आसान तरीका है, वो है एक छोटी सी सॉरी। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो सॉरी बोल दीजिए। एक सॉरी आपके रिश्तों को बहुत दूर तक ले जाएगी। और अगर आपसे किसी ने किसी की गलती हो गई और उसने आपसे सॉरी बोला है, तो उसकी सॉरी को भी सुनिए, समझिए और उतनी ही तवज्जो दीजिए, क्योंकि गलती चाहे किसी की भी हो, बैठकर बात कर ही रिश्तों को और खूबसूरत और भरोसेमंद बनाया जा सकता है। तो सखियों, हमें भी आपका भरोसा नहीं तोड़ना है, क्योंकि हमारी सखियों को भी पूरा भरोसा है कि हम हर चीज़ के साथ साथ उनके मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो आइए सुनते हैं आपके रेडियो सेट पर ये खूबसूरत सा गीत सिर्फ आपके लिए।

सखियों, बदलते समय के साथ समाज की सोच भी बदल रही है। आज अगर बेटियां विज्ञान, खेल, सेना, प्रशासन और अंतरिक्ष तक अपनी पहचान बना रही हैं, तो वहीं बेटे भी घर और परिवार की जिम्मेदारी में बराबरी से भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन इतने सारे सकारात्मक बदलावों के बावजूद भी कई बार जाने अनजाने हम बच्चों को ऐसा संदेश दे देते हैं, ऐसी शिक्षा दे देते हैं जो उन्हें लड़के और लड़कियों के बीच में फर्क करना सिखाते हैं। और ऐसे में एक सवाल हम सभी के सामने खड़ा होता है कि क्या हमारे संस्कार बच्चों को समानता, सम्मान और संवेदनशीलता भी सिखा रहे हैं या नहीं। और आज अपने इनसे मिले सेक्शन में इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम बात करेंगे हमारी सखी नीमा नागरथ जी से, और जानेंगे कि परिवार, विशेषकर माता पिता, किस तरह अपने व्यवहार और परवरिश के माध्यम से ऐसी पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं जो व्यक्तिगत

0: प्रदान करे, ये सोचे हुए कि वो स्त्री है या पुरुष, और उन्हें समान अवसर भी दे। तो नीमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नारी संसार। नीमा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार संस्कार और जेंडर सेंसिटिविटी का आपस में क्या संबंध है? क्या अच्छे संस्कार बच्चों में समानता की भावना विकसित करने में मदद करते हैं?
1: धन्यवाद। मेरे अनुसार संस्कार और जेंडर सेंसिटिविटी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। वास्तव में बच्चे जेंडर सेंसिटिविटी की पहली सीख किसी किताब में नहीं बल्कि अपने घर से लेते हैं। जब माता पिता बेटी और बेटे दोनों के साथ एक जैसा स्नेह, विश्वास और सम्मान का व्यवहार करते हैं, तब घर के कामों और जिम्मेदारियों में दोनों की भागीदारी होती है। तब बच्चे ये समझते हैं कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके स्त्री या पुरुष होने से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व, संस्कार और कर्मों से तय होता है। मेरे विचार से अच्छे संस्कार वही हैं जो बच्चों को केवल अच्छा इंसान बनना सिखाएं। यदि हम उन्हें बचपन से ही सम्मान देना, दूसरों की भावनाओं को समझना, बिना किसी भेदभाव के अवसर देना और हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना सिखाएं, तो जेंडर सेंसिटिविटी अपने आप उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि संस्कार शब्दों से नहीं हमारे व्यवहार से बनते हैं। बच्चे हमारे बातें कम और हमारे कर्म ज्यादा देखते हैं। इसीलिए यदि हम अपने आचरण में समानता, सम्मान और संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से अधिक जागरूक, संवेदनशील और समाज का निर्माण हो पाएगा।
0: अक्सर देखा जाता है कि घर में जो भेदभाव की शुरुआत होती है वो माता पिता के व्यवहार से ही होती है, तो परिवार में बेटा और बेटी के साथ समान व्यवहार की शुरुआत कैसे और कब से करनी चाहिए, और इसमें माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे विचार से इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों के व्यक्तित्व की नींव परिवार में ही रखी जाती है। माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे अनजाने में भी बेटा और बेटी के बीच किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। दोनों को अपनी बात रखने का अवसर मिले, दोनों की उपलब्धियों की सराहना हो और घर की जिम्मेदारियों में भी दोनों की भागीदारी हो। जब बच्चे घर में बराबरी, सम्मान और सहयोग का माहौल देखते हैं, तो वही सोच उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। इसलिए यदि हम समाज में बदलाव चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत अपने घर और अपनी परवरिश से ही करनी हो।
0: बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे समाज में कई जेंडर आधारित धारणाएं मौजूद हैं, जैसे कि कुछ काम खास तरीके के वो लड़कियों के लिए ही निषेध किए गए हैं, उसमें लड़के करें तो उनका मजाक उड़ाते हैं या उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते बल्कि उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इन्हें बदलने के लिए परिवार, स्कूल और समाज को क्या कदम उठाने चाहिए?
1: बिल्कुल, समय के साथ बहुत बदलाव आया है, लेकिन आज भी कुछ पुरानी सोच हमारे समाज में बनी हुई है। कई लोग अब भी मानते हैं कि कुछ काम सिर्फ लड़कों के हैं और कुछ सिर्फ लड़कियों के, जबकि सच यह है कि किसी भी काम की पहचान उसके करने वाले जेंडर से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और योग्यता से होती है। परिवार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका दें। स्कूलों को ऐसा माहौल देना चाहिए जहां हर बच्चा बिना डर और झिझक के सीख सके। समाज को भी बच्चों का मजाक उड़ाने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। जब हम बच्चों को यह सिखाएंगे कि हर काम सम्मानजनक और हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है, तभी हमारी सोच बदलेगी और समाज भी बदलेगा।
0: और चलते चलते नीमा जी, आप हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपने बच्चों को समझाएं, किस तरह की परवरिश दें कि आगे चलकर वो एक सेंसिबल, सेंसिटिव, संवेदनशील नागरिक बन सके और किसी भी तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर

सामने वालों को इंसान के रूप में पहचान सकें। मैं सभी अभिभावकों विशेषकर माताओं से यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को केवल सफल नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनने की सीख दें। उन्हें सिखाइए कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके स्त्री या पुरुष होने से नहीं बल्कि उसके विचारों, व्यवहार और कर्मों से होती है। घर का वातावरण ही बच्चों की पहली पाठशाला है। यदि घर में सम्मान, विश्वास, सहयोग और बिना भेदभाव का व्यवहार होगा तो वही मूल्य बच्चों के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएंगे। आइए एक ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो किसी को जेंडर से नहीं इंसानियत से पहचाने, जो सम्मान दे, संवेदनशील हो और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर दे। यही सच्चे संस्कार हैं और यही एक बेहतर समाज की सबसे मजबूत। नीमा जी, आपने हमारी सखियों के साथ इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी बातें साझा करी और हमारे कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सखियों, कहते हैं कि जब एक महिला शिक्षा प्राप्त करती है तो सिर्फ एक वो महिला नहीं होती, बल्कि उसके साथ आगे उसका परिवार और आगे बढ़ते हुए उसका समाज, उसके आसपास के लोग भी उस शिक्षा के पात्र बन जाते हैं। और आज अगर डिजिटल युग की बात करें तो महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा बहुत आसान भी हो गई है, लेकिन उस आसान और उन अवसरों के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। तो आइए जानते हैं अमिता भटनागर जी से कि क्या है वो चुनौतियां और क्या है वो अवसर।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता भटनागर आकाशवाणी के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज का विषय केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रगति और

राष्ट्र निर्माण से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है डिजिटल युग में महिलाओं की उच्च शिक्षा, चुनौतियां और अवसर। प्रिय श्रोताओं, यह 21वीं सदी ज्ञान और तकनीक की सदी है। आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां इंटरनेट, स्मार्टफोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों ने हमारे जीवन की दिशा बदल दी है। शिक्षा का स्वरूप भी तेजी से परिवर्तित हुआ है। कभी पुस्तकालयों तक सीमित रहने वाला ज्ञान आज हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है। भारत जैसे विशाल देश में डिजिटल तकनीक ने शिक्षा को नई गति प्रदान की है। विशेष रूप से महिलाओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। एक समय था जब प्रतिभाशाली छात्राएं आर्थिक कठिनाइयों, सामाजिक प्रतिबंधों अथवा दूरी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी। आज वही छात्राएं अपने घर से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के व्याख्यान सुन रही हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम कर रही हैं और नई नई तकनीकों को सीख रही हैं। यह परिवर्तन केवल सुविधा का नहीं बल्कि अवसरों की समानता का प्रतीक है। हमारे देश में डिजिटल इंडिया अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने डिजिटल शिक्षा को नई दिशा प्रदान की है। आज विश्वविद्यालयों के ई पुस्तकालय, ऑनलाइन कक्षाएं, वर्चुअल प्रयोगशालाएं और मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम लाखों छात्राओं तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों के लिए भी उच्च शिक्षा के नए द्वार खुले हैं। किंतु हर परिवर्तन अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। सबसे पहली चुनौती है डिजिटल असमानता। आज भी अनेक गांव में तेज इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। कई परिवारों में स्मार्टफोन या लैपटॉप भी नहीं है। यदि एक ही मोबाइल है तो उसका उपयोग प्रायः बेटों को प्राथमिकता देकर कराया जाता है। ऐसे में प्रतिभाशाली छात्राओं की शिक्षा बाधित हो जाती है। दूसरी चुनौती है डिजिटल साक्षरता। तकनीक का उपयोग करना और उसका सुरक्षित उपयोग करना दोनों अलग अलग बातें हैं। केवल इंटरनेट उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है, उसका सही उपयोग करना भी आवश्यक है। इसलिए डिजिटल शिक्षा के साथ डिजिटल प्रशिक्षण भी अनिवार्य है। तीसरी चुनौती है साइबर सुरक्षा। आज ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, फर्जी वेबसाइट, डेटा चोरी और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इन चुनौतियों के साथ साथ सामाजिक सोच भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आज भी अनेक परिवारों में बेटियों की उच्च शिक्षा को विवाह से कम महत्व दिया जाता है, जबकि एक शिक्षित महिला केवल अपना जीवन नहीं बदलती बल्कि पूरे परिवार और समाज को आगे बढ़ाती है। यदि अवसरों की बात करें तो डिजिटल युग महिलाओं के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं लेकर आया है। आज महिलाएं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, रोबोटिक्स, उद्यमिता, शोध और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं। वे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से नए कौशल सीख रही हैं, स्वरोजगार स्थापित कर रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। डिजिटल शिक्षा ने समय और स्थान की सीमाओं को समाप्त कर दिया है। अब किसी छात्रा को केवल इसलिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ती कि उसके आसपास कोई विश्वविद्यालय नहीं है। यदि उसके पास इंटरनेट और सीखने की इच्छा है तो दुनिया का ज्ञान उसके लिए उपलब्ध है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि तकनीक तभी सार्थक होगी जब उसके लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे। सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज सभी की यह जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल संसाधन और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। आज आवश्यकता ऐसी शिक्षा की है जो केवल डिग्री न दे बल्कि आत्मविश्वास, नवाचार, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक संवेदनशीलता भी विकसित करे, क्योंकि भविष्य उन्हीं समाजों का होगा जहां महिलाएं ज्ञान, तकनीक और नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में समान भागीदारी निभाएंगी। महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आज डिजिटल युग में यह विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। अब समय आ गया है कि हम हर बेटी को केवल पढ़ने का अवसर ही नहीं बल्कि आगे बढ़ने का पूरा अधिकार भी दें। प्रिय श्रोताओं, डिजिटल तकनीक अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है बल्कि एक सशक्त माध्यम है। वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब हर बेटी आत्मविश्वास के साथ कह सके कि शिक्षा उसका अधिकार है, तकनीक उसकी शक्ति है और सफलता उसका भविष्य है।
आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां कोई भी बेटी संसाधनों की कमी, सामाजिक बाधाओं या तकनीकी

0: असमानता के कारण अपनी शिक्षा से वंचित ना रहे, क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित होंगी, डिजिटल रूप में सक्षम होंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी, तभी भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
1: सखियों, अभी आपने अमिता भटनागर जी की वार्ता सुनी, डिजिटल युग में महिलाओं की उच्च शिक्षा, चुनौतियां और अवसर। और सखियों, अब वक्त आ गया है हमारे उन श्रोताओं के नामों का जिन्होंने आज हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर पूछे गए आज के सवाल का सही जवाब दिया है। हमारा सवाल था कि अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली भारत की पहली महिला का क्या नाम है, और जो सही जवाब आया है वो है आरती साहा। और देने वाले हमारे श्रोता हैं अनोखे लाल जी, राजेश वर्मा लाल कुर्ती रोड के कैंट से, और हमारे हैं जो श्रोता है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राज्यपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, ये हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। साथ ही हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, ये हैं बुलंदशहर से उमेश गौर जी, और एक और हमारी श्रोता हैं संजय ढींगिया जी बागपत से, जिन्होंने भी सही जवाब दिया। इसके अलावा हमारे श्रोता हैं हीरामणि वर्मा, प्रवीण चौहान, और हाँ, इन्हीं श्रोताओं ने जो हमारे सवाल का जवाब दिया वो सही दिया है। कई अन्य श्रोताओं ने भी अपने नाम भेजे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ नाम नहीं भेजने हैं श्रोताओं, यहाँ पर आपको हमारे सवाल का जवाब देना है। तो अब चलते हैं आपके हेल्थ की ओर, वो जो कि हमने आपसे कहा था कि हम आपकी थाली को बदल देंगे और बदल जाएगी आपकी सेहत की रंगत। तो सखियों, थाली में रंग भरे, रंग भरने का मतलब हमारा ये है कि अपने भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल और सलाद ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इससे आपका भोजन न सिर्फ संतुलित बल्कि पौष्टिक भी बनेगा। और मैदा और रिफाइंड की जगहों पर ज्वार, बाजरा, रागी और ओट्स को शामिल करें, ये भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखते हैं। हर थाली में रखें प्रोटीन, यानी कि दाल, राजमा, छोले, पनीर, दही और अंकुरित अनाज को, और ये जब आपकी थाली का बनेंगे रोज़ का हिस्सा, तो देखिए आपकी सेहत में भी एक नया निखार आ जाएगा। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ध्यान रखिए पानी का। जी हाँ सखियों, पर्याप्त पानी पिएं, लेकिन साथ ही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और पैकेट जूस से दूरी बनाए रखें। और हम दूरी नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी आपसे, क्योंकि अब फिर से एक बार हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

शिप्रा श्रीवास्तव के साथ। प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की। आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पर आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी नेहा सिंह के साथ। प्रस्तुति है गौरव सक्सेना जी की।

हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम है हमारे सभी लिसनर्स का प्रोग्राम युववाणी में आपकी आज की रेडियो साथी नेहा सिंह के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? मौसम तो आजकल काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है। एकदम से बादल आते हैं, फिर उसके साथ ही वर्षा होने लगती है और ठंडा मौसम हो जाता है। बट बारिश के रुकते ही कुछ देर बाद धूप, उमस और ये चिपचिपाती गर्मी ना हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान और इरिटेट कर देती है, जिसमें ना तो हमारा कुछ करने का मन करता है और बाहर जाने का बिल्कुल भी नहीं। एंड यही बदलता मौसम हमें बनाता है बीमार। फीवर, कोल्ड, कफ बहुत इजीली हो जाता है इस वेदर में, इस मौसम में। इसलिए हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हमारे हाथ में ही है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बारिश में भीगने से बचें। अगर हम भीग भी जाते हैं तो घर पर आकर हमें सादे पानी से ज़रूर नहाना चाहिए, जिससे कि कोई भी तरह के जर्म्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। और इसके साथ ही बिल्कुल चिल्ड पानी फ्रिज का ना पिएं, ये हमारे गले को तो ख़राब करता ही है और साथ ही खांसी जुकाम का भी कारण बनता है। इस वेदर में इन्फेक्शंस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए स्ट्रीट फूड हुआ उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये जो बाहर के अनहाइजीनिक फूड रहते हैं इस वेदर में वो हमारे पेट में दर्द या इन्फेक्शन ये सब चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही पोल्यूटेड वाटर, ये भी बहुत ख़तरनाक है हमारे लिए इस समय में, इससे टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसलिए ज़्यादातर अगर आप कोशिश करें तो बाहर जाते टाइम अपना घर का फिल्टर वाटर ही लेके जाएं, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो पानी को उबाल कर ही पिएं, और साथ ही विटामिन सी एंड प्रोटीन रिच डाइट लें, जिससे जो आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी और आप बीमार भी ज़्यादा जल्दी नहीं पड़ेंगे। इन सब के साथ साथ एक चीज़ और है जो बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, वो है हमारा फिज़िकल मूवमेंट। आजकल हम सबके जो लाइफस्टाइल हैं वो इतने चेंज हो गए हैं कि जो हमारा चलना फिरना है, वर्कआउट करना है, वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया है। इसलिए अगर आप अपने बिजी शेड्यूल के कारण अपने आप पर, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते, तो कोशिश करें कि खाना खाने के बाद ज़रूर टहलें। और अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो इस वेदर में भी अपने आप को बहुत हेल्दी रख पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अपनी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू रखेंगे बट आफ्टर अ म्यूजिकल ब्रेक।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
2: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आपको हमारा आज का सवाल याद है ना, जो कि हमने अपने सोशल मीडिया के थ्रू पूछा था। हमारा आज का सवाल था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना किसने की थी। तो वो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। और दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो 17 दिसंबर 1931 को की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और ISI को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। और ये दर्जा इसको 1959 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा दिया गया था। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। विज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान के लिए उन्हें 1968 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने ISI की स्थापना की और भारत के आर्थिक नियोजन और साथ ही सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में योगदान दिया। भारत 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में दैनिक जीवन में सांख्यिकी के योगदान को मान्यता देने, सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व पर आम जनता को शिक्षित करने के लिए मनाता है। 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने के लिए चुना गया है। और जो दोस्तों हमारा आज का सवाल है, उसका आंसर हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने अपने कमेंट्स के थ्रू बिल्कुल ही सही दिया है, जो कि यहाँ मुकेश कश्यप, आकाश रस्तोगी, राजवीर सिंह यादव, लाल मोहम्मद अंसारी, दिग्दर्शन कौर व अन्य कई सारे लिसनर्स ने। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, बट उससे पहले सुनते हैं अब एक और गीत।

दोस्तों, आजकल जहाँ डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहीं हर फील्ड में कंपटीशन भी, और इसी के साथ साथ हमारी यूथ की लाइफ में टेंशन भी बढ़ रही है, क्योंकि हर कोई अपने करियर में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है। एंड इस प्रोसेस में ना, पढ़ाई के स्ट्रेस के बीच हर कोई डिमोटिवेट और परेशान हो ही जाता है, और कभी कभी हम सभी अपने लक्ष्य से भी भटक जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है लगातार प्रयास करते रहना और हार कभी ना मानना। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि अब आपसे नहीं हो रहा है, आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ब्रेक लें, जिसमें आप चाहें कहीं घूमने फिरने जाएं, कोई मूवी देखें, या अपनी पसंद की कोई भी एक्टिविटी करें जिससे आपको रिलैक्स्ड फील हो, आपका माइंड थोड़ा पॉजिटिव फील करे और आप फिर से आगे बढ़ सकें। ये सब चीज़ें करने से आप अपने काम में वापस दोबारा से और भी ज़्यादा एक क्या कहते हैं उसको, अपने अटेंशन के साथ कर पाएंगे और उसमें अपना दिमाग भी अच्छे से लगा पाएंगे। और इसलिए हम अपने दोस्तों के लिए आज लाए हैं इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स में वार्ता, जो कि हम सुनेंगे बट एक गाने के बाद।

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम रति कुमारी है। मैं एक गवर्नमेंट जेई हूँ यूपी में। मैंने 10th के बाद पॉलिटेक्निक की, फिर बीटेक। स्टार्टिंग से मेरी रुचि इंजीनियर बनने में थी, इसलिए मैंने यही प्रोफेशन चूज़ किया। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हम अपने आसपास देखते हैं, उनके अंदर जो भी मशीन्स सिस्टम लगे होते हैं, वो सब एक मैकेनिकल इंजीनियर का ही काम होता है। तरह तरह की मशीनें, ऊर्जा प्रणालियों और किसी भी चीज़ के डिज़ाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण से संबंधित सारा काम मैकेनिकल इंजीनियर देखते हैं। एंड जनरेटर्स, जो कि आजकल हम हर फंक्शन में यूज़ करते हैं, इंजन, टरबाइन, फ्रिज, एसी, बिल्डिंग्स में लिफ्ट, एस्केलेटर, मॉल्स की इवन तरह तरह की खूबसूरत लाइट्स, ये सब कुछ एक मैकेनिकल इंजीनियर के बिना पॉसिबल नहीं है। बचपन से मुझे ये चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती थीं। ये वर्क कैसे करती हैं, मुझे इन्हें जानने समझने में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए ये फील्ड चूज़ की। जब हम अपना करियर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, तो वो एक्साइटिंग और हैप्पी अपने आप बन जाता है। काम पे जाना एक बर्डन नहीं लगता, इसलिए इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो हर देश के एक बेसिक स्ट्रक्चर को बनाती है, चाहे आईटी सेक्टर हो, कंप्यूटर साइंस हो या सिविल इंजीनियरिंग। हर एक सेक्टर की इम्पोर्टेंस अलग है, जो हर देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मशीनों और प्रणालियों के लिए तकनीकी चित्र और योजनाएं बनाते हैं। ये प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं और परीक्षण करते हैं, और डाटा का विश्लेषण करके ये सुनिश्चित करते हैं कि मशीनें और प्रणालियां सुरक्षित और कुशल हों, और इन मशीन्स की मरम्मत रखरखाव भी करते हैं। आज के समय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमेटिव लाइक कार्स, ट्रक्स, हेलीकॉप्टर, इंजन्स, टर्बाइन्स और कई तरह की मशीन्स का डिज़ाइन, विकास और परीक्षण करते हैं। एरोस्पेस, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ आदि फील्ड्स में हर जगह है। गवर्नमेंट इंजीनियर बनने के लिए यूपी में भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक, बीटेक आदि क्वालिफिकेशन में होना अनिवार्य होता है। बाकी हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एसएससी जेई एग्ज़ाम होता है। आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर जेईई बन सकते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बना लें एंड उसे फॉलो करें। डेली 6 to 10 आवर्स पढ़ेंगे तो भी सफिशिएंट है। ज़रूरी ये है कि पढ़ाई को कॉन्टिन्यूस रखना, खुद को मोटिवेटेड, एक्टिव एंड स्टेबल बनाए रखने के लिए ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, तो उसका भी ध्यान रखें। एंड जब सिलेबस ख़त्म हो जाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करें। डेली टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी, और ये भी पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। उससे आपको आपकी प्रिपरेशन में और भी मदद मिलेगी। ऐसे ही हार्ड वर्क एंड कॉन्टिन्यूस स्टडीज़ के बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।
1: श्वेता, अभी आपने सुनी वार्ता रति कुमारी के साथ कि कैसे हम अपने इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल रही है। तो हमारे युवा साथी ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब हम सुनेंगे कार्यक्रम में आखिरी गीत।

अभी आप सुन रहे थे ये वाणी नेहा सिंह के साथ, प्रस्तुति थी गौरव सक्सेना जी की। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी, भैया धारा सिंह और भैया डॉक्टर रविंद्र कुमार के साथ। प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव जी की।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसानवाणी सुन रहे सभी किसान भैया और बहनों, आप सभी को आपके भैया धारा
2: और भैया रघु की
1: राम राम। स्वागत है भैया बहनों आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसानवाणी में। रघु भैया कैसे हालचाल हैं आपके?
2: धारा भैया हालचाल बढ़िया हैं, और देखो धान लगा के फुर्सत पा ली है। अब सोच रहे हैं कि अब तो बीच में सही बारिश वरिश हुई गई, बूंदे बढ़िया पड़ गई और फिर से बरस जाए, क्योंकि धानन की नमी जो है वह कम ही रही है ना, तो पानी लगाने पर आए और पानी लगाने पर आए तो जेम ढीली करने पर आई।
1: रघु भैया बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जिन भैया ने धान लगाए ले हैं उनके लिए अभी राहत को समय ना है, उन्हें लगातार अपने खेतन में जब देखभाल रखने हैं कि हमारे खेतन में पानी बनोबो है या ना बनोबो है। अगर पानी ना है भैया तो पानी की व्यवस्था करके रखें, और अगर व्यवस्था ना रखी और कहीं अगर नमी दूर हो गई तो खेतन में भैया खरपतवार हो ही करेंगे। और अगर जिन भैया ने खरपतवार नियंत्रण करने के लिए जो दवाई खेतन में लगाई है उसके लिए भैया नमी यानी कि 2-3 सेंटीमीटर तक पानी को खेत में रहनो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो धारा भैया। और बात करें गन्ना की तो जा है गन्ना को काम सही है, गन्ना में तो अब ज़्यादा कुछ करने ना है, अब तो जा है कि बारिश होता रहे हफ्ता हफ्ता तो अपने गन्ना काफ़ी सही हो जाएगा।
1: भैया करने जरूर पड़ेगा काम, जब बारिश अगर हफ्ता हफ्ता होत रही तो गन्ना की बढ़वार हुई, और जब बढ़वार हुई तो गन्ना भैया गिरन की संभावना हुई, क्योंकि हवा चलेगी, पानी बरसेगा तो हवा चलेगी, तो इसलिए जब बांधन लाए हो जाए तो बाकी व्यवस्था बांधनों की करने हैं।
2: ना वैसे जा है कि वो तो बात सही कह रहे हो, लेकिन जा है कि देखेंगे कहूँ तो मट्टी चढ़वाने की जरूरत पड़ेगी तो बहुत चढ़वा देंगे।
1: रघु भैया एक बात बता, मैं हमारा कार्यक्रम तो जो किसान वाणी है बामे हम समय समय पर जितनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं, और आज भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में हमारे भैया बहन अपने कुछ सवाल भी पूछेंगे। अब जब सवाल पूछेंगे तो हम भी तो उनसे एक सवाल पूछ सकते हैं।
2: बिल्कुल पूछेंगे,
1: और प्रत्येक दिन पूछते हैं,
2: सवाल लिख भी लो हुए हमने और पूछ भी ले रहे हैं।
1: हाँ भैया क्या सवाल है?
2: हमारो आज को सवाल है कैच द रेन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भैया सवाल एक फिर से लिख लियो, कैच द रेन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: रघु भैया कैच यानी के पकड़न वारो ना,
2: पकड़न वारो।
1: हाँ। किसान भैया समझ गए होंगे, लेकिन इसी संबंध में आज हमारी बातचीत भी तो होनी है भैया बहनों से।
2: बिल्कुल होनी है, बिल्कुल होनी है,
1: तो बातचीत शुरू करते हैं।
2: हाँ।
1: कैच यानी के पकड़ने वाली बरसात, तो अब हम बरसात को कैसे पकड़ सकते हैं भैया बहन कहते होंगे, आज ये दोनों भैया मिलके जो है वो कौतने कैसे करके कैच पकड़ेंगे, तो इसमें विस्तार से जानकारी हम अपने भैया बहनों को ये देना चाह रहे हैं कि अगर हम बरसात का अगर आनंद लेना चाहते हैं और उस बरसात के पानी को अपने खेतों में देना चाहते हैं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने खेत की जमीन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें कैच पकड़ना पड़ेगा।
2: बिल्कुल,
1: वो भी बरसात वाला,
2: जब भी जैसे भी,
1: जब भी जैसे भी। और कहते भी यही हैं कि जहां गिरे जब गिरे वर्षा जल को वहीं सजोएं।
2: बिल्कुल, अब देख रहे हो धारा भैया गांव में पहले चारों घाई तलैया हो करती।
1: हाँ।
2: खर्रा हो करते, सब पाट के खेत बना ले। अब ऐसे में कहा है कि जो भूगर्भ जल है, तो गर्मी में कहते हैं कि एक बीघा खेत 2 घंटा में भर रहा है, और तो भैया जब भूगर्भ जल को स्तर कम ही जाएगो, जब पानी को संरक्षण करोगे ही ना, तो कैसे फिर आपको जो भूजल स्तर है वो बनो रहेगो?
1: रघु भैया हमारे जानकारी में भी आई है, और हम भी ये सोच रहे हैं कि ये जो कैच द रेन जिसको हम कह रहे हैं कि हम बरसात के पानी को पकड़ें, सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के प्रयास करने मात्र से ही प्रयास सफल नहीं हो सकता, उसके लिए हमें अपना काम करना पड़ेगा। अब जैसे गांव में भी जो बड़े बड़े घर बने हुए हैं उनका पानी जब छत पे गिरता है और वो पानी धीरे धीरे छत के नाले से होकर के वो गलियारे में पहुंचता है, वो पानी धीरे धीरे तालाब में पहुंच जाता है, वहां तो ठीक है, लेकिन अब जहां तालाब आपने कही कि खत्म हो चुके हैं वहां भी छोड़ो भैया, अब शहरों में या गाँव में हमारे भैया बहनों को एक इंतजाम करना पड़ेगा कि बड़े बड़े गड्ढे खुदवाने

0: पड़ेंगे, तालाबों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जो भैया पानी बरसेगा उस पानी को खेत तक या फिर तालाब तक ले करके जाना पड़ेगा और वहां जमा करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल धारा भैया, देखो ऐसा है कि अभी हिन पे बीत ना रही है, गुजरात में जय स्थिति है, हर जने ने अपने घर में 30,000 लीटर 35,000 लीटर कैपेसिटी को टैंक बनवा रखा है
0: हाँ
1: और बामे लगा रखी है मोटर। तो अपने जैसे बहुत से काम हैं, जैसे घर की धुलाई सफाई करने हैं, पेड़ पौधन को पानी लगाने हैं, तो वे क्या करते हैं कि जब बारिश होती है बाहर से सीधो पाइप ला के उनने टैंक में डाल दो, छत को अपनी साफ रखते हैं। तो जैसे ही वर्षा भई, वो छत को जो पानी है, बारिश को पानी है, वो सीधे टैंक में जमा हेगो। अब बाको 6 महीना लो प्रयोग करते रहते हैं।
0: भैया, बहुत सी जगह ऐसी व्यवस्था भी करेगी कि जो बड़े बड़े कुआं जो बने हुए थे जिनको इस्तेमाल ना हो रहा है, तो
1: हाँ
0: उस कुएं में भी वो पानी जो है वहां ले जाकर के छोड़ा जा रहा है, जिससे कि वो पानी जमीन में भी पहुंच जाएगा और उसका जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा।
1: बिल्कुल
0: तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके लिए ध्यान रखना है। अंत में किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि कैच द रेन केवल सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का आंदोलन है।
1: बिल्कुल
0: हम प्रत्येक नागरिक के लिए वर्षा के जल को अपने क्षेत्र में इकट्ठा करके रखना है और इसके लिए हमें प्रयास करना है, जिससे भूजल के स्तर में सुधार किया जा सके, जल के संकट को कम करो जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भैया हम जल बचा के रख सकते हैं। एक
1: बिल्कुल
0: नारा बता दें, जल है तो कल है,
1: कल है,
0: जहां गिरे जब गिरे वर्षा जल को वहीं सजोएं।
1: बिल्कुल तभी तो हम जे सार्थक कर पाएंगे जा अभियान को। और देखो धारा भैया, आज है मंगर को दिन,
0: हाँ
1: और मंगर के दिन हमारे भैया फोन करते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में, और हेलो किसान को आज को हमारा विषय है धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन, सही समय और सही तरीका।
0: तो कौन कौन से किसान भैया बहनों ने फोन किए हैं और इस समस्या को समाधान चाहो है, आप वो सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं हूँ मिथिलेश श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है आज का विषय, और ढेर सारे श्रोता इंतज़ार भी कर रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ कौन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर विवेक पांडे इस समय हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बरेली के जानी मानी विश्वविद्यालय में। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद सर, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा किसान वाणी का, जिसके माध्यम से आज हमें किसानों से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ।
1: जी बिल्कुल, तो आज जो फ़ोन हमारे सामने रखा हुआ है ब्लिंक कर रही है, तो कॉल लेते हैं पहले। जी नमस्कार, किसान वाणी कार्यक्रम में आपकी कॉल लगी है।
3: नमस्कार सर, नमस्कार जी,
1: जी अपना नाम बताएं।
3: मेरा नाम है विजयपाल यादव सर।
1: जी विजयपाल जी, अपना सवाल पूछें। आज हमारे साथ डॉक्टर विवेक पांडे हैं, और आज विषय आपको पता है।
3: जी सर, ये हम जानना चाहते हैं कि धान लगाने के बाद में जो वो दवाई ब्यूटाक्लोर नाम से आती है मचेटी,
1: अच्छा
2: जी सर,
3: तो उसको कितने दिनों के बाद में डालना चाहिए, और इसको डालने के बावजूद भी छोटे छोटे खरपतवार जब आते हैं बाद में, जिसको देसी भाषा में लोन कहते हैं, लोन,
2: जी जी सर,
3: तो उसके निवारण के लिए बाद में हमको क्या करना चाहिए।
1: क्या
2: जी सर, सर बताना चाहेंगे जो ब्यूटाक्लोर मचेटी के नाम से मार्केट में आती है सर, उसकी जो संस्तुत मात्रा है या उसको जो अप्लाई करने का टाइम है, वो रोपाई करने के 1 से 2 या 24 से 72 घंटे के बाद में हमें उसमें उसका स्प्रे करना है। और सर ध्यान रखना है कि हमारी फसल में 2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी होना चाहिए सर, ताकि उसके अच्छे हमें परिणाम मिल सके। उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो उसके बाद 15 से 20 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है रोपाई के बाद में, तो एक बेस्पायरीबिक सोडियम के नाम से आता है, जो कि आजकल मार्केट नॉमनी गोल्ड के नाम से आता है सर, उसकी सर 100 से 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रहे सर, पर्याप्त नमी खेत में होनी चाहिए ताकि हमें अच्छे परिणाम मिल सके।
1: शुक्रिया विजयपाल जी। तो लगातार कई सारे श्रोता हमें सुन रहे हैं और कई सारी समस्याएं हैं उनकी, तो खरपतवार नियंत्रण की जो बात है वो भी धान की फसल में, तो इसमें एक तो हमें आजकल जो सरकार की तरफ से चल रहा है प्राकृतिक खेती,
2: जी सर,
1: और इसके अलावा ये भी बात चल रही है कि खेत को बचाना है,
2: जी सर,
1: और तीसरा जो इस समय चल रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है,
2: जी सर,
1: कैच द रेन है।
2: जी
1: तो
4: पहले तो इन पे बताइए कि प्राकृतिक खेती जो है उसमें हम खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते
2: सर
4: हैं ऑर्गेनिक।
2: प्राकृतिक खेती में खरपतवार नियंत्रण

0: कि हमारी जो विधियां हैं उसमें हम शस्य वैज्ञानिक विधियों का चयन करेंगे। शस्य वैज्ञानिक विधियों में जैसे हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे ट्रांसप्लांटेड राइस होती है, जिसको हम पौध रोपित धान की फसल बोलते हैं, उसमें हमें सर ये ध्यान रखना है कि समरकालीन जो गर्मियों की जुताई होती है
1: हाँ
0: उसमें अच्छी जुताई करें, ताकि फसल खरपतवारों के जो अवशेष हैं या जड़ हैं
1: जी जी
0: उनके उनको हम जड़ से समाप्त किया जा सके।
1: देखिए एक श्रोता लाइन पे हैं जी। नमस्कार, किसान वाणी में आपने कॉल किया है,
2: नमस्कार
1: अपना शुभ नाम बताएं।
2: हम जिला बदायूं ग्राम जूने में रखे ठाकुर मुन्ना सिंह कटेरिया बोल रहे हैं।
1: जी मुन्ना सिंह जी, अपना सवाल पूछिए, खरपतवार नियंत्रण पे है आज?
2: यहाँ ये धानों में खरपतवार का अंकुरण हो रहा है, एक सप्ताह हो गया।
1: अच्छा,
2: इसके लिए क्या कौन सी रासायनिक दवा का प्रयोग करें?
0: सर धान की रोपाई को किए हुए कितने दिन हो गए हैं?
2: एक सप्ताह हो गया।
0: जी सर, जी सर, अगर सर एक हफ्ता हो गया है तो अभी धान का जो खरपतवार होगा वो छोटा होगा। अगर आप 2-3 दिन के बाद में जब 10 दिन का हमारा रोपाई हो जाए तो सर एक एलमिक्स के नाम से खरपतवार नाशी आता है, या अभी हमने बताया था एक वेस्पायरीबिक सोडियम जो नॉमिनी गोल्ड के नाम से आता है सर, या गरुड़ के नाम से भी मिलता है मार्केट में, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रहे कि खेत में 10 से 12 दिन तक नमी बनी रहे, और ये मेन ध्यान रखना है सर हमें कि जब हम उसकी 100 से 120 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से हमें छिड़काव करना है, और पानी की मात्रा 200 से 250 लीटर पर एकड़ के हिसाब से रखनी है।
1: ठीक है मुन्ना सिंह जी, शुक्रिया आपका भी कॉल करने के लिए। मुन्ना सिंह जी, तो हम बात कर रहे थे सर प्राकृतिक खेती में, तो अपनी बात आप कंटिन्यू करिए।
0: जी तो सर, सबसे पहले तो हमें ग्रीष्मकालीन जुताई करनी है, ताकि हमारे जो फसल के जो खरपतवारों के अवशेष हैं वो नष्ट हो सके। उसके साथ साथ हमें सर ध्यान रखना है कि अगर हम धान की रोपाई करते हैं तो हमें जो बीज खरीदना है वो बीज खरपतवारों से रहित होना चाहिए। कुछ सर धान की फसल में हमें सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी सिंचाई करने की नालियां हैं उनके चारों तरफ कोई भी खरपतवार ना हो, ताकि उनके बीज जल के माध्यम से हमारे खेत तक पहुंचे।
1: जी।
0: उसके साथ साथ हमें ये भी सर ध्यान रखना है कि अगर हम कोई गोबर की खाद वगैरह उसमें पहले से प्रयोग कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से सड़ी गली होनी चाहिए, ताकि उसमें किसी भी तरीके के जो खरपतवार के बीच या अवशेष हैं वो पूरी तरीके से गले हुए होने चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सर हम उसके साथ साथ कुछ हर्बिसाइड्स भी आजकल आ रहे हैं।
1: अच्छा,
0: तो उनको भी हम प्रयोग कर सकते हैं।
1: ठीक है, उससे पहले एक कॉल लेते हैं, श्रोता है जी। हेलो,
3: हाँ नमस्कार, मैं विजय पांडे बलरामपुर से बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्कार विजय पांडे जी, बलरामपुर से आप बोल रहे हैं। आज विषय, आज का विषय पता है आपको, धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण पे है।
3: जी जी, तो मेरे धान में घास उग गए हैं तमाम।
1: अच्छा, तो बताइए।
0: जी सर, सर जानना चाहेंगे कि धान की रोपाई किए हुए कितने दिन हुए हैं?
3: हो गया है 1 हफ्ते।
0: अच्छा अच्छा जी सर, सर बताना चाहेंगे कि धान की अभी जो रुपाई हुई है, या तो हमें उसी टाइम बूटाक्लोर या सर प्रोपिकोनाजोल के नाम से सर आता है, प्रेटिलाक्लोर के नाम से सर, उसको हम यूज कर सकते थे, रेफिट के नाम से आता है। लेकिन अगर हमने इस शुरुआती दौर में 2-3 दिन के बाद नहीं किया है तो सर हमें 10 से 15 दिन के बाद में एलमिक्स के नाम से एक हर्बिसाइड आता है सर, जो कि सर कॉम्बिनेशन होता है मेट सल्फ्यूरान मिथाइल और कार्बोफ्यूरान एथाइल का सर, उसको सर हम प्रयोग कर सकते हैं। 8 ग्राम मात्रा उसकी हमें पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी है, और जो हमारे जल की मात्रा होनी चाहिए जिसमें हम उसको घोलेंगे पानी की मात्रा, वो 250 से सर 300 लीटर तक रखनी है। जी सर, और एक समान तरीके से हमें अपने खेत में उसका स्प्रे करना है। जो स्प्रेयर हमारा होगा, जो स्प्रे मशीन होगा, उसमें जेट टाइप का नोजल होना चाहिए, ताकि जो उसकी ड्रॉपलेट्स हैं, जो बूंदे हैं, वो पूरी तरीके से पत्तियों पे पड़े
3: जी।
0: सर बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे सर आप।
1: ठीक है पांडे जी, धन्यवाद आपका भी कॉल करने के लिए। तो ये तो बात हुई कि प्राकृतिक रूप से हम कैसे खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, और लेकिन बहुत सारी और भी विधियां हैं, और विधियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्राकृतिक में ये थोड़ा सा संशय भी रहता है कि धीमा काम करेगा
0: जी सर,
1: और लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं
0: जी सर,
1: केमिकल का छिड़काव
0: सर
1: करना चाहते हैं।

0: एकीकृत,
1: एकीकृत।
0: हाँ,
1: अच्छा
0: खरपतवार प्रबंधन की विधियां हैं जिसको अंग्रेजी में हम इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट बोलते हैं
1: अच्छा
0: सर।
1: अच्छा तो
0: सर,
1: उसके
0: उसमें हमें जो खरपतवार नियंत्रण की विधियां हैं उसमें हमें सस्य वैज्ञानिक विधियां और उसके साथ साथ रासायनिक विधियों को भी हमें एक साथ मिला के प्रयोग करना है।
1: अच्छा
0: अगर
1: दोनों चीज
0: जी
1: कर
0: जी
1: लेंगे।
0: सर,
1: ठीक ठीक ठीक
0: उसके साथ में अगर हमें खरपतवारों की संख्या हमारे खेत में कम है तो हम डायरेक्ट फार्म किसानों से ये हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि उनको हम हाथ से भी उखाड़ सकते हैं। अगर उसके साथ साथ अगर हमने पहले से ही जो हमने बताई प्राकृतिक खेतों में उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उसके साथ हमें बुवाई के समय अगर डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं हम, डायरेक्ट सीडेड राइस है हमारा, सीधे धान की रोपाई कर रहे हैं ये, तो हमें एक पैंडी मेथलिन हर्बिसाइड आता है जिसको बुवाई के समय ही प्रयोग करना है।
1: पैंडी मेथलेन
0: जी, इस ताम
1: जी।
0: के नाम से मार्केट में आता है सर।
1: अच्छा।
0: उसको सर हमें 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है ताकि खरपतवारों के जमाव को वो रोके।
1: ठीक। ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे कि खेत बचाओ अभियान भी चल रहा है,
0: जी सर,
1: तो खेत बचा कैसे सकते हैं हम लोग? खरपतवारों से भी बचाना है और केमिकल से भी बचाना है।
0: जी सर, सर प्रायः देखा गया है कि किसानों के दिमाग में हम लोगों ने इस तरीके से एक धारणा बनी हुई है
1: जी
0: कि
1: जी
0: अगर हम अधिकतम रूप से पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे तो हमें अधिकतम उत्पादन मिलेगा। लेकिन अब उसके चक्कर में क्या करते हैं किसान, मुख्य रूप से जो हमारी संतुलित मात्रा है पोषक तत्वों की उनको ध्यान में नहीं रखते हैं, उसके साथ में लगातार यूरिया या DAP इन तरीके की जो हमारे पोषक तत्व हैं उनके सोर्स को अप्लाई करते रहते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है सर कि पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा को सही सही तरीके से सही समय पर अगर दिया जाए तो हम कम पोषक तत्वों के साथ में अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: और इसके लिए जरूरी है कि मिट्टी की जांच,
0: जी सर,
1: हमारी
0: इस
1: मिट्टी में क्या क्या है क्या क्या
0: जी
1: नहीं, ये पता
0: बिल्कुल
1: होना
0: सर,
1: चाहिए।
0: सबसे पहले हमें मृदा की हेल्थ ध्यान रखना है। मृदा स्वास्थ्य या मृदा उर्वरकता कार्ड जो बनता है वो अगर हमारे पास है तो हम उसकी उसके आधार पे हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि संतुलित मात्रा कितनी होनी चाहिए। सर, प्रायः धान की फसल के लिए अगर हम देखें तो हमारी जो संतुलित मात्रा है वो 48 किलोग्राम नत्रजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस, 24 किलोग्राम पोटास और 8 किलोग्राम जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से हमें खेत में डालना है। मुख्यतः देखा गया है कि किसानों को हम ये तो बता देते हैं कि इतने किलोग्राम नत्रजन देनी है, लेकिन किसानों को ये नहीं पता है कि 1 किलो नत्रजन देने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया हमें देना है। अगर इस तरीके की, सर मैं आज बताना चाहूंगा इसके माध्यम से, अगर 1 किलोग्राम हमें नत्रजन की पूर्ति यूरिया के माध्यम से करनी है तो हमें 2 किलो 200 ग्राम यूरिया प्रति केजी नत्रजन के लिए अप्लाई करना है।
1: ठीक है।
0: जी सर, तो अगर हम सही समय पे उसका प्रयोग करेंगे, उसमें अगर हमें पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है और ध्यान में रखना है कि हमारा सॉयल पोल्यूशन ना हो तो या मृदा उर्वरकता,
1: तो सही मात्रा में
0: जी
1: इस्तेमाल करें।
0: इस्तेमाल करें उसके लिए सर, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की 3/4 मात्रा, जिंक की पूरी मात्रा और नत्रजन की 1/3 मात्रा को हमें रोपाई के समय देना है। बची हुई जो नत्रजन की मात्रा है उसका 1/2 मतलब आधा भाग,
1: आधा भाग।
0: हाँ, 20 से 25 दिन के बाद में देना है और जो शेष बचा हुआ पोटास पोटास है और जो नत्रजन है उसको 40 से 45 दिन के बाद में अगर हम देंगे तो हम देखेंगे कि प्रायः हमारा जो पोषक तत्वों का पौधों की उपलब्धता है वो अच्छी रहेगी, उसके साथ साथ फुटाव भी अच्छा होगा और पौधों में दानों का साइज भी बढ़ेगा।
1: जी बिल्कुल। दानों का साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इनकम भी बढ़ेगी
0: जी सर,
1: अच्छी क्वालिटी के। अच्छा, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारा विषय तो खरपतवार नियंत्रण है, फिर भी हम चाहेंगे कि अगर आप धान की कुछ उन्नत फसलें हैं, जो क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं, लगातार रिसर्च हो रहे
0: जी
1: हैं,
0: सर,
1: तो कुछ ऐसी किस्मों का भी जिक्र करिए जिससे किसान भाई लाभान्वित हों।
0: जी सर, सर बासमती धान का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, बासमती एक्सपोर्ट हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है
1: जी।
0: तो वहाँ से बासमती किस्म की, बासमती 5/12 सर 11/21 इस तरीके की जो वैरायटीज निकल रही हैं वो हाईल्डिंग वैरायटी हैं, अधिकतम उत्पादन मिलेगा और उनकी मार्केट में अच्छी हमें कीमत में मिलती है।
1: कीमत भी मिलती
0: जी
1: है
0: सर,
1: तो वैज्ञानिक रूप से भी ये सही है,
0: जी सर,
1: ज़्यादा
0: हाँ
1: उनकी
0: जी
1: ग्रोथ रेट अच्छी
0: जी
1: है।
0: सर,
1: और बात किया जाए कि खरपतवार के लिए मिट्टी में जो जो भी आपने दवाएं बताई उनका छिड़काव करें,
0: जी
1: जिससे खरपतवार नियंत्रित रहें।

0: और हमारी जो फसल है वो अच्छी हो।
1: जी सर, मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि पोषक तत्वों को अगर हम लिक्विड फॉर्म में, जैसे हमारा आजकल नैनो यूरिया आ रही है, नैनो डीएपी आ रही है, अगर इनका फोलियर स्प्रे करें, मीन्स छिड़काव करें, तो ज़्यादा प्रभावकारी होगा हमारा, ताकि फसल पे हमारा जो सॉइल है, जो हमारी मृदा है, उसमें भी सुधार होगा और पोषक तत्व सीधे पौधे की अब पौधे में अवशोषित होंगे, ताकि उनकी उर्वरता और
0: तब
1: उनकी
0: बढ़ जाए,
1: उत्पादकता बढ़ जाएगी।
0: बढ़ जाए, बिल्कुल। और हमारी कोशिश भी यही है कि किसान बहन भाई सलाह दे सकें कि वो अपनी उत्पादकता बढ़ाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान बहन भाई ज़रूर लाभान्वित होंगे। और अभी जो फसल तैयार करनी है उन्हें, उसमें खरपतवार जो पैदा हो जाते
1: जी
0: हैं
1: सर,
0: उनका निराकरण कर सकेंगे।
1: जी सर, हाँ सर, उसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि हमारा जो वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन है वो लगभग 376 मिलियन टन है, जिसमें से खरीफ फसलों का बहुत बड़ा योगदान है, और उन खरीफ फसलों में भी अगर हम धान का देखें तो लगभग धान हमारे कुल खाद्यान्न उत्पादन का 41% हिस्सेदारी करता है। तो धान की फसल में अगर हम उसकी घटती हुई उत्पादकता का अवलोकन करें, तो हम सर पाते हैं कि उसमें जो उपज में कमी है वो खरपतवारों के कारण है, और वो कमी का स्तर 30 से 40% तक है। अगर हम उसको समय पर खरपतवारों का उचित तरीके से प्रबंधन नहीं करते हैं, तो खरपतवार हमारी मुख्य फसल के साथ पोषक तत्व, जल, स्थान, प्रकाश इत्यादि के साथ स्पर्धा करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, और
0: बिल्कुल
1: अगर उनको सही तरीके से सही समय पर उनका नियंत्रण नहीं किया गया, तो वो कमी का स्तर 70% तक देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल, तो इसके प्रति जागरूक रहना है।
1: उसके साथ साथ खरपतवार जो हैं वो हमारी रोग, कीट और व्याधियों को भी शरण देते हैं, ताकि
0: बिल्कुल
1: आने वाली जो हमारी फसल जैसे जैसे वृद्धि होती है, उसके साथ साथ उसमें रोग और कीट लगने की संभावना भी बढ़ती है।
0: तो सभी किसान बहन भाई खरपतवार का नियंत्रण करें, और जो भी सर ने बातें बताई हैं, जो भी दवाएं बताई हैं, उनका छिड़काव करें और अपनी अच्छी फसल लहलहाते हुए देखें। पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम जानकारियां दी, उनकी समस्याओं का भी समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी हमारे भैया बहन सुन रहे कार्यक्रम हेलो किसान, विषय हो धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन, सही समय और सही तरीका। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे, समस्याओं का समाधान कर रहे थे डॉक्टर विवेक पांडे, और आपसे बातचीत कर रहे भैया मिथिलेश श्रीवास्तव।
3: उम्मीद है रघु भैया के जो भैया बहनों ने सवाल किए थे उनकी जो है समस्या का समाधान बिल्कुल हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो आगे आने वाले समय में वो फिर से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और अब हमारे कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मनोरंजन, और बहुत लोग हमारे जो है इंतजार भी कर रहे होंगे, तो आइए क्यों ना सुनवा देते हैं उनके लिए समय सिंह के मधुर स्वर में गाए इस प्यारे से लोकगीत।

0: भैया बहनों, अभी आपने ये मधुर लोकगीत सुना समय सिंह के मधुर स्वर में। और रघु भैया, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो एक सवाल अपने भैया बहनों से किया था। सवाल था, कैच द रेन अभियान का क्या उद्देश्य है? बहुत से भैया बहनों ने इस सवाल का जवाब दिया है। हम आपको बता देते हैं कि वर्षा जल का अधिक से अधिक संचय और भूजल स्तर को सुधारना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और अब आज के कार्यक्रम की क्या नसीहत है भैया?
1: भैया देखो, आज के कार्यक्रम की नसीहत जय है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावें।
0: जी, तभी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और अब अधिक समय भी ना बचा है कि अपन में भैया बहन से और बातचीत कर सकें। आज के कार्यक्रम किसान वाणी से अपने भैया धारा,
1: और भैया रघु को दियो अनुमति,
0: भैया
1: भैया
0: बहनों
1: बहनों
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

किसान वाणी। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम भैया धारा सिंह और भैया डॉक्टर रविंद्र कुमार के साथ। प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब आप सुनेगा ग्राम जगत। प्रस्तुति है मिथिलेश।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रघु भैया, जैसा कि हम अपने कार्यक्रम ग्राम जगत में भी अपने भैया बहनों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहते हैं, आज एक वार्ता का विषय है कि हम धरा के आभूषण वृक्ष कैसे करके लगा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इस संबंध में एक वार्ता है, इस वार्ता को प्रस्तुत करेंगी रेणु। और आज की हमारी चर्चा का विषय यह है कि स्वच्छ जल पिए।
1: पिए
0: अब स्वच्छ जल पिए कैसे, जब हम स्वच्छता बरकरार बना करके रखेंगे तभी तो हम स्वच्छ जल पी सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इसके लिए हमें बहुत से प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे हमारे घर के पास में अगर कोई कुआं है, अब तो बहुत कम तादाद में रह गए हैं। मुख्यतः जो नल हैं हमें उनकी विशेष सफाई करके रखनी है, क्योंकि सरकार ने नल लगवा दिए, उनकी सुरक्षा संरक्षा हमारे हाथ में है। क्योंकि बहुत से भैया बहन अभी भी क्या काम करते हैं कि सरकारी नल जो है ना, वहाँ
1: बिल्कुल
0: पर जाते हैं और अपने गैया को और भैंसिया को ले गए, रस्सी जो है वह लई वह नल में बांध दी और
1: हाँ
0: वहाँ पानी भर रहे हैं और हो ही बाकी ले नभा रहे हैं।
1: नभा रहे हैं
0: तो अगर नभाने हैं तो भैया दूर नभा लें, क्योंकि वो गंदो पानी उसी के माध्यम से, जो पाइप है ना उसको, उसके माध्यम से जमीन में जाते हैं और फिर वो ऊपर का।
1: हाँ
0: तो एक तो इस बात को ध्यान रखें, दूसरा अगर हम जल वहां से भर करके लेके आ रहे हैं तो एक घड़े में ढक के रख दें और फिर दूसरे बर्तन से लेकर के पिए, वो हमारे लिए स्वास्थ्य का बहुत अच्छा साधन है। अब जो
1: बिल्कुल
0: हमारे घरेलू नल हैं, घरेलू पे जो नल लगे हुए हैं, उसका पानी जो है वो उथला है, इतनी गहराई का पानी नहीं है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमारे भैया बहनों को।
1: बिल्कुल। और स्वच्छ पानी पियेंगे तो बीमारियों से दूर भी रहेंगे।
0: अगर बीमारियों से दूर रहेंगे तो भैया हम अपना दैनिक कार्य भी सही से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: खैर, आज जो है ज्यादा बात ना करते हुए आइए वार्ता सुनवा देते हैं। वृक्ष धरा के आभूषण जिसे प्रस्तुत कर रही
1: वृक्ष
0: हैं
1: हमारी
0: रेणु।
1: धरती का आभूषण है, यह बात अपने आप में बिल्कुल सत्य है। वृक्ष अपने आप में अनेकों अनेक खूबियां समेटे हुए हैं, जिसे कि आप और हम सभी भली भांति जानते हैं कि जिस धरती पर मानव जीवन व्यतीत करता है, श्वास लेता है, उसका एकमात्र जरिया पेड़ पौधे ही हैं। पेड़ पौधों के होने से ही इस धरा पर मानव जीवन संभव हो पाया है, अन्यथा वृक्षों के अभाव में इस धरा पर मानव जीवन असंभव है। पेड़ मानव को ही नहीं अपितु पशु पक्षी को भी आश्रय प्रदान करते हैं। यदि हमारी इस धरा पर पेड़ नहीं होंगे तो जीवन की भी कल्पना नहीं की जा सकती। वृक्ष हमारी धरा के बहुमूल्य आभूषण हैं। पेड़ पौधे पुष्पों को लेकर हमारे कवियों ने प्रकृति में डूबकर उस पर अनेक कविताएं लिखी हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में मनुष्य जाति को वृक्षों की तरह बनने पे जोर दिया है। जिस प्रकार वृक्ष स्वयं तेज धूप, तेज आंधी, वर्षा इत्यादि कष्ट सहन करके भी मजबूती से खड़े रहकर मानव को शीतल छांव और शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को भी बनना चाहिए। वृक्ष हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, फल फूल और मानव की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमें अपनी धरती को हरा भरा रखने के लिए कुछ उपाय करने होंगे, जिसमें कि विशेष योगदान मानव को ही देना होगा। पेड़ों से हमें स्वच्छ शीतल वायु मिलती है, हम पेड़ों की छत्र छाया में स्वस्थ रहते हैं। तो ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमें वृक्षारोपण के विषय में कुछ सोच विचार करना चाहिए कि हम किन किन उपायों से जगह जगह पेड़ों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। किंतु मनुष्य अपने कुछ निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु भौतिक साधनों के वशीभूत होकर पेड़ों को कटवाता जा रहा है, लेकिन इसके भयावह परिणाम का शायद अंदाजा नहीं है। लगातार पेड़ों की हो रही कटाई से हमारी धरा पर भूकंप सुनामी जैसी आपदाएं आती जा रही हैं। आपदाओं के रहते हमारी धरा सुरक्षित नहीं है, और अगर यदि इसी तरह पेड़ों का कटान जारी रहा तो एक समय पर बहुत गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो क्यों ना हम अभी समय रहते स्थिति को नियंत्रण में कर लें। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आइए चलें पेड़ों को लगाएं। कहने का तात्पर्य है कि वृक्षारोपण से हमें कई फायदे होते हैं।

0: आइए अब मैं आपको वृक्षारोपण के फायदे से अवगत कराती हूँ। कुछ हानिकारक गैसें जो कि पर्यावरण को दूषित करती हैं, हमारे वृक्ष उन्हें अवशोषित करके हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। हमारे वृक्ष मानव को ही नहीं अपितु पशु पक्षियों को भी भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। गर्मियों के दिनों में तेज धूप से बचाव करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जैसे कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हमें सदैव ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना जीवन संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार के उत्पादों और अन्य वस्तुओं को बनाने में वृक्षों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। पेड़ पर्यावरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। वृक्ष 50% तक एयर कंडीशनर की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। हमारे कुछ गैर सरकारी संगठन हैं जो कि इस कार्य में जुटे हुए हैं। हमारी सरकार को भी उनका समर्थन करना चाहिए। हालांकि हमारी सरकार ने वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, कुछ कानून भी बनाए हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु वृक्षों की कटाई कराते जा रहे हैं। हमें आम जनता को वृक्षों के महत्व को बताकर अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए जागरूक करना होगा। इसका रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से किया जाना चाहिए। शैक्षिक संस्थाओं में भी समय समय पर छात्रों को वृक्षों के महत्व के बारे में बताकर वृक्षारोपण कार्यक्रम कराए जाने चाहिए। वृक्ष हमें औषधि भी प्रदान करते हैं। सेब, देवदार, एलोवेरा, तुलसी अपनी औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न रोगों की रोकथाम हेतु पेड़ों से दवाएं बनाई जाती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आजकल की दौड़ धूप वाली जिंदगी में जिसमें कि अक्सर मनुष्य को तनाव हो जाता है, वह अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसके मानसिक सुकून अच्छे स्वास्थ्य हेतु पेड़ों की छत्रछाया बहुत आवश्यक है। प्रातः सुबह उठकर हरी घास पर चलना चाहिए। सुबह शुद्ध वायु में सैर के लिए जाना चाहिए। सुबह सुबह पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पक्षियों की आवाज मन को अच्छी लगती है। तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। फूलों की सुगंध मन को भाती है। हमारे शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि पेड़ को गले लगाने से भी तनाव कम करने में मदद मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पत्ते वाले पेड़, झरने, नदियाँ, हरी भरी घाटियाँ सभी एक प्रकार के प्राकृतिक उपचार हैं। इससे मानव का तनाव कम होता है, मन भी शांत रहता है। जो लोग पेड़ और प्रकृति के करीब रहते हैं उन्हें रोग कम होते हैं। हमें अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। पार्क में, कॉलोनी में, घरों में, अस्पतालों के बाहर भी पार्क होने चाहिए। शहरीकरण ने लोगों को अपनी संस्कृति से दूर कर दिया है। लोग अपनी निजी जिंदगी में अधिक धन कमाने की लालसा और भौतिक साधनों के प्रति आकर्षण में इतने लिप्त हो गए हैं कि उन्हें स्वयं ही नहीं पता है कि वह अनेकानेक रोगों का व तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्रकृति से प्रेम करिए, अपने आसपास पेड़ों को लगाइए। यह आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपना एक लक्ष्य लेकर चलना है कि हमें इतने वृक्ष एक वर्ष में लगाने ही लगाने हैं, और यह तभी संभव होगा जबकि इसमें हम सब मिलकर योगदान देंगे, वृक्षों को लगाने में अपना समय देंगे, क्योंकि जब पेड़ बचेंगे तभी जीवन बच सकेगा। अंत में मैं वृक्ष की महत्ता को बताते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जीवन का आधार वृक्ष हैं, धरती का श्रृंगार वृक्ष हैं, प्राण वायु दे रहे सभी को ऐसे परम उदार वृक्ष हैं, ईश्वर के अनुदान वृक्ष हैं, फल फूलों की खान वृक्ष हैं, मूल्यवान औषधि देते ऐसे दिव्य महान वृक्ष हैं, देते शीतल छांव वृक्ष हैं, रोके थकते पांव वृक्ष हैं, लाखों जीव बसेरा करते जैसे सुंदर गांव वृक्ष हैं, जनजीवन के साथ वृक्ष हैं, खुशियों की बारात वृक्ष हैं, योगदान इस धरती पर ले आते वरदान वृक्ष हैं, जीव जगत की भूख मिटाते ये सुंदर फलदार वृक्ष हैं, जीवन का आधार वृक्ष हैं, धरती का श्रृंगार वृक्ष हैं।
1: परदेसी सुन लीजियो, अरे मेरी ध्यान देने की बात, अब हाल बता मैं तुमको दानी में गलमा।

चाचा की तारीफ सुनाई दी, लेकिन सुन ले, अरे अब जरा मेरी भी तो सुन ले। तो राजा नल कहने लगे, अरे मोरी की रास्ता बहु जाए ठगनी जो मोरी को जाओ रे, आओ सिगरी झाड़ी ढूंढ फिरे मैदानी एक न पाओ रे, देख ले जाओ खाल हो पहनो, ये तलवार में मेरी बहुत धार।

0: पोतनी एक बात और सुन ले, तेरा चाचा जब इतना बलवान है, ताकतवर है, अगर तेरे चाचा से मुकाबला हो जाए, लड़ाई हो जाए तो
1: हड्डी काटे डंडी बनावे और नसन की ज्योति डारे रे, खाल लिखा रहे पला बनाए ले, मूल को करे पसेरा रे, एते उपाय तकरार करे तो मैं खून की तौल लगाए दूंगो रे।
0: ऐसे ऐसे कर्म कराऊ ना तेरे चच्चा आगे, उन्हें अच्छा तो जा बतावा। मोतरी सोच लगी जो तो कोई बड़ो जलैया मालूम पत्ते है वो, और जो कोई साधारण मनुष्य नहीं है।
1: नाम ता बतैया विदेशी, मोका ग्राम बतैया परदेसी रे अपनो, अटल भूमि को मोका बताए दे ओ नाम, कौन तो देश के विदेशी मेरे रहने वाले, माता रे भी

0: का हाथ में करोगी।
1: हमने कतई ना तुम्हारी समझ लो ना होगा ना बताए तो बहुत बुरी बात हो जाए। अब जल्दी से बताए दे मुझे तो कुछ और मालूम पड़ते है वो तो राजा मल किस प्रकार अपना नाम और ग्राम बतलाते हैं ध्यान दे आप। दरक्षिणपुर नन सार हम

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की। आकाशवाणी का यह बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में गुरुवार दिनांक 16 जुलाई 2026 को सायं 7:31 पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है दुर्घटना।

घटना में घायल मरीज और उनका इलाज, शंकाएं व समाधान, इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे बुधवार दिनांक 15 जुलाई 2026 को सायंग 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास गुप्ता उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है दुर्घटना में घायल मरीज और उनका इलाज, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, बुधवार दिनांक 20 मई 2026 को सायंग 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में 3 गुना हुई प्रदेश के आम नागरिक की आय, 9 लाख लोगों को मिला रोजगार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को गति देगा वन नेशन वन इलेक्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और आषाढ़ मास की अमावस्या पर चित्रकूट में उमड़ी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर की कामदगिरी की परिक्रमा।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। आज लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2017 से अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के कारण देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। आज प्रदेश गन्ना, चीनी और एथेनॉल उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इन 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की।
1: हमने 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को प्रदेश के अंदर 3 गुना से अधिक उनकी उपस्थिति देश के अंदर शासकीय सेवा हो या फिर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कार्रवाई हुई है उनमें उनकी उपस्थिति वहां हुई है। ये आंकड़े वह है जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान के उस संकट से उभारने में मदद की।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी व्यवस्था होगी जो समय, पैसों और संसाधनों की बचत करेगी। बैठक में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच और राष्ट्रहित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है जिसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी और विकसित भारत के संकल्प को गति मिलेगी। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराना देश हित में है। इससे बार बार चुनाव पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम होगा और जनता को भी सुविधा होगी।
2: 1952 से लेकर के 1967 तक देश के सभी पार्लियामेंट्री चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। एक साथ चुनाव होने के नाते समय की बहुत बड़ी बचत हुई और आर्थिक रूप से भी जो आज भारी दबाव पड़ रहा है बार बार के चुनाव से, उससे उस समय राहत थी हमारे देश के भीतर। वन नेशन वन इलेक्शन का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ हों तो देश की विकास की गति तेजी से बढ़ेगी और आर्थिक गति भी उससे बढ़ सकती है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 30वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस समारोह में 279 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। इस दौरान उत्कृष्ट शिक्षकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों और स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ नारायण प्रसाद को गवर्नर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाएं चला रही है जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने R3 भाषा मूल्यांकन का फ्रेमवर्क जारी किया है जिसके तहत तीसरी भाषा यानी R3 का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर की आंतरिक परीक्षाओं के जरिए किया जाएगा। इस साल R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि जो छात्र R3 पास नहीं कर पाते हैं उन्हें भी 10वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन 10वीं कक्षा में रहते हुए उनके लिए इसे पास करना आवश्यक होगा। CBSE ने स्पष्ट किया कि 8वीं कक्षा वाला 3 भाषाओं का कॉम्बिनेशन 9वीं कक्षा में भी जारी रहेगा और इनमें से किसी एक को R3 के तौर पर चुना जाएगा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एंटी करप्शन कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। पुलिस की टीम कल सुबह इनकी कस्टडी लेकर पूछताछ करेगी। वहीं आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर आज अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस चिपका दिया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण में OSD महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 3 जुलाई को जारी नोटिस के बावजूद लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा की ओर से कोई पत्रावली या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अब ADA ने उन्हें 15 जुलाई तक मानचित्र और अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि निर्धारित समय तक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
3: इनकी पत्नी सुप्रिया जी हैं, उनके द्वारा एक निर्माण किया गया है और उस निर्माण का नक्शा हमारे यहाँ से स्वीकृत नहीं है, इसीलिए जब चालानी कार्रवाई प्रस्तुत की गई JEE के द्वारा तो उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई। पहली नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हुई इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई जिसमें 15 तारीख नियत। अब ये प्रोसीडिंग है जो नगर नियोजन अधिनियम 1973 है उसकी

0: अगली कार्रवाई की जाएगी।
1: सुप्रीम कोर्ट की पहल पर वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के उद्देश्य से आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दोनों पक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं के साथ संबंधित पक्षकार भी मौजूद रहे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद भी किसी प्रकार की सहमति नहीं बन सकी और वार्ता बेनतीजा रही। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी विवाद का अंतिम समाधान न्यायालय के निर्णय से ही संभव है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: भी सुन सकते हैं। चित्रकूट में आज आषाढ़ मास के अमावस्या मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी की परिक्रमा की। पेश एक रिपोर्ट।
1: आषाढ़ मास की अमावस्या के अवसर पर आज सुबह से ही चित्रकूट में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और भगवान मदगजेंद्रनाथ और कामतानाथ मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों और मठों में जाकर देवी देवताओं के दर्शन किए। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा का सिलसिला भी पूरे दिन जारी रहा। भक्तों की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र और आसपास के इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरों की मदद से की जा रही है। रामघाट, निर्मोही अखाड़ा, टेम्पो स्टैंड, यूपीटी तिराहा, चित्रा गोकुलपुर, परिक्रमा मार्ग तथा मेला क्षेत्र के अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 में हितधारकों को सुविधाएं देने के लिए इसके प्राविधानों में संशोधन किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: SOP संशोधन के अनुसार अब होम स्टे प्रतिष्ठान में कम से कम एक और अधिकतम 8 कमरे पंजीकृत कराए जा सकते हैं। 9 कमरों से अधिक भवन वाली इकाइयां इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 16 बिस्तरों वाली डॉर्मेट्री भी इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र इकाई मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑटो रिन्यूअल पंजीकरण समाप्ति की तिथि से 3 माह पहले पोर्टल पर कराया जा सकेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल ने सभी प्राधिकरण और विभागों को EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीनें चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। आज इस संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और सतत परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों के साझा प्रयासों से प्रदेश में आधुनिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जाए। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस दौरान उमस भरी गर्मी की स्थितियां बने रहने का भी अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में 3 गुना हुई प्रदेश के आम नागरिक की आय, 9 लाख लोगों को मिला रोजगार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को गति देगा वन नेशन वन इलेक्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और आषाढ़ मास की अमावस्या पर चित्रकूट में उमड़ी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर की कामदगिरी की परिक्रमा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय है प्रीटर्म अथवा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार।

0: अंगवार हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
1: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
0: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
1: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
0: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर HFNC और ईयर वो मशीनें।
2: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
0: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर क्रिटिकल थेरेपी हाइपोथेरेमिया।
1: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
0: साथ ही बच्चों में पीलिया सेप्टिक इन्फेक्शन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD
0: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
1: गंगवार हॉस्पिटल
0: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
3: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आज का विषय है बच्चों में दिमागी बुखार, कारण, लक्षण और उपचार। इस विषय पर बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब को। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब।
4: श्रोताओं नमस्कार।
3: और तो इस विषय पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान डॉक्टर साहब से पा सकते हैं। हमारा नंबर है 2517200। तो कॉल हमारे श्रोता जब तक करेंगे उससे पहले हम जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की तरफ से कि डॉक्टर साहब दिमागी बुखार आखिरकार, सबसे पहले तो यही सवाल आएगा कि दिमागी बुखार है क्या ये?
4: देखिए दिमागी बुखार जिसको हम लोग इंग्लिश में मेनिनजाइटिस बोल सकते हैं
3: जी,
4: या ब्रेन फीवर बोलते हैं उसको एन्सेफलाइटिस बोल सकते हैं। और दिमागी बुखार का मतलब बुखार है, साथ में दिमाग की कुछ लक्षण है। तो दिमागी बुखार के लक्षणों में जैसे बच्चे का होश में ना रहना, या बच्चे को दौरे पड़ना, या बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, इरिटेबल हो जाए, बच्चा दूध पीना छोड़ दे, या बच्चे को लगातार उल्टियाँ होना, अगर बच्चा बड़ा है तो उल्टियाँ हो सकती हैं, सिर दर्द हो सकता है। जो छोटे बच्चे हैं वो दूध पीना छोड़ देते हैं, तेज बुखार होता है और उनको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं।
3: अच्छा।
4: और बच्चा पूरे होश हवास में नहीं होता है, चूँकि इन कंडीशंस में दिमाग पे लक्षण होते हैं, दिमागी लक्षण होते हैं, साथ में बुखार होता है, इसलिए इसको दिमागी बुखार होते हैं।
3: अच्छा।
4: बेसिकली दिमागी बुखार 3-4 तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मेनिनजाइटिस बोलते हैं, वो अक्सर बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस होती है। तो उसमें डिफरेंट जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो दिमागी बुखार को करते हैं। दूसरी कंडीशन है एन्सेफलाइटिस, इसको ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, उसमें दिमाग के अंदर इन्फेक्शन होता है। मेनिनजाइटिस में दिमाग के चारों तरफ जो हमारी झिल्लियाँ होती हैं, इनको मेनिनजिस बोलते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है।
3: अच्छा।
4: तो और तीसरी चीज होती है दिमाग पे TB का भी असर हो सकता है। यह कुछ बुखार ऐसे हैं जो दिमागी बुखार जैसे लगते हैं, उनको हम लोग एक्यूट फेब्राइल एन्सेफलोपैथी बोलते हैं, जिसमें कि ब्रेन में कोई ज़्यादा कमी नहीं है लेकिन फिर भी ब्रेन अफेक्टेड होता है। जैसे कि एंट्रिक फीवर है जिसको हम लोग टाइफाइड फीवर बोलते हैं या म्यादी बुखार बोलते हैं, तो वो भी दिमाग पे अफेक्ट कर सकता है। ऐसे कुछ और कंडीशंस हैं जैसे कि मलेरिया है, सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है, जैसे कि मलेरिया का असर दिमाग पे आ जाए बुखार मलेरिया की वजह से, या छोटे बच्चों में जो 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारे वायरल फीवर्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चे को दौरे पड़ जाते हैं, जिनको हम लोग फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं, लेकिन
3: अच्छा।
4: वो दिमागी बुखार नहीं होता।
3: अच्छा।
4: उसमें बुखार आया बच्चे को दौरा पड़ गया, उसके बाद बच्चा करीब करीब नॉर्मल हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, उसे बुखार है और वो अच्छा होश हवास अच्छा

0: नहीं है, या बच्चे गफलियत में सेंसोरियम उसका खराब है, या बच्चे बहकी बहकी बातें कर रहा है, या बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, बच्चे उल्टियाँ हो रही है, सिर दर्द है बच्चे को, तो ये दिमागी बुखार के लक्षण हो सकते हैं।
1: अच्छा, तो सामान्य बुखार से इस तरह से वो अलग कर सकते हैं इस दिमागी बुखार को।
0: बहुत सिंपल है,
1: जी।
0: बुखार है, तेज बुखार है, साथ में दिमाग के लक्षण है।
1: दिमागी
0: जो
1: लक्षण।
0: हमारा दिमाग का काम होता है सोचना समझना, अगर वो अफेक्टेड है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा बता नहीं पाते तो वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, दूध पीना छोड़ देते हैं, या फिर वो बेहोश हो जाते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं।
1: तो ये बुखार एक ही समय काफी 104 डिग्री के आसपास रहेगा, तेज बुखार रहेगा, या लंबे समय तक रहता है?
0: देखिए दिमागी बुखार की खास बात ये होती है कि बुखार रहता है उसमें,
1: अच्छा,
0: बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाता है।
1: भले ही 100 101 के
0: हाँ
1: आसपास
0: जो
1: रहे।
0: भी है,
1: अच्छा।
0: और जो हमारे फेब्राइल सीजर्स हैं उसमें तेज बुखार तो होता है, लेकिन उसको बुखार हुआ, दौरा पड़ा, उसके बाद बच्चा सामान्य सा हो जाता है, वो बच्चा दूध भी पीता है, होश आवाज में भी आ जाते हैं। तो फेब्राइल सीजर्स को छोटे बच्चों में अलग करना होता है दिमागी बुखार से। जी
1: तो इसको कैसे जानेंगे? जैसे हमारे श्रोता काफी दूर दराज के गांव देहात में भी रहते हैं, तो कैसे शुरुआती लक्षण क्या समझेंगे, कैसे जानेंगे कि हाँ अब ये इसको थोड़ा सीरियस मामला है, इसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या फिर टेस्ट वेस्ट कराने पड़ेंगे?
0: जी
1: जी
0: देखिए दिमागी बुखार की जो शुरुआत होती है वो बुखार से होती है।
1: हाँ
0: तो बच्चे को बुखार आया, बुखार तेज भी हो सकता है, या कई बार बुखार बहुत तेज नहीं भी होता
1: नहीं
0: है
1: होता है।
0: ना। तो बुखार हुआ, साथ में बच्चे ने दूध पीना कम कर दिया, तो बच्चा होश आवाज नहीं, बच्चा सुस्त हो गया, या बच्चे को दौरे पड़ने लगे, है बच्चा लगातार उल्टियां कर रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, या बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत इरिटेबल क्रैंकी बच्चे हो जाते हैं, जो कि ना दूध पीते हैं, बस रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और
1: जी
0: बुखार होता है साथ में, तो
1: जी
0: इन
1: सर
0: बच्चों को दिमागी बुखार हो सकते हैं।
1: जी, हमारे साथ एक श्रोता जुड़ रहे हैं।
0: हेलो,
1: जी
0: हाँ
1: हेलो, अपना शुभ नाम बताएं।
2: जी, नमस्कार,
1: नमस्कार
2: मैं बिसौली से बात कर रही हूँ
1: जी।
2: और मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी।
1: जी डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, आप अपना सवाल पूछिए।
2: ऐसा है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना सर,
1: जी
2: तो वो उनके जैसे बुखार हो जाता है तो बहुत कई बार डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चे का जो बुखार है वो बहुत तेज है और दिमाग पर चढ़ गया है, तो ये दिमागी बुखार क्या होता है सर?
0: अगर आप प्रोग्राम सुनेंगे तो इसके बारे में हम बता भी चुके हैं, आपने पूछा है, चूंकि हम फिर बता देते हैं। कोई भी बच्चे को जिसको बुखार है, साथ में कुछ लक्षण ऐसे हैं जो दिमाग से रिलेटेड है, जैसे कि बच्चे का होश आवाज होना, बच्चे का बातचीत करना, या बच्चे को दौरे पड़ने, लगातार उल्टियाँ हो रही है, तेज बुखार है, सिर दर्द हो रहा है, बच्चा बेहोश हो गया, तो ये दिमागी बुखार हो सकता है। दूसरा, एक छोटे बच्चों में, 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में एक कंडीशन और होती है जिसको हम लोग फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं। तो फेब्राइल सीजर्स में बच्चा एक बार बुखार के साथ उसे दौरे पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो होश में आ जाता है और दूध भी पीता है, और अगर आप उसे बुखार कम करने की दवाई देते हैं तो ऑलमोस्ट ठीक सा लगने लगता है।
1: जी, और
2: तो
1: कोई?
2: सर इसमें जो है हमें मतलब दवाई कैसी देनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही देनी चाहिए, या फिर अगर जैसे घर में रखी हुई दवा होती है बुखार की
0: देखिए
2: वो ले
0: बुखार,
2: सकते
0: हाँ
2: हैं?
0: नहीं, बुखार की दवाई तो आप कभी भी दे सकते हैं, कोई सा भी बुखार हो, लेकिन
2: लेने से
0: बुखार
2: पहले
0: की
2: अगर
0: दवाई
2: मतलब
0: देने के
2: अगर
0: बाद
2: मतलब
0: आप घर
2: खांसता
0: पे
2: हूँ
0: नहीं
2: कभी
0: बैठेंगे,
2: भी।
0: उसके बाद आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा।
1: आप
0: और अगर दिमागी बुखार है तो वो घर पे ठीक भी नहीं हो पाएगा, वो उसके लिए तो आपको एडमिट होना ही पड़ेगा, भर्ती होना पड़ेगा अस्पताल में,
1: जी
0: और उसके लिए हम तो सलाह देंगे कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे अस्पताल में भर्ती होइए, क्योंकि दिमागी बुखार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब दिमाग पे सूजन या इन्फेक्शन होता है तो बच्चे को दौरे पड़ते हैं, और तो कई बार दौरे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं तो उस कंडीशन में बच्चा सांस रोकने लगता है, या उसके दिमाग के अंदर सूजन ज़्यादा आ जाती है, तो उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से बच्चे कभी भी सांस रोक सकता है। तो दिमागी बुखार एक ऐसी तकलीफ नहीं है जिसका आप घर पे इलाज कर लो बुखार की दवाई देके, वो तो आपको दिखाना पड़ेगा, और अगर दिमागी बुखार है तो उसको भर्ती भी करना पड़ेगा।
1: जी,
2: अच्छा, मतलब इसको बहुत
1: सीरियस लेने की
2: इतना
1: जरूरत है।
2: हल्का नहीं लेना चाहिए कि बहुत हल्का सा बुखार है और ठीक हो जाएगा, लेकिन मतलब पूरी प्रॉपर जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: चलिए
1: जी,
2: सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो शायद मोहतरमा पूछना चाहती थी कि घरेलू उपचार चाहे प्राथमिक रूप से क्या करें, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते जाते भी समय कुछ लग जाएगा, तो ऐसी स्थिति में
0: देखिए घरेलू उपचार आप बुखार का कर सकते हैं, दिमागी बुखार का घरेलू उपचार नहीं हो सकता,
1: नहीं हो सकता।
0: तो आप अगर बुखार है बच्चे के लिए, उसके लिए आप

0: स्पंजिंग कर सकते हैं, ताजे पानी से पट्टियां रख सकते हैं, और खास तौर से पट्टियां या उसको आप जो स्पंजिंग करेंगे तो वो बगल में जरूर उसको रखें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है वो बगल से है, पेट के ऊपर है, चेस्ट के ऊपर है, और ग्रोइन एरिया मतलब जांग, वो जांग और उसके ऊपर के हिस्से। जो हम लोग करते हैं कि पट्टियां सिर्फ माथे पे रख देते हैं वो एक गलत है, उससे बुखार नहीं उतर सकता। तो मेरा श्रोताओं को ये रहेगा कि अगर बच्चे को बुखार है, तेज बुखार है, आप पट्टियां करना चाहते हैं तो एक तो ताजे पानी की पट्टियां करें, ठंडे पानी की पट्टियां ना करें, और दूसरा उसके पूरे शरीर पे करें, ये नहीं करें कि सिर्फ माथे पे पट्टियां रख दें, जैसे कि हमारी फिल्मों में होता है कि माथे की पट्टियां रख दी और हीरो का बुखार उतर जाता है।
1: बिल्कुल। तो इसमें सवाल ये भी है कि होता क्यों है दरअसल ये?
0: देखिए दरअसल दिमाग पे इन्फेक्शन हो सकता है, वो चाहे बैक्टीरियल हो या वायरल हो या कोई और इन्फेक्शन हो
1: जी।
0: तो जब भी या फिर कोई केमिकल्स या टॉक्सिन्स भी होते हैं जिनकी वजह से एंसेफलोपैथी होती है, तो ये दो तीन कंडीशन है, एंसेफलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, एंसेफलोपैथी है, या फिर सेरेब्रल मलेरिया है, या एंट्रिक एंसेफलोपैथी है, या कई बार बच्चे जॉन्डिस होते हैं उनको जॉन्डिस बहुत ज्यादा हो जाता है, जब जॉन्डिस का असर दिमाग पे होने लगता है तो हेपेटिक एंसेफलोपैथी। तो एंसेफलोपैथी, एंसेफलाइटिस, मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया, ये कोई भी कारण की वजह से बच्चे का होश हवास या दिमाग की टीवी, तो इन चीजों को हमें अलग अलग करना होता है और ये देखना होता है क्या है, उसी हिसाब से फिर बच्चों का इलाज होता है।
1: तो ये बैक्टीरिया या वायरस किसी भी चीज से हो सकता
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: और ये कहीं से भी हो सकता है, इसका कोई खास वजह नहीं है कि इस वजह से है, कभी भी हो सकता है। और इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक की बात आती है
0: जी,
1: तो जैसे बहुत सारे रोगों में रोगों की डायग्नोस्टिक की जाती है
0: जी, जी।
1: उसके बाद वो पॉजिटिव या निगेटिव, तो इसमें कुछ होता है टेस्ट इस तरह
0: जी? जो दिमागी बुखार की जांच है वो उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है कि बच्चे का CSF किया जाए, जिसको अच्छा। हम बोलते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ये रीढ़ की हड्डी की जांच भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के उसमें ये देखते हैं कि अगर हमें कोई बैक्टीरिया मिल जाए ग्राम स्टेनिंग में, या फिर हम कोई जांच इस तरह से करा सकते हैं PCR टेस्ट की, उसमें हमें कुछ वायरस मिल सकते हैं, या फिर ऑटोइम्यून प्रोसेस की वजह से भी एंसेफलाइटिस हो सकती है, या हम ब्लड की जांच कराएं तो उसमें जो मेनिंजाइटिस होती है उसमें हमारा TLC काउंट्स बढ़ जाता है, और पॉलीमॉर्फ यानी एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाती है, या TBM की तकलीफ है तो ब्लड में कई बार ESR बढ़ा हुआ होता है, लिम्फोसाइटोसिस होती है, और आपका एक्सरे चेस्ट कराने पे आपको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में पता लग सकता है, या आप फैमिली हिस्ट्री पूछें तो फैमिली हिस्ट्री में किसी न किसी को TB की तकलीफ होती है, कई बार माता पिता में किसी को या दादा दादी नाना नानी में TB की तकलीफ है, उनको खांसी रहती है, बच्चा उनके संपर्क में गया तो वहां से बच्चे को TB हो सकती है, और TB के साथ फिर दिमाग की TB हो सकती है, या फिर ऐसी एक और कंडीशन बहुत कॉमनली देखी जाती है, वो लगती दिमागी बुखार जैसी है लेकिन दिमागी बुखार नहीं होता, जैसे कि न्यूरोसिस्टिसकोसिस, जिसमें कहते हैं कीड़े की गांठ दिमाग में, तो इन बच्चों को भी कई बार बुखार होता है, वो बुखार हो सकता है दौरे पड़ने की वजह से होता है, तो ये बच्चे अक्सर आते हैं सिर दर्द, उल्टी और दौरे पड़ते हुए और बेहोशी की हालत में, तो इसको फिर आप जांच करानी पड़ती है आपको MRI ब्रेन का, तो MRI से आपको इसके बारे में पता लग जाता है, तो CSF है, MRI है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस के लिए आप CBNET जांच है या जीन एक्सपर्ट है वो करा सकते हैं, बाकी ब्लड में आप ब्लड कल्चर करा सकते हैं, तो जो बैक्टीरिया कॉमन बैक्टीरिया है जो मेनिंजाइटिस करते हैं वो उसमें से एक तो निमोकोकल बैक्टीरिया जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकल भी बोलते हैं, या दूसरा बैक्टीरिया H इन्फ्लुएंजा, और तीसरा बैक्टीरिया है आपका स्टेफ है, और फिर ये बैक्टीरिया है जो कॉमन आपको मेनिंजाइटिस करते हैं, H इन्फ्लुएंजा और निमोकोकल, और बाकी फिर अनकॉमन बैक्टीरिया जो कि आपको मेनिंजाइटिस कर सकते हैं, और न्यूनेट्स जो नवजात शिशु है उनमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी मेनिंजाइटिस कर सकते हैं, और बहुत सारे जो सेप्सिस के बच्चे होते हैं, न्यूनेटल सेप्सिस के बच्चे होते हैं, जो कहते हैं हिंदी में जहरवाद हो गया, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, तो उनमें से करीब एक तिहाई बच्चे जो सीवियर सेप्सिस के होते हैं उनमें दिमाग पे भी उस इन्फेक्शन का असर होता है, मेनिंजाइटिस होती है, तो वहाँ पे भी वो CSF की जानकारी करना रीढ़ की हड्डी पानी जांच लेके उसका हम लोग कल्चर भी करा सकते हैं। अगर ट्यूबरक्लोसिस के बारे में

0: पूछें तो उसका जीन एक्सपोर्ट करा सकते हैं और साइटोकेमिस्ट्री कराते हैं, तो उन जांचों से काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि किस तरह का बैक्टीरिया, किस वायरस। और इपिडेमिक्स में जो आता है वो अक्सर आता है आपका, जैसे कि जापानी बुखार भी बोलते हैं इसको, जापानी इंसेफ्लाइटिस। वो अपने प्रदेश में ईस्टर्न यूपी में काफ़ी उसके बच्चे देखे जाते थे, आजकल उसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है तो उसके इंसिडेंस थोड़ा कम हो गया, कम बच्चे देखने को मिल रहे हैं।
1: जी, एक
0: और
1: कॉलर है हमारे
0: जी
1: साथ। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो
0: जी
2: हेलो नमस्कार
1: नमस्कार,
2: नमस्कार।
1: बताइए।
2: हाँ डॉक्टर साहब, हमें दिमागी बुखार के बारे में जानकारी चाहिए थी।
1: जी,
0: हाँ आप प्रोग्राम सुनिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी दिमागी
1: आप
0: बुखार के
1: कहाँ
0: बारे
1: से
0: में।
1: बोल रहे हैं और
0: कौन
1: अपना
0: बोल रहे
1: शुभ
0: हैं?
1: नाम बताइए।
2: हम बोल रहे हैं बरेली से। हमारा
1: हाँ, और आपका नाम?
2: नाम है जुनैद।
1: जी जुनैद जी, तो दिमागी बुखार के बारे में अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हो तो डॉक्टर साहब
0: जी
1: ने कई सारी जानकारियां बताई हैं। कुछ और अगर आप
0: हाँ,
1: कुछ अलग
0: कोई
1: सवाल
0: आप
1: हो।
0: अलग से कुछ जानना चाहते हो, जैसे कि बहुत सारे दिमागी बुखार में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या उनके बारे में जानना चाहते हैं, और या किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं दिमागी बुखार से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं।
1: जी
2: तो जैसे अगर मान लो किसी को बुखार आ रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि दिमागी बुखार है या साधारण बुखार है?
0: देखिए, दिमागी बुखार में बुखार के साथ ऐसे लक्षण मिलेंगे जो कि दिमागी बुखार का संकेत करते हैं, जैसे कि बच्चे का होश हवास नहीं होना, बच्चे को दौरे पड़ना, बच्चे को लगातार उल्टियाँ होना। अगर बच्चा छोटा है तो वो बच्चा लगातार रो सकता है, बहुत इनकॉन्सेबल क्राई होता है, मतलब लगातार बच्चा रोता जाता है, दूध नहीं पीता है, या दूध पीता है तो उल्टियाँ करता है, और बच्चे का होश हवास भी अच्छा नहीं होता, बच्चा सुस्त होने पड़ता है, कई बार बच्चा बेहोश भी हो सकता है। तो ये तो बच्चों में, या जैसे बड़े बच्चे हैं तो उनके उसको नेग्लिजिबिलिटी बोलते हैं, उनकी गर्दन अकड़ सकती है ना, गर्दन को वो आगे अगर आप उसको ठोड़ी लगा लें अपने चेस्ट, तो वो नहीं लगा पाते। दूसरा तो नेग्लिजिबिलिटी, ऐसी एक और साइन होता है जिसको कनिक साइन बोलते हैं, या फिर हम किसी घर में वाली है आपका, किसी माता पिता को, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है और बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस हो गई, तो उसकी वजह से भी दिमाग की टीबी हो सकती है। या कई बार खसरे के जो बच्चे होते हैं, खसरा है या मम्स है जिसको कनबड़ बोलते हैं, या खसरे को बोलते हैं, माता बोलते हैं, उसमें भी दिमाग पे बुखार हो सकते हैं और एंसेफ्लाइटिस हो सकती है। डेंगू बुखार में भी एंसेफ्लाइटिस हो जाती है, तो डेंगू बुखार है, जापानीज एंसेफ्लाइटिस है, या और कुछ वायरस हैं। तो
1: जी
0: आपने बहादुरी के साथ क्या फतेह किया?
2: केवल सर नाम ही है हमारा, फतेह नाम ही।
1: जी, थैंक यू कॉल करने के लिए। प्रोग्राम सुनिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हैं, थैंक यू। तो कितना खतरनाक है ये भी हमने श्रोताओं को बताया,
0: जी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं,
1: कॉम्प्लिकेशंस। जी
0: और वो कॉम्प्लिकेशन में आपका न्यूरोलॉजी का कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कुछ बच्चों को सुनाई पढ़ना बंद हो जाता है, कुछ को दिखाई पढ़ना बंद हो जाता है, कुछ चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, डिसेबल्ड हो जाते हैं, कुछ बच्चों को मेंटल लेवल से IQ कम हो जाता है ना। तो एक तो समय से इलाज हो, दूसरा सही जगह इलाज हो, तीसरा सही जाँच हो।
1: सही
0: तीर
1: जांच।
0: तुक्के का इलाज नहीं है कि ये दवाई लगा दी, इंजेक्शन लगा दिया, ग्लूकोज चढ़ा दिया, वो इलाज नहीं है। तो मेरा श्रोताओं से, हम चूंकि हम लोग बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो अगर दिमागी बुखार आपको जरा भी लगता है कि हमारे बच्चे को, तो प्लीज गांव में बिल्कुल इंतजार ना करें, आप अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, प्रतिशतता इसकी कितनी है इस रोग की? जैसे कुछ रोग बड़े आम हो जाते हैं, बहुतायत से लोगों में फैलते हैं, इसकी प्रतिशतता कितनी है? रेयर है
0: प्रतिशतता
1: या?
0: तो नहीं, देखिए रेयर भी नहीं है और बहुत
1: अच्छा
0: ज़्यादा कॉमन भी नहीं है। हाँ
1: अच्छा
0: एंसेफ्लाइटिस जब होती है तो एपिडेमिक में आती है, मतलब जैसे कि पूरा बहुत जापानी एंसेफ्लाइटिस जब फैलती है तो गांव में पता लगा 5 बच्चे खत्म हो गए, 10 बच्चे खत्म हो गए किसी किसी गाँव में। अभी आपने बिहार में सुना होगा चमकी बुखार, पिछले साल 1-2 साल पहले हुआ था, तो वो भी
1: बिल्कुल।
0: एक तरह की एंसेफ्लाइटिस थी, उसमें बहुत सारे बच्चे खत्म हुए। आपने सुना होगा गोरखपुर और उस साइड में दिमागी बुखार फैलता है, तो
1: जी,
0: उसमें बहुत सारे बच्चे निपट जाते हैं।
1: तो हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हैं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए डॉक्टर साहब। प्रतिशतता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे।
0: देखिए बहुत ज्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि काफी कॉमन है, और अगर जैसे हम लोग टर्सरी लेवल पे बैठे हुए हैं, हमारे पास तो फिल्टर लग के बच्चे पहुंचते हैं ना,
1: बिल्कुल। हाँ
0: तो बहुत सारे बच्चों में हम लोग देखते हैं, लेकिन उतना कॉमन है नहीं जितना कॉमनली हम देखते हैं, क्योंकि दिमागी बुखार के अल्टीमेटली बच्चे वो मतलब आपको बहुत गंभीर हालत में और बहुत देर से हम लोगों के पास पहुंचते हैं।
1: तो दिमागी बुखार के बारे में

0: डॉक्टर कुलदीप गंगवार बाल रोग विशेषज्ञ हमारे साथ थे और उन्होंने दिमागी बुखार के बारे में तफसील से जानकारियां दी, हमारे कई सारे श्रोताओं के शंकाओं का भी समाधान किया। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
2: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप, वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें।
3: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
2: खास तरह के वेंटिलेटर, HFO ऑक्सीलेटर, क्रिटिकल थेरेपी, हाइपोथेरेमिया।
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
2: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD।
2: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
3: गंगवार हॉस्पिटल,
2: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
3: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
4: रेडियो हेल्पलाइन, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी विषय पे होने वाला ये कार्यक्रम। विशेषज्ञ थे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: कर्जदारों का कर्ज चुकाते हैं।
1: तो श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर आज की कहानी से संबंधित अनुभवों को हमसे साझा करें। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति। तब तक के लिए नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज के हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और हिंदी साहित्यकार। इस विषय पर डॉक्टर अमिता दुबे से बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
3: परिवार, समाज और राष्ट्र, यह ऐसे शब्द हैं जो हमारे जीवन को सुचारू संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में कार्य करता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सदियों सदियों तक के लिए जाने जाते हैं और उसी बनाए गए रास्ते पर लोग चलने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही संस्थान एक हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और हिंदी साहित्यकार,

0: इनका क्या आपस में समन्वय है, क्या हमारे लिए ये दे सकते हैं, समाज के लिए दे सकते हैं, उसको जानने समझने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अमिता दुबे जी को, जो कि प्रधान संपादक हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की। डॉक्टर साहब, स्वागत करते हैं स्टूडियो में।
1: जी नमस्कार।
0: संस्थान तो बहुत होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान औरों से अलग किस रूप में है?
1: 30 दिसंबर 1976 को, सौभाग्य से ये हिंदी संस्थान का 50वां वर्ष है। 30 दिसंबर 1976 को हिंदी संस्थान की स्थापना हुई और ये स्वायत्त शासी संस्थान है जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है और सूचना विभाग की एक हिंदी समिति और केंद्र सरकार की हिंदी ग्रंथ एकेडमी को समेकित करके उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई। जिन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना हुई उनमें से मुख्य उद्देश्य ये था कि ये उत्तर प्रदेश है जो हिंदी का वर्चस्व वाला प्रदेश माना जाता है। वर्चस्व इस नाते कि यहाँ सभी भाषा भाषी क्षेत्रों के लोग रहते हुए भी वो हिंदी को अपनी आत्मा मानते हैं और इस मुख्य उद्देश्य से लेकर इसे हिंदी के नाते देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। हिंदी संस्थान की स्थापना के समय ये संकल्प लिया गया कि ये एक ऐसा संस्थान होगा जिसका कार्य क्षेत्र तो भारत भर होगा और इसकी जो सीमाएं हैं वो विश्व की सीमाओं को भी पार करेंगी, लेकिन इसका केंद्र बिंदु लखनऊ रहेगा और इसकी स्थापना यहाँ हुई और इसे एक भवन मिला जिसे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी भवन के नाम से जाना जाता है।
0: आप जैसे जिम्मेदार जो है, जो स्वायत्तता है इसकी, उसको अक्षुण रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि ये विश्व के पटल पर है, केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, राष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में कार्य क्षेत्र आपका है, तो इतने बृहत्तर क्षेत्र को कैसे समायोजित करने या फिर हिंदी को उसमें प्रखरता से हर जगह फैलाने या फिर जो हिंदी के सेवक हैं उनको शामिल करने का कैसे कर पाते हैं?
1: मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की अपनी प्रकाशन योजनाएं हैं और उन प्रकाशन योजनाओं के अंतर्गत हमने अभी तक लगभग 760 शीर्षक पुस्तकों का प्रकाशन किया है। पूर्व में हिंदी समिति की भी कुछ प्रकाशन थे और हिंदी ग्रंथ एकेडमी के भी कुछ प्रकाशन थे, उनको भी संस्थान ने अपने स्तर पर पुनर्मुद्रित किया और साथ ही नई पुस्तकों का प्रकाशन किया। तो हिंदी संस्थान का उद्देश्य केवल साहित्य को संरक्षित करना नहीं है, वो हिंदी को इस रूप में भी मानती है कि उसका संरक्षण इस रूप में भी बहुत अनिवार्य और आवश्यक माना जाता है कि वो अन्य विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन भी हमारे हिंदी संस्थान से होता है, जैसे जो संदर्भ पुस्तकों के रूप में पढ़ी और जानी समझी जाती हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, मतलब नए साहित्यकार हैं या फिर जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए अवसर की कोई कमी नहीं है, यहाँ से जुड़ते हैं। लेकिन एक चीज खटकती है अब धीरे धीरे, पहले के जो साहित्यकार थे उनमें जो मानक शब्दों का प्रयोग करने की एक शैली हुआ करती थी, अब कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी गिरावट या ये कहें कि उसकी कमी महसूस होती है, तो ये शब्दों के मानकीकरण को लेकर, जो हिंदी के शब्दों की बात कर रहा हूं, उसमें जो क्षेत्रीयता समाहित होती है उसको हिंदी किस रूप में लेता है?
1: देखिए मैं बताऊं कि हिंदी संस्थान ने अवधि कोश का प्रकाशन भी किया है, साहित्यिक ब्रजभाषा कोशों का प्रकाशन किया है, तो इनके माध्यम से हम लोग बोलियों को संरक्षित करने की दिशा में भी कार्य निरंतर करते रहते हैं। अब बोलियों की बात तक हम सीमित नहीं रह गए हैं, जब हम तकनीकी से जुड़ते हैं तो हम तकनीकी से जुड़ के अन्य विदेशी शब्दों के समावेश को भी हिंदी में देखते हैं। जब हम विश्व पटल पर हिंदी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें विश्व की संभावनाओं के साथ जुड़ते हुए अपनी भाषा की समृद्धि को भी देखने की आवश्यकता भी है। और भाषा तो बहता नीर है, नदी की तरह है, कल कल कल कल कल कल बहती नदी की तरह भाषा है, और जब भाषा अपने अंदर सभी को समाहित करते हुए आगे बढ़ती है तो वो निश्चित रूप से एक सुंदर रूप में सामने आती है। और साहित्य और भाषा का संबंध कालखंड से भी होता है, जैसे जैसे हम उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं हमारी भाषा का परिष्कार दूसरी दिशा में बढ़ता जाता है, लेकिन हमें अपने अतीत के गौरव को याद करते हुए भविष्य के सपने संजोने चाहिए, तभी हम अपनी भाषा को समृद्ध कर सकें।
0: ये शब्द निश्चल प्रवाहमान रहे इसलिए यह आवश्यक है जो इतनी बातें आपने बताई हैं। लेकिन साहित्यकारों के संदर्भ में एक बात और समझना चाहेंगे हम कि हिंदी संस्थान किन किन साहित्यकारों को, चाहे वो कवि हों या फिर कहानीकार हों या फिर लेखक हों, किसी भी क्षेत्र के हों, तो क्या कुछ उनसे जोड़कर उनको और आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजनाओं का नाम हम समझना चाहेंगे?
1: जी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, जिसके कारण इसे विश्व स्तर तक भी जाना

0: और पहचाना जाता है वो उसकी पुरस्कार योजना है, जिसके अंतर्गत हम विदेशों की बात करें तो हिंदी को समृद्ध करने की दिशा में हम उन साहित्यकारों को सम्मानित कर स्वयं गौरवान्वित होते हैं जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में आगे योगदान दिया है, विश्व स्तर पर योगदान दिया। उन्हें प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान और हिंदी विदेश प्रसार सम्मान से सम्मानित कर हम गौरवान्वित होते हैं। और अन्य भारतीय भाषाओं के जो अपनी 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं और अन्य प्रदेशों में जहां हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रयोग नहीं होती, वे साहित्यकार जो अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग सेतु के रूप में करते हैं अनुवाद के माध्यम से और हिंदी शिक्षण के माध्यम से, उनको हम सम्मानित करते हैं सौहार्द सम्मान से, हिंदी संस्थान के माध्यम से उनको सम्मानित किया जाता है। और मैं युवा साथियों को आपके इस माध्यम से बताना भी चाहती हूँ कि प्रत्येक वर्ष हम लोग ये उत्तर प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने की योजना है, जिसमें हम क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश के निवासी जो युवा हैं 18 से 30 वर्ष की अवस्था वाले, उनको कहानी कविता और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं और उन अच्छी रचनाओं का हम अपनी पत्रिका में प्रकाशन भी करते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, साहित्य भारती त्रैमासिक पत्रिका और बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाणी।
1: ऐसी मानसिकता रही है या ऐसा दृश्य देखने को आता है जब वही साहित्यकार है जो कुर्ता पैजामा पहने हुए है, एक झोला लटकाए हुए है, एकदम फकीर की तरह दिख रहा है साहित्यकार उसमें, लेकिन इस बदलते हुए आर्थिक युग में तो साहित्यकार भी चाहेंगे कि हाँ जो भौतिक चीजें हैं वो उन्हें प्राप्त हों, तो उसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो क्या उनके लिए इस तरफ से जो अच्छे साहित्यकार हो जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हिंदी संस्थान उनकी इस तरफ जो समस्या है उस पर भी ध्यान देता है, यानी कहने का मतलब कि कुछ आर्थिक सहयोग भी होता है?
0: बिल्कुल होता है। जैसे प्रकाशन अनुदान योजना एक योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों को हम स्थान देते हैं और उसके अंतर्गत उन साहित्यकारों की रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए अनुदान दिया जाता है। ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये लेखक को ही अनुदान दिया जाता है, हम प्रकाशकों को अनुदान नहीं देते हैं, लेखक को अनुदान देते हैं जी, जिससे कि लेखक लाभान्वित हो। उन रचनाकारों को अनुदान देने में हम प्राथमिकता देते हैं जिनकी कोई भी कृति प्रकाशित ना और आर्थिक रूप से कमजोर हो, 5 लाख की वार्षिक आय के अंतर्गत जी कंडीशन है। इसी तरह वो साहित्यकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित किया है और रुग्णावस्था में हैं, उनको चिकित्सा की सहायता भी दी जाती है अधिकतम 50,000 तक।
1: अच्छा, 50,000 तक
0: चिकित्सा की सहायता
1: ये हिंदी संस्थान अपनी तरफ से देता है, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं या केंद्र की उसे कोई
0: उसे नहीं लेने देना। ये हिंदी संस्थान की साहित्यकार कल्याण कोष योजना है, क्योंकि हिंदी संस्थान को सौभाग्य है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले उपाध्यक्ष रहे हैं और ठाकुर प्रसाद सिंह जैसे पहले निदेशक रहे हैं और ये श्रृंखला आगे तक बढ़ी है। बहुत स्वनामधन्य साहित्यकारों को हम लोगों ने अपने निकट से देखा है, उनके साथ काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनके द्वारा जो नीति निर्धारक तत्व बनाए गए हैं उनके अंतर्गत ही हम काम कर रहे हैं और प्रयास करते हैं कि जिस संकल्प को लेके हिंदी संस्थान की स्थापना हुई, राजर्षि टंडन के नाम से इसका भवन बना और कीरत भनित भूति भल सोई सुर सरिसम सब कहां हित होई के आर्ष वचन को लेकर हिंदी संस्थान माँ गंगा की प्रतिमा हमारा प्रतीक चिन्ह है, तो ऐसे संस्थान में साहित्य की गंगा ही प्रवाहित हो, ये प्रयास हिंदी संस्थान के माध्यम से हम सबका रहता है और माननीय मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
1: ये भी जानकर सुकून हुआ कि जो विभूतियां रही हैं इस क्षेत्र की उनके अनुसरण करते हुए आप भी चल रही हैं प्रधान संपादक के रूप में। आज आपने समय निकाला, स्टूडियो में आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और हिंदी साहित्यकार। इस विषय पर डॉक्टर अमिता दुबे से बातचीत कर रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है शांभवी मिश्रा के स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं। सबसे पहले प्रस्तुत है सूरदास की भक्ति रचना शांभवी मिश्रा के स्वर में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आपने सुना शांभवी मिश्रा के स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं। संगतकर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं: तबले पर संगत तुषार सहाय की, हारमोनियम पर गिरजेश शर्मा, गिटार सम्राट राजकुमार और मैंडोलिन रमेश कुमार। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए गीत से। फिल्म का नाम है अभिनेत्री।

0: और इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपटी से समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। अब दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या प्रसारित होगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा पाकिस्तान के कब्जे शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब

0: कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंकलॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकलॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और ये फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो

0: जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
1: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document.

0: Respecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline, and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint, and institutional trust.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़क कर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसल कर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है राजा मेहंदी अली खां, संगीतकार है मदन मोहन। फिल्म का नाम है वो कौन।

वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है।

0: वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, धुन है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है संजोग।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है गायक और संगीतकार मदन मोहन की मुनफरिद आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी। फिल्म का नाम आप जानते हैं, दस्तक।

आइए सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतकार है रोशन, फिल्म का नाम है दिल ही तो है।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
7: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मन्ना डे, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, सुधा मल्होत्रा, एसडी ताबिश और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन और फिल्म का नाम है बरसात की रात।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीतकार रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरावाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

सन 1948 में रोशन मुंबई चले आए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक हो गए। खुर्शीद अनवर उन दिनों फिल्म सिंगार को संगीत से सजाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान रोशन की भेंट हुई फिल्मकार किदार शर्मा से, जिन्होंने सन 1949 में रोशन को अपनी फिल्म नेकी और बदी के संगीत निर्देशन की कमान सौंपी। हालांकि फिल्म नेकी और बदी असफल रही, रोशन को अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति का रास्ता मिल गया। इसी दौरान उन्होंने फिल्म बावरे नयन में संगीत दिया। बावरे नयन के निर्माता थे गायक मुकेश।

मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीतकार रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं, बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार।
1: क्रिकेट में क्रिकेट नहीं जमा आपको?
2: नहीं, क्रिकेट नहीं जमा। क्रिकेट थोड़ा सा अच्छा गेम है, हाँ हाँ। पर यह है कि बस क्रिकेट के लिए थोड़ा सा एक खिलाड़ी है, वही बैटिंग आने के लिए काफी देर तक वेट करना पड़ रहा है, और थोड़ा सा
1: कई बार नहीं भी आती है।
2: नहीं भी आती है,
1: हाँ। तो इसलिए आपको ये लगा कि हाँ हॉकी में भाई, हाँ, हमेशा आपको एक्टिव रहना है।
2: एक्टिव रहना है।
1: अच्छा, लेकिन फुटबॉल में भी तो ऐसा होता है?
2: हाँ, फुटबॉल भी खेला है हमने। अच्छा। फुटबॉल जो ऐसे कभी कभी जो बारिश होती थी उसका स्कूलों में, और उसके बाद जो हमारे जो पास के पार्क वगैरह होते थे उसमें हम हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेला करते थे।
1: अच्छा, लेकिन हॉकी को फिर आपने क्यों चुना?
2: हॉकी को इसलिए चुना क्योंकि जब हम पहली बार वहां पे देखा, हमने वहां पे बाहर खड़े हुए कॉलोनी में खड़े हुए थे, पास में ही है कॉलोनी में हमारे, तो देखा वहां पे सर अगरा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक अविनाश भटनागर जी थे सर, हमारे कोच, आज भी प्रैक्टिस करवाते हैं। एक रईस कुरैशी जी थे, वो दोनों वहां पे प्रैक्टिस करवा रहे थे। हमने उनको देखा तो ऐसे खड़े हुए थे, फिर हमारे जो सीनियर थे उन्होंने बोला हॉकी अगर खेलना है ना? हाँ खेलना है। बोला आ जाओ। फिर वहां पे जो हॉकी प्रोवाइड करवा दी जाती थी,
1: अच्छा,
2: तो वहां जाके एक दो दिन खेला, उसके बाद जो हॉकी अच्छा लगा, और कॉलोनी से भी काफी बच्चे जाते थे तो खेलते खेलते वो हमारा मन लग गया।
1: एक तरह से कहा जाए तो फिजिबिलिटी, हाँ, जो उपलब्धता आपके आसपास थी वो हॉकी,
2: हाँ, जो एनवायरमेंट वहां पे जो हॉकी का था, दर्पण जो कॉलोनी है वो काफी सारा, मतलब हर तीसरे चौथे घर में से एक हॉकी खिलाड़ी है उधर।
1: अच्छा,
2: हाँ, काफी है।
1: बिल्कुल। तो और हॉकी की जहां तक बात की जाए तो बचपन में आपने बताया कि पिताजी पुलिस में थे,
2: हाँ,
1: और स्विमिंग

0: करते थे वो।
1: हाँ
0: स्विमिंग नहीं ट्राई किया आपने?
1: नहीं स्विमिंग नहीं किया,
0: अच्छा
1: तो वो स्पोर्ट्स से थे तो उनका मतलब यही था कि बच्चे को खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल खेलना भी जरूरी होता है।
0: जरूरी है।
1: तो उनका ये कहना था कि आप पढ़ तो रहे ही हैं पर सुबह उठो कोई ना कोई एक गेम खेलो।
0: तो मतलब पिताजी का काफी
1: हाँ
0: एक सहयोग भी मिला
1: पिताजी
0: और
1: का
0: उनका
1: काफी प्रभाव
0: प्रभाव भी पड़ा,
1: भी रहा।
0: क्योंकि वो उनका नेचर भी था और
1: हाँ
0: उनका रूटीन भी था।
1: रूटीन भी था।
0: अच्छा, इसके बाद फिर जहाँ पढ़ाई की बात की जाए, खेल के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज किया आपने?
1: जब ऐसे मैं अभी जो असाई में कोचिंग कर रहा हूँ, तो मैं जब 9th क्लास में था, 8th क्लास में था, तो एक साई का ही सेंटर टीकमगढ़ में था।
0: अच्छा।
1: तो टीकमगढ़ में मेरा चयन हुआ जो ट्रायल देने गए, तो वहां हमने ना हॉकी खेला। हॉकी खेलने के बाद फिर मैंने भोपाल में भी एक साई का सेंटर है वहां पे भी मैंने प्रयास किया, तो वहां पे भी मेरा चयन हुआ। फिर वहां मैं 3 से 4 साल, वहां चौहान सर थे,
0: अच्छा।
1: भाई एस चौहान सर जो अभी रिटायरमेंट हो गए, हरियाणा के थे, तो उनके अंडर में मैंने 3 से 4 साल वहां पे भोपाल में 2014 तक हॉकी खेली। उसके बाद जब हम आ गए, उसके ओवर एज हुए, तो उसके बाद फिर देखा, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब एक खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी जब वो पढ़ाई में जाता है तो थोड़ा सा बहुत चेंज आता है, तो फिर धीरे धीरे थोड़ी सी मेहनत की और फिर थोड़ा और मेहनत की, फिर उसके बाद जो बैचलर होती है बीपीएड वगैरह वह किया, उसके बाद एमपीएड किया, फिर थोड़ा सर्टिफिकेट हो, जो हमारे सीनियर्स थे
0: जी।
1: उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हाँ आप खेल बंद हो गया है तो थोड़ा इस लाइन में भी आप जा सकते हो, क्योंकि आजकल जो है स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो मेडल होता है, मेडल वालों के ही जॉब है। तो उसके बाद अगर आपके पास काफी सारे ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं, वो जो एक मनोबल टूट जाता है उनका, जब खेल खेलने के बाद उनको जॉब नहीं मिलती है तो उनका मनोबल टूट जाता है, तो मैं तो उनको ये सबको यही बताना चाहूंगा, अगर मनोबल मत तोड़िए, उसके बाद आपके पास काफी लाइन है, अगर आप उसमें आप घुस जाएंगे तो फिजिकल एजुकेशन में जब जाएंगे हॉकी के साथ साथ और दूसरे गेम के साथ साथ, तो काफी लाइन है, आप उससे टीचर भी बन सकते हो, आप कोच भी बन सकते हो, आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, तो काफी चीजें हैं। तो मतलब वहीं आप अपना गेम को ड्रॉप मत करो। ऐसे ही मेरे साथ मेरे जो सीनियर्स थे काफी, उन्होंने बताया मुझे कि हाँ अब तू बीपीएड कर, तो फिर मैंने बीपीएड किया जीवाजी यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला अब क्या है, अभी तो जॉब नहीं मिल रही है, फिर उन्होंने बोला कि तू और पढ़ाई कर, फिर मैंने LNIP से सर्टिफिकेट कोर्स किया, फिर मास्टर, फिर मैंने और पढ़ाई की, फिर LNIP में मास्टर डिग्री किया, फिर मास्टर डिग्री करने के बाद फिर सोचा कि हाँ
0: ये LNIP क्या है?
1: LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, जो कि ये 1956 में बना हुआ था, हाँ, और भारत का मक्का ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है। यहाँ से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टर जितने भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स प्रोफेसर होंगे अच्छे लेवल पे, वो इसी कॉलेज से पास आउट होंगे, और बेसिकली ये एशिया का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है फिजिकल एजुकेशन में, और कोचिंग में जैसे अपना NIS पटियाला माना जाता है। तो फिर वहीं से मैंने मास्टर डिग्री किया, मास्टर डिग्री के करने का जो घर ग्वालियर में ही था, तो वहां से डिप्लोमा भी करवाते हैं वहां पे, तो डिप्लोमा नहीं स्पोर्ट्स कोचिंग में, तो फिर मैंने वह डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग भी किया। जब वो डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर मैंने उसमें वैकेंसी आई हुई थी खेलो इंडिया सेंटर में, वहां मैंने अप्लाई किया, तो वहीं ग्वालियर में पास में जो वुमेन्स हॉकी अकेडमी है वहीं मैंने खेलो इंडिया सेंटर में ज्वाइन किया। जब मैं 2 साल मैंने वहां पे वर्क किया, उसके बाद फिर जो अपने जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है साई, उसमें वैकेंसी आई, उसमें वैकेंसी के आने के बाद फिर मैंने वहां पे फिल किया, जो मैंने हॉकी इंडिया के लेवल 1 लेवल जो हॉकी इंडिया एक कोर्सेज करवाती है, जो उसमें मतलब कोचेस के लिए लेवल 1 होता है, बेसिक होता है, वो मैंने पास किया। उसके बाद लेवल 1 होता है वह मैंने पास किया, उसके बाद फिर हॉकी इंडिया के लेवल 1 पास किया, हॉकी इंडिया का लेवल 2 पास किया, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल 1 जो कोचिंग होती है उससे आप इंटरनेशनल लेवल तक भी आप कोचिंग कर सकते हो, तो वो है लेवल पास किया, और उसका दूसरा भी पास किया, और अभी तीसरा मैं करके आया हूँ। हाँ, तो वह किया, तो उसका मुझे साइंस के वैकेंसी में फायदा भी मिला, और जो इंटरव्यू वगैरह है वहां पे इंटरव्यू भी हुआ। उसके बाद मुझे दिल्ली में इंटरव्यू के बाद मुझे भारत सरकार के ये सेंटर में बरेली में चयन हुआ।
0: जी। तो ये जो आप लेवल्स बता रहे हैं,
1: हाँ,
0: इनकी क्या वेटेज होती है, कैसे क्या
1: ये वेटेज आज के जमाने में जो अपडेट है, जो फॉरेन कंट्री में क्या रहता है, जैसे फुटबॉल के पहले लेवल चलते थे, तो लेवल A लेवल B टाइप के, जैसे ही हमारे जो FIH है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का, तो उनके द्वारा ये हॉकी के बेसिक लेवल स्टार्ट किए हैं। बेसिक लेवल में क्या होता है कि जो अपडेट आ रही है, नई नई हॉकी जो स्टार्ट हो रही है, कि कैसे आपको ग्रिप पकड़नी है, कौन कौन सी ग्रिप है, बच्चे को किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे इजी तरीके से हम उनको सिखा सकते हैं, और कैसे प्लेयर को एनालाइज करना है, कैसे प्लेयर को आइडेंटिफाई करना है, कैसी हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या हम टैक्टिस होंगे।

0: अपोनेंट से हम हार रहे हों, जीत रहे हों, क्या हमारी साइकोलॉजी होंगी ड्यूरिंग मैच, बिटवीन द मैच और आफ्टर मैच, तो वह चीज जो फॉरेन कोचेस होते हैं वह हमें आके इसमें 4 से 5 दिन का जो कोर्स होता है उसमें वो हमें अपडेट कराते हैं।
1: अच्छा,
0: फिर उसके बाद फिर वो हमारा रिजल्ट तैयार करते हैं और वो हमें टास्क देते हैं, फिर देन हम उसको पास करते करते आगे बढ़ते हैं।
1: अच्छा, मतलब एक कोर्स को पास किया, फिर
0: दूसरा है, फिर तीसरा है, ऐसे।
1: तो अभी आप जो तीसरा कोर्स पास करके आए हैं,
0: हाँ,
1: ये इसमें क्या था, क्या मतलब लेवल का मतलब क्या था?
0: हाँ, ये जो फेडरेशन इंटरनेशनल FIS लेवल 3 कोर्स था
1: जी जी,
0: तो उसमें क्या था, ये इसमें जो हाई लेवल जो मैच चल रहा है अभी इंटरनेशनल, मतलब इसका जो कोर्सेज है वो सीधे भुवनेश्वर में होते हैं। अच्छा। भुवनेश्वर में जैसे FIS के जो मैचेस चल रहे होंगे इंटरनेशनल मैचेस, ड्यूरिंग द मैचेस उस समय हमें बुलाया जाता है, फिर हमें उस मैच के बारे में एनालाइज करवाया जाता है, फिर हमें बताया जाता है कि पहले हम खुद एनालाइज करेंगे उस मैच को, हम बताएंगे कि इस मैच में क्या क्या और कर सकता है, एक एक टीम दे दी जाती है, वैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है तो मुझे इंडिया दे दी जाएगी और सामने वाले को ऑस्ट्रेलिया दी जाएगी, फिर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ तैयार बनाएंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस बनाने के बाद जब हम उनको प्रेजेंट करेंगे देन हमारे जो उसमें जो गलतियां होंगी, फॉल्ट होंगी, जो फॉरेन कोचेस होंगे, जो इंडिया वाले कोचेस हैं, जो सीनियर कोचेस हैं जो FIS में हैं, वह उनको हमें बताएंगे कि हाँ ये आपकी थोड़ी सी गलतियां हैं और फिर आपको कैसे उस मैच को एनालिसिस करना है, कैसे उसकी स्ट्रेंथ पकड़ना है, कैसे उसकी वीकनेस पकड़नी है।
1: अच्छा, और कौन कौन से लेवल होते हैं 3 के बाद, फिर अब क्या 10 तक?
0: हाँ नहीं, लेवल 4 रहते हैं,
1: 4 तक
0: लेवल 4 रहते हैं।
1: अच्छा,
0: फिर 3 के बाद जो एजुकेटर्स हो जाते हैं, उसके बाद जो बेसिक लेवल्स होते हैं ना उनके लिए आप उस पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
1: तो क्या इसके जरिए क्या कुछ सैलरी अपग्रेडेशन भी होती है?
0: नहीं, सैलरी अपग्रेडेशन अच्छा। नहीं होती, इसके जगह कोच अपडेट होता है,
1: कोच अपडेट होता है, मतलब एक तरह से नॉलेज गेन
0: है, ये हमारे लिए ही फायदा है।
1: अच्छा, आपने तो राष्ट्रीय स्तर पे भी खेला है
0: जी,
1: तो पहला मैच कौन सा था आपका?
0: ये हमारा था मध्य प्रदेश वर्सेस छत्तीसगढ़ का था।
1: अच्छा,
0: सबसे पहले मैं वहाँ पे गाजियाबाद में खेला था।
1: अच्छा,
0: 2006-07 की बात है जब हमने खेला था, पहली बार मैच खेला, उसका जीते भी थे, छत्तीसगढ़ से मैच जीते थे। तो ऐसे ही फिर उसके बाद फिर हम औरंगाबाद गए, फिर दिल्ली में भी हुआ, फिर ऐसे धीरे धीरे करके काफी सारे जो नेशनल टूर्नामेंट थे वो खेले।
1: कौन से पोजीशन पे खेलते थे?
0: मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलता था।
1: सेंटर फॉरवर्ड
0: जी।
1: तो कुछ अगर यादें अगर साझा करना चाहें,
0: सेंटर फॉरवर्ड
1: कोई ऐसा मैच जो काफी डिफिकल्ट था या आपके लिए डिफिकल्ट था, टीम के लिए भले ना हो?
0: हाँ, काफी सारे मैच ऐसे होते हैं जब आप मैन पोजीशन सेमीफाइनल्स होते हैं, तो ऐसे ही एक मैच था औरंगाबाद में सेमीफाइनल्स में, तो वह जो सेमीफाइनल मैच होते हैं उस समय आपके पास जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती तो उस समय आपकी पहले क्या होती थी, 11 पोजीशन होती थी इंक्लूडिंग गोलकीपर से लेके फॉरवर्ड तक, तो 5 फॉरवर्ड होते थे, 3 डिफेंडर होते थे, 3 हाफ, 2 डिफेंडर, 1 गोलकीपर होता था। अब जो नया आ रहा है उसमें उन्होंने कर दिया कि 3 लेवल में बांट दिया उन्होंने, डिफेंडर, स्ट्राइकर और मिडफील्डर। तो उस समय जो हॉकी थी वो थोड़ी सी स्लो थी, है ना, अब जो है हॉकी थोड़ी सी फास्ट और होती जा रही है। तो उस समय पहले क्या रहता था कि जो कोचेस भी होते थे और जो साथ में, वो ये कहते थे कि आप सिर्फ अपना काम करिए, तो ऐसे जब बॉल हमारे सेंटर में आती थी तभी हमारा काम होता था स्ट्राइकरों का, फॉरवर्डों का, कि हाँ हम जाके गोल करें। अब जो हॉकी चेंजेस है उसमें क्या रहता है कि स्ट्राइकर भी पीछे आएगा और डिफेंडर भी आगे जाएगा, मतलब कि आपको टोटल हॉकी है,
1: टोटल
0: स्ट्राइकर भी गोल मारेगा और डिफेंडर भी गोल करवाएगा आपका। तो पहले ऐसे काफी सेमीफाइनल मैचेस होते थे, उस समय हम सिर्फ बॉल का वेट करते थे, अगर हम पीछे जाते थे तो वहां से कोचेस जो होते वो कहते थे पीछे मत आ, फिर आगे गोल कौन करेगा, तो इस चक्कर में काफी मैच हार भी जाते थे।
1: तो कुछ टेक्निक्स जो है अपडेट हुई है।
0: हाँ,
1: अच्छा, इसकी वजह से क्या कुछ रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है?
0: हाँ, ये जो टोटल हॉकी आया है उसमें क्या रहता है, स्ट्राइकर भी जो है गोल मारेगा, स्ट्राइकर भी मिडफील्डर है और मिडफील्डर भी स्ट्राइकर है, और डिफेंडर भी स्ट्राइकर है, डिफेंडर भी मिडफील्डर है। उसमें क्या रहता है कि ऐसे कि हमारी जो इंडियन टीम के काफी जो डिफेंडर हैं, अब वह भी आगे जाके जो मतलब काफी जो कोचेस की जो स्ट्रेटजी होती है कि हाँ आप आगे जाएंगे, डिफेंडर आगे जाएगा तो मिडफील्डर जो है वो पीछे आ जाएगा, उससे वो आपके जो एक प्लेयर इंक्रीज हो जाएगा जिससे आपको गोल मारने में फायदा मिलेगा।
1: जी, जी, जी।
0: तो आज के जमाने में जो है टोटल हॉकी है, आपको पूरा मैच खेलना है, आपको गोल भी मारना है, आपको डिफेंड भी करना है।
1: अब जैसे कि आपने बताया आप ग्वालियर के हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, क्या अंतर पाते हैं?

0: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में काफी अंतर है। जैसे कि ये बताया जाता है कि यूपी उत्तर प्रदेश में काफी स्ट्राइकर्स माने जाते हैं अच्छे लेवल के, और मध्य प्रदेश में स्ट्राइकर प्लस मिडफील्डर भी होते हैं। पर जो यूपी है, यूपी की हॉकी मैंने देखा यहाँ पे आके, यूपी की हॉकी काफी अच्छी है। यूपी
1: अच्छा
0: में जो इतना मध्य प्रदेश में है लेवल है, बच्चों का लेवल है, काफी हॉकी है, पर यूपी की जो स्ट्रेंथ है काफी बड़ी है उसमें, और हॉकी भी काफी है। मतलब कि आपको एक जगह, एक सिटी में काफी आपको 2 से 3 3 ग्राउंड मिलने को मिलेंगे। तो बच्चों को यहाँ पे हॉकी का क्रेज काफी ज्यादा है, इसलिए आज के जो है इंडियन टीम में कम से कम 3 से 4 जो यूपी के हैं प्लेयर वो आपको मिलेंगे।
1: मोहित जी, जो आप साई के कोच हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम शिष्य आपसे गुरु मंत्र लेकर और आपके निर्देशन में सफलता की नई ऊंचाइयां छुएं, यही उम्मीद करते हैं, यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद सर, आपको भी आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: हॉकी कोच रोहित शर्मा के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं दीपू कश्यप, इनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी अमृता ने।
2: कार्यक्रम में दीपू कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक्स।
2: सबसे पहले दीपू, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास इतने सारे मेडल्स हैं, तो कैसे आपको लगा कि इसी खेल को चुनना चाहिए?
3: स्टार्टिंग से ही मैंने ये स्ट्रगल करना मुझे बहुत अच्छा लगा था
2: जी।
3: और फिर मैं एक बार गई थी स्कूल में, तो मेरी रेस हुई थी, तो फिर मैं फर्स्ट आई थी, तो मैम ने बोला था कि इसी लाइन में जाओ और तुम बहुत अच्छा करोगी आगे चल के। तो फिर मैंने आगे चल के गई थी, स्टेडियम गई थी, पहले डोरीलाल स्टेडियम गई थी
2: जी,
3: तो उनने मुझे कराया और फिर मैं यहाँ तक पहुंच पाई
2: जी। मतलब आपको इंस्पिरेशन मिली आपके स्कूल से, जहां पर आप रेस में जीती। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक दिन अपनी मंजिल की ओर जाते हैं। तो दीपू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर बाधा रेस है क्या? क्या ये एक आम रेस है या ये अलग है एक सिंपल सी रेस से?
3: ये एक रेस है जिसमें हर्डल्स होते हैं
2: जी,
3: 10 हर्डल्स होते हैं इसमें, और इसे क्रॉस करना पड़ता है। तो अगर एक भी हर्डल छूट गया तो आपका फाउल हो जाएगा
2: जी,
3: तो उसको एक राउंड करके और फिर आपकी रेस फिनिश हो जाती है
2: जी। आपने कहा कि हर्डल्स होते हैं, क्या ये हर्डल्स सिर्फ 10 होते हैं या फिर रेस की जो दूरी होती है उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं?
3: ये हर्डल्स 10 होते हैं और बाकी 35-35 मीटर पे लगे होते हैं
2: जी। कितने मीटर की रेस होती है अगर बात की जाए? आप कितने मीटर की रेस को खेलती हैं या दौड़ती हैं?
3: मैं 400 मीटर रेस करती हूँ, बाधा दौड़
2: जी। और क्या 400 मीटर के अलावा भी होती है ये रेस की?
3: हाँ, 400 मीटर होती है, 800 होती है, 1500 होती है, 3 किलोमीटर होती है
2: जी,
3: और 5 किलोमीटर होती है, 10 किलोमीटर होती है।
2: तो अभी आप 400 मीटर की रेस
3: हाँ,
2: दौड़ती हैं?
3: अभी 400 मीटर
2: जी। तो कितना समय लग जाता है 400 मीटर की रेस को पूरा करने में?
3: अभी तो मेरे को 400 मीटर फ्लैट करने में तो एक डाउन हो जाता है, और बाकी हर्डल्स पे 1-6 आ जाती है टाइमिंग
2: जी। तो जो हर्डल्स होते हैं उनकी अगर ऊंचाई की बात की जाए और दूरी की बात की जाए, कितना डिस्टेंस होता है लगभग उनमें?
3: ऊंचाई की तो वो तो लो हर्डल होता है, एकदम लो होता है, और फिर दूरी 35-35 मीटर पे होता है, और लास्ट का जो हर्डल होता है वो 45 मिनट पे होता है, मीटर पे होता है।
2: मतलब हर्डल्स की एक सेम दूरी नहीं होती, अलग अलग होती जाती
3: हाँ,
2: है।
3: हाँ, अलग अलग होती है, 35-35 मीटर पे होती है, और बाकी लास्ट के होते हैं जो 45 मीटर पे होते हैं
2: जी। दीपू, आप एक स्टेट लेवल प्लेयर हैं, तो जब आप ये गेम खेलती हैं तो कैसा लगता है, किस तरह की चुनौतियां आ जाती हैं कभी कभी गेम खेलने में?
3: शुरू से ही मैंने मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है, और मुझे पसंद भी है स्ट्रगल करना। तो सुबह मैं उठती हूँ और फिर फ्रेश वगैरह होना, और सुबह उठ के एकदम मन भी नहीं करता कभी कभी उठने का, तो फिर एक बार सोचती हूँ कि मेरा जो कंपटीटर है वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा
2: जी,
3: अगर मैं एक दिन की प्रैक्टिस छोड़ूंगी तो मेरे से बहुत आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मैं डेली रहता है मेरा जाना
2: जी। मतलब कई तरह की चुनौतियां आती हैं, चाहे मौसम हो, चाहे
3: हाँ,
2: किसी भी तरह की शारीरिक थकान हो, लेकिन रुकना नहीं होता है, तभी हम अपनी मंजिल को पाते हैं। दीपू, अगर आपसे बात करें गेम की पूरी प्रक्रिया की, तो किस तरह से ये गेम शुरू होता है, कितने प्लेयर होते हैं और किस तरह से रेस की शुरुआत होती है, इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे।
3: इसमें 8 से ज्यादा लोग होते हैं, तो उसमें हीट कर दी जाती है, तो हीट होती है, और अगर 15 लोग हो या 20 लोग हो तो दो दो आठ आठ करके हीट को कंप्लीट करा जाता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है, ऐसे करके
2: जी
3: होता है।
2: तो जो दूरी होती है और प्लेयर्स की संख्या होती है, क्या ये हर गेम में बराबर होती है, चाहे वो 400 मीटर की रेस हो, 100 मीटर की हो, या फिर इससे ज्यादा की हो?
3: हाँ, हीट तो होती है, 100, 200 और 400 मीटर में हीट तो होती है, और बाकी

0: 500 मीटर में भी हीट होती है, लेकिन ऑल इंडिया वगैरह में जाओ, वर्ल्ड वगैरह में जाओ खेलने तो होती है हीट उसमें, वरना तो 800 मीटर में स्टेट नेशनल में तो फाइनल कर दिया जाता है।
1: दीपू, आपने फाउल की बात की, फाउल किस तरह से होते हैं और कैसे वो गिना जाता है एक गेम में कि हाँ अब आपका फाउल हुआ है?
0: जब हम स्टार्ट करते हैं रेस तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठते हैं, तो फिर हम जब वो कोच बोलते हैं कि न्यू मार्क बोलते हैं तो फिर सेट बोलते हैं, अगर उससे गन बजाने से पहले ही खिलाड़ी
1: अगर दौड़ने लगता है,
0: दौड़ने लगता है तो फाउल हो जाता है,
1: डिस्क्वालीफाइड
0: हो जाता है
1: जी। इसके अलावा जो हर्डल्स होते हैं उसमें अगर पैर टकरा जाए या फिर उसको क्रॉस नहीं कर पाए तो क्या वो भी फाउल में माना जाता
0: है? क्रॉस नहीं कर पाओ तो फाउल हो जाता है, और बाकी हर्डल्स गिर जाते हैं तो फाउल हो जाता है
1: जी। दीपू, एक खिलाड़ी के लिए उसकी दिनचर्या बहुत आवश्यक होती है क्योंकि उसे बहुत कुछ करना होता है, तो आपसे आपकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसी होती है, कब आप कितने बजे उठती हैं, उसके बाद में जो आपकी प्रक्रिया रहती है पूरे दिन की वो क्या होती है?
0: मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, और बाकी फ्रेश वगैरह होना, और फिर एक केला वगैरह खाते हैं और फिर जाते हैं प्रैक्टिस करने, फिर वहां से आते हैं, उसके बाद डाइट वगैरह लेते हैं और फिर 1 घंटे रिकवरी वगैरह करते हैं, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करने लगते हैं
1: जी। और शाम की क्या आपकी जो अगर बात की जाए स्केड्यूल जो होता है वो क्या रहता है?
0: शाम को वही 4 बजे से प्रैक्टिस पे जाते हैं और फिर वही 3-4 घंटे की प्रैक्टिस, उसके बाद 8 बजे घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं
1: जी।
0: थोड़ा बहुत पढ़ते हैं फिर सो जाते हैं।
1: प्रैक्टिस में क्या क्या होता है, एक्सरसाइज होती है या सिर्फ गेम की आप प्रैक्टिस करती हैं?
0: हाँ, प्रैक्टिस में एक्सरसाइज होती है और जिम स्ट्रेंथ पावर वर्कआउट के लिए जिम भी जरूरी होती है और बाकी रोड वगैरह करना जरूरी होती है
1: जी। आपने भी स्ट्रेंथ की बात की, तो एक खास तौर पर एक लड़की होने के नाते स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी जरूरी होती है एक लड़की के लिए, और खासतौर पर एक अगर लड़की प्लेयर हो वो भी बाधा रेस की? तो
0: अगर अगले क्षेत्र में जाती है लड़की तो स्ट्रेंथ, जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो आगे नहीं बढ़ सकती
1: जी।
0: और
1: आपने अभी स्ट्रेंथ के लिए भी बोला कि स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है और कॉन्फिडेंस की आपने बात की, तो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप में आत्मविश्वास नहीं है तो वैसे भी आप आगे नहीं जा सकती, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है एक प्लेयर होने के नाते भी कि आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए। दीपू, परिवार में आपके कौन कौन है और एक खिलाड़ी होने के नाते परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपको?
0: परिवार में मेरी 4 सिस्टर हैं और एक भाई है, मैं सबसे छोटी हूँ सिस्टर में, और मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा का तो और घर वालों का तो पूरा सपोर्ट रहा है। बहन भी सपोर्ट करती है, उसको जॉब करती है तो थोड़ा बहुत कर देती है सपोर्ट, और बाकी यही है। घर वालों से कभी ये नहीं रहा कि इतना सुबह क्यों जा रही है, इतनी रात में क्यों आ रही है, कभी ये नहीं रहा, पूरा सपोर्ट रहा है घर वालों की तरफ से
1: जी। आप शहर से बाहर भी खेलने जाती हैं, तो क्या उस टाइम पे कभी ऐसा हुआ है कि परिवार वालों ने कहा हो कि आप एक लड़की हैं और आप बाहर ना जाएं, यहीं पे रह के खेलें?
0: कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना कभी घर वालों ने बोला है कि बाहर इतनी दूर क्यों जा रही हो और क्यों लड़कों से बात कर रही हो, या बहुत सारी बातें होती हैं, मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं
1: जी।
0: तो कभी नहीं सोचा घर वालों ने, यही भरोसा करा है कि हाँ हमारी लड़की घर से बाहर निकली है तो कुछ अच्छा ही करके आएगी।
1: बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है और खास तौर पर माता पिता का, और आप तो लकी हैं कि आपकी बहनें भी हैं जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट भी करती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो दीपू, डाइट की अगर बात करें तो एक खिलाड़ी की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी उसमें सेहत आती है और स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। आपकी डाइट क्या है, क्या डाइट लेती हैं आप?
0: सुबह जब हम वर्कआउट करके आते हैं तो सुबह वही ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, काजू बादाम किशमिश छुआरे ये सब लेते हैं, और उसके बाद कभी कभी दूध मिल जाता है तो दूध भी पी लेते हैं, और बाकी फिर शाम में जब जाते हैं तो एक केला वेला खा के चले जाते हैं
1: जी। अच्छा दीपू, ये देखा जाता है कि जो आजकल के यूथ हैं, बच्चे हैं खास तौर पर, उन्हें फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, तो एक खिलाड़ी होने के नाते आप क्या कहती हैं, फास्ट फूड खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए?
0: फास्ट फूड खाना चाहिए, बट इतना नहीं कि लिमिटेड खाना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा फास्ट फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी टेस्ट के लिए आप कर सकते हैं।
0: कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ, महीने में 1 बार या 2 बार
1: जी। जी, आप कहाँ कहाँ गई हैं अभी तक दीपू, क्योंकि आपने इतने सारे मेडल जीते हैं तो जरूर आप देश में या फिर स्टेट लेवल पे खेलती हैं, तो दूसरे शहरों में तो जरूर गई होंगी?
0: लखनऊ गए थे 1 बार खेलने तो, और गाजियाबाद भी गए थे, गोरखपुर गए थे, और शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, वहां से जब भी गए हैं तो मेडल लेके आए हैं
1: जी। इतनी सारी जगहों पे आप गई हैं और आपने ढेर सारे मेडल्स भी जीते हैं, क्या कभी कोई ऐसी एक कहानी है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो आपके जहन

0: पे एक असर छोड़ गया हो कि मैं वहां गई थी, वहां पे ऐसा ऐसा हुआ था।
1: ऐसा तो कुछ नहीं, वैसे तो एक बार गई थी तो मेडल नहीं पढ़ पाया, तो घर आई थी, फिर घर वाले भी बोल रहे थे क्या हो गया, नर्वस क्यों हो रही है, फिर मैंने बताया कि मेडल नहीं आया, तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, अप डाउन तो होते रहते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है, हार जीत तो चलती रहती है।
0: बिल्कुल,
1: तो फिर वही रहा कि
0: जैसा कि जानते हैं और आप बाधा रेस खुद ही खेलती हैं, तो आपको पता है कि बाधाएं तो आती रहती हैं,
1: हाँ,
0: निराशा आती है और कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हार के बाद ही जीत है।
1: हाँ,
0: और वो दिख ही रहा है आपके इतने सारे मेडल्स से, और जरूर आगे भी भविष्य में आप ढेर सारे मेडल्स और जीतेंगी। तो दीपू, अगर आपसे बात की जाए कि प्रैक्टिस की जो बात होती है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा परेशानियां भी आती हैं प्रैक्टिस करने के टाइम पे, मान लीजिए कोई इंजरी हो गई, जो हर खिलाड़ी के जीवन में जरूर होती है कभी ना कभी, तो क्या आपको भी ऐसी कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस प्रभावित हुई हो या खेल प्रभावित हुआ हो?
1: हाँ, एक बार जब हम हडल कर रहे थे तो एक बार क्रॉस कर रहे थे तो स्ट्रेच हो गई मसल,
0: जी
1: तो फिर एक दो दिन रेस्ट किया, फिर सोचा कि ये तो इंजरी तो होती रहती है खिलाड़ी की लाइफ में, ये जब तक इंजरी नहीं आएगी तो खिलाड़ी कैसे बनेगा वो। तो फिर दो तीन दिन बैठी थी मैं रेस्ट पे, उसके बाद सोचा मैंने कि अब कब तक रेस्ट करूंगी, एक ना एक दिन तो आना ही है प्रैक्टिस पे, तो फिर प्रैक्टिस तो लगातार रही मेरी।
0: जी, इतनी सारी परेशानी के बाद आप प्रैक्टिस करती रहती हैं कंटिन्यू, एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भले इंजरी हो उससे रिकवर करने के बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, क्योंकि बॉडी को भी नीड होती है। अब आपसे दीपू ये जानना चाहेंगे कि जब आप खेलने कहीं जाती हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं उनका क्या आपके साथ बर्ताव रहता है, क्योंकि परिवार का तो सपोर्ट आपको है, लेकिन जो हमारे आसपास की सोसाइटी है, लोग हैं, वो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं?
1: आसपास के लोग भी खुश होते हैं कि हाँ लड़की जा रही है बाहर खेलने, अच्छा नाम करके आ रही है, पहले भी गए थे तो मेडल वगैरह लेके आए थे, खुश हुए थे आसपास के लोग, कभी ऐसा नहीं कि बातें बनाई हूँ मोहल्ले वाले ने, कभी ऐसा नहीं,
0: जी।
1: काफी अच्छा सपोर्ट रहा है मोहल्ले वाले,
0: मतलब लोग भी अब आपको अप्रिशिएट करते
1: हाँ,
0: हैं।
1: हाँ, बिल्कुल
0: जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जरूर आपको देखकर आसपास की जो लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, स्पोर्ट खेलना चाहती हैं, वो जरूर आगे आएंगी, आप उनको प्रेरित करने का काम भी कर रही हैं। दीपू, आप अभी बहुत ही छोटी हैं, और कितनी आयु से आपने इस गेम को खेलना शुरू किया था?
1: मैंने 16 साल से स्टार्ट किया था खेलना, और 2022 से स्टार्ट किया था खेलना, और मुझे 3.5 साल हो गए रनिंग करते करते।
0: 3.5 साल से आप इस गेम में हैं, तो 3.5 साल में अगर आपके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है और शहरों के खिलाड़ियों के साथ में जब आप खेलने जाती हैं तो?
1: जब खेलने पहले जब जाती थी तो पहले तो मेडल नहीं आते थे क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी पहले, और पहले इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था,
0: शुरू की बात होती जी,
1: तो एक्सपीरियंस भी नहीं था इतना, फिर थोड़ी थोड़ी आगे करके प्रैक्टिस हुई और मेहनत करी, तब जाके थोड़े मेडल वगैरह आने लगे, काफी अच्छा लगा और फिर यही हुआ।
0: अच्छा, आपके कोच का कितना सपोर्ट रहा है, या फिर आपके जो टीचर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको सिखाते हैं, उनका कितना सपोर्ट रहा है आपके गेम में?
1: कोच का भी फुल सपोर्ट रहा है, कभी डाइट वगैरह का नहीं हो पाता तो कोच करते थे, शूज वगैरह का नहीं हो पाता तो कोच का तो पूरा सपोर्ट रहा है
0: जी,
1: और कोचिंग भी फ्री कराते हैं वो
0: जी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोच ऐसे हों तो जरूर उनके जो स्टूडेंट है वो आगे जरूर बढ़ेंगे। तो आपसे दीपू अब ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि शूज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या कोई अलग सा कोड होता है ड्रेस का इस गेम को खेलने के लिए?
1: हाँ, रनिंग किट होती है, वो टाइटी वगैरह पहन के करा जाता है, शॉर्ट्स वगैरह, उसमें काफी अच्छा मतलब फील होता है और रनिंग भी अच्छी होती है। शूज की बात है तो खिलाड़ी के अलग ही होते हैं, सोल वगैरह अलग होती है उसकी और ग्रिप वगैरह अलग होती है, और शूज भी लाइट होता है तो काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है शूज से भी
0: जी।
1: डाइट वगैरह भी अगर खिलाड़ी की अच्छी रही तो काफी अच्छा करता है।
0: दीपू, आप गेम तो खेलती ही हैं और काफी अच्छा कर रही हैं अपनी उम्र और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन अगर बात की जाए पढ़ाई की, तो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में आप क्या कर रही हैं?
1: अभी तो इंटर हो गया मेरा, बीए में एडमिशन लिया है
0: जी,
1: बीए करेंगे।
0: तो पढ़ाई करना भी आपको उतना ही पसंद है जितना गेम पसंद है?
1: पढ़ाई रनिंग के साथ साथ भी पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, और बाकी जितना टाइम मिलता है वो पढ़ाई को ही देते हैं फिर
0: जी। तो पढ़ाई में आपने बोला कि आप बीए कर रही हैं, तो जब आप पढ़ रहे हो साथ ही साथ आप गेम भी खेल रहे हो, तो दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे?
1: जब वर्कआउट करके आते हैं तो रिकवरी वगैरह लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी होता है, तो एक दो घंटे पढ़ाई को देते हैं, फिर शाम में प्रैक्टिस करने जाते हैं, आते हैं तो खाना वाना खाते हैं, उसके बाद एक दो घंटे पढ़ाई को देते हैं।
0: तो मतलब आपकी पढ़ाई और आपका गेम दोनों अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है कहीं?

0: हाँ बढ़िया।
1: आपकी
0: हाँ
1: स्कूल टीचर्स का सपोर्ट रहता है आपको?
0: हाँ स्कूल टीचर का भी सपोर्ट बहुत रहा है,
1: जी
0: पहले भी रहा है और अभी अभी भी अच्छे से सपोर्ट रहा है।
1: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये गेम की प्रैक्टिस भी करनी है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है। दीपू बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि ना केवल आपके बल्कि जो भी बच्चे इस खेल को खेलना चाहते हैं या देश के नाम कोई भी मेडल प्राप्त

0: या देश के नाम, कोई भी मेडल प्राप्त करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन सभी की जो भी इच्छाएं वो पूरी हों, अपनी मंजिल को वो पाएं। आपने अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस साझा किए, उसके लिए दीपू कश्यप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का खेल दर्पण। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको, ये हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: खेल दर्पण।

श्रोताओं, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद हलीम जफर खां का राग छायानट में सितार वादन प्रस्तुत है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उस्ताद हलीम जफर खां का राग छाया नट में सितार वादन। अब आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में